शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

शुभ प्रभात दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के इस महकते हुए शुभ कार्यक्रम में। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो हैं चांद माथुर साहब, जो हमारे आज के कलाकार में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, शिरकत कर चुके हैं, एक बार नहीं बल्कि कई बार। उनके गीत, उनकी संगीत सुनकर हम हमेशा बहुत बहुत प्रसन्न हुए हैं। आज वो हमारे साथ साझा करना चाहेंगे कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन से दूसरी तरीके से, यूं कह लीजिए पूरी तरीके से जुड़ी हुई हैं। माथुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे।

0: सुनने वालों के लिए बस एक छोटा सा परिचय दे दें, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं सर?
1: जी जी समीर जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस दिव्य दर्शन के प्रोग्राम में न्योता दिया, और मेरे लिए बिल्कुल नई चीज है। और मैं दर्शकों को बता दूं, सुनने वालों को बता दूं कि मैं पूना से हूं और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, और मैं 2008 में रिटायर हो गया था भारत फोर्ज पूना से, जो वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है। उसके बाद मैंने कुछ साल कंसल्टेंसी करी, और अब मैं घर पर सिर्फ अपनी संगीत पर और अपनी सेहत पर और अपनी पत्नी की सेहत पर, अपनी वेलबींग पर ध्यान रखता हूँ। सो दैट्स ऑल इन अबाउट मी इन शॉर्ट।
0: बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जैसा चांद माथुर साहब ने बताया, वो पुणे रहते हैं और अब संगीत पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान लगाते हैं। चलिए, बहुत सारा समय उन्होंने गुजारा बहुत कुछ समझने में, उनसे पूछते हैं आज। माथुर साहब, आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है आपकी, आपकी खुद की अध्यात्म की? अध्यात्म से आप क्या मतलब निकालते हैं? स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या मीनिंग रखती है सर?
1: जी सर, ये जो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है जिंदगी का, जीवन का, मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता एक ये एक तरह से एक इंटरनल जर्नी है, जिसमें आदमी अपने आप को और अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करता है, और उस समय उसको अपना जो डेजिग्नेशन है, अपना जो नाम है, अपनी जो आइडेंटिटी है, उसको पीछे रखना चाहिए और अपने आप को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक तरह से एक इंटरनल जर्नी है, और ये जो है ये एक एक्सपीरियंस और एक कॉन्शियसनेस का एक सब्जेक्ट है जो स्पिरिचुअलिटी है, जहां तक मेरी दिमाग जो मैं सोच पाया हूं अपने बारे में, वो मुझे ऐसा लगता है
0: जी।
1: और ये जो है, ये जो आध्यात्मिकता है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये आपके जीवन को एक एक डेप्थ और एक मीनिंग आपको मिलता है इससे, और आपकी जो इंटरनल डेवलपमेंट है, आपकी अपने आप की जो अंदरूनी ताकत है, उसको ये डेवलप करने में, उसका उसको बढ़ाने में आपकी मदद करता है स्पिरिचुअलिटी।
0: जी बहुत खूब, बहुत ही प्यारे ढंग से चांद माथुर साहब ने हमें बतलाया उनकी अपनी भाषा में, जिसको वो समझते हैं कि आध्यात्म यह स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है। बहुत सुंदर। मात्र साहब, आध्यात्म की बात हो रही है और जिस विषय में अभी मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, उसमें एक शब्द और आता है, धर्म, यानी कि रिलीजन। तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों के बीच में कुछ फर्क मानते हैं आप, जानते हैं आप, या फिर ये दोनों एक ही चीज है?
1: सर, इसमें ऐसा है समीर जी कि ये थोड़ा मुश्किल है ये कहना, थोड़ा क्योंकि धर्म भी जरूरी है और स्पिरिचुअलिटी जो है वो भी अपने आप होती है, लेकिन इनमें ये जो है मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही आपस में जुड़े हुए हैं
0: जी,
1: कि एक ही चीज नहीं है। क्योंकि धर्म का जो उद्देश्य है वो भले ही थोड़ा हाई लेवल पे हो, ऊंचा हो, लेकिन उनका जो रास्ता है, उनकी जो शेप है, वो अलग अलग है। धर्म जो है ये एक तरह का एक, मैं समझता हूँ कि धर्म एक तरह का एक अरेंजमेंट है, मतलब जिसको हम लोग, जिसको इंसानों ने बनाया है कि भाई आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप क्रिश्चियन हैं, तो एक अलग एक तो धर्म है जिसको हम लोग सभी अनुसरण करते हैं, उसका हम सब लोग उसको फॉलो करते हैं। हम हिंदू हैं तो हम हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, सिख धर्म को फॉलो करते हैं। तो और जो स्पिरिचुअलिटी है, इसको ये एक अलग चीज है, मतलब ये ऐसा नहीं कह सकते कि मैं हिंदू हूं तो मैं स्पिरिचुअल नहीं रहूंगा या सिख हूं तो स्पिरिचुअल नहीं रहूंगा। धर्म को फॉलो करने के साथ साथ स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों में अंतर ज्यादा नहीं है, दोनों एक ही चीज है एक्चुअली। इवेंचुअली धर्म भी आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही ले जाता है, अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि धर्म में भी आप जब किसी धर्म का अनुसरण करते हैं तो वो भी आपको धीरे धीरे उस भगवान को मानने के लिए कहता है, फिर आपके दिमाग में वो बातें आने लगती हैं कि अपने बारे में, भगवान के बारे में, धर्म के बारे में, बुरा अच्छा सही गलत, इसके बारे में आपके विचार आने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों कनेक्टेड है आपस में, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है।
0: भाई वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बात विचार करने योग्य है कि हम धर्म को स्पिरिचुअलिटी से, यानी कि रिलीजन को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, अलग अलग मानते हैं, क्या करते हैं। और मजेदार वाली बात है मित्रों, सभी तरीके के कॉन्सेप्ट और विचार अपने आप में बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हमने ही धर्म की परिभाषा को परिभाषित किया है, हमने ही अध्यात्म को परिभाषित किया है। और अगर हमारे हिसाब से दोनों धर्म और अध्यात्म मिलके हमें सुख पहुंचाते हैं, हमारे जीवन को अर्थ देते हैं, तो ये दोनों लोग जुड़े हुए हैं, दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। बहुत सुंदर।
1: अगर इसको आप अंडरलाइन करके देखेंगे तो जो धर्म है ये एक तरह से ये एक एक्सटर्नल रास्ता है आध्यात्मिकता की तरफ पहुंचने के लिए। अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्मों में समझाया जाता है
0: जी,
1: और हम समझ जाते हैं। और जो स्पिरिचुअलिटी है ये एक इंटरनल अवेयरनेस है मेरे ख्याल से, जो आपको धर्म से मिलती है कुछ हद तक, और कुछ हद तक आप अपने आप अपने अनुभव से उसको डेवलप करते हैं।
0: भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो दोस्तों जैसा ये प्रोग्राम अपने आप में हमें मौका देता है, एक अवसर प्रदान करता है गहराई से सोचने का, तो चलिए विचार करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और पेश करता हूं चांद माथुर साहब की ही बहुत प्यारी सी आवाज में ये भजन। इस भजन को सुनिए, विचार कीजिए।

0: बहुत सुंदर भजन। तो आगे बढ़ते हुए दिमाग में अभी हम रिलीजन की बात कर रहे थे और स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे। माथुर साहब, आपका डेली आध्यात्मिक अभ्यास क्या है? मतलब डेली आप स्पिरिचुअलिटी का क्या प्रैक्टिस करते हैं, कैसे, व्हाट डू यू डू?
1: सर, मेरा जो डेली रूटीन है उसमें स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक तरह से मैं उसको एक एक्सरसाइज की तरह लेता हूँ, एक व्यायाम की तरह लेता हूँ।
0: जी,
1: मतलब जैसे सुबह उठते ही प्राणायाम करना, सुदर्शन क्रिया करना, डीप ब्रीदिंग करना, चिंतन करना, ये सब मेरा सुबह करीब एक घंटे का ये प्रोग्राम होता है सुबह उठने के बाद।
0: जी,
1: तो एक तरह से स्पिरिचुअलिटी जो मैं समझता हूँ, जब मैंने पढ़ा इसके बारे में किताबों में तो मुझे लगा कि ये तो मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो मेरा तो अभ्यास यही है। और दूसरी बात जो मैं करता हूँ, ये तो एक तरह से हो गया सुबह का जो प्रोग्राम होता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो मैंने बताया आपको, जैसे प्राणायाम और ये वगैरह, वो ये सब हो गया। मतलब नॉट फिजिकल एक्सरसाइज, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चिंतन करना, कॉन्सेंट्रेशन करना, ये सब तो एक भाग है मेरी जिंदगी का। इसके अलावा जिसको मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं अपने रोजमर्रा के जीवन में, वो ये है कि एक दूसरे की का इज्जत करना। मतलब कोई आदमी अगर आपको कुछ समझा रहा है तो उसको ध्यान से सुनना और वो क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है, उसके बाद में आप अपना निर्णय लीजिए कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, लेकिन लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से सुनना। और जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है और जो स्पेसिफिक वो बता रहा है उसको समझना, और कोई ऐसा काम करने की कोशिश करना जिसमें यू नो कोई इस तरह से कोई सर्विस टू द पीपल, सेवा भाव आपके काम में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। मैं ये नहीं कहता कि सेवा भाव मतलब आप ओल्ड एज होम में जाकर ही सेवा करें, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी की भी कोई भी मदद कर दिया आपने, अपने घर में आपके मेड आती है काम करने, उन्हें किसी चीज की समझ नहीं है तो आपने उसको कुछ समझा दिया, भाई देखो ऐसे करो ये ठीक रहेगा, और किसी की पैसे से मदद कर दी, किसी की कोई सामान दे के मदद कर दी। जैसे हमारा तो जो म्यूजिक ग्रुप है तो हम तो चैरिटी के लिए गाते हैं, तो ये एक मदद हम लोग रेगुलरली करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से तो जो मेरा दैनिक जीवन है उसमें तो मैं आध्यात्म को इस तरह से फॉलो कर रहा हूँ।
0: जी, मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। किसी भी तरीके की जो डेली प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है, जैसा कि दोस्तों आपने सुना चांद माथुर साहब ने यहां पर बताया कि किसी की भी मदद करना, और जैसे वो तो संगीत के ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो लोगों की संगीत के मार्फत एक मदद जो करते हैं वो भी उनका एक डेली अभ्यास है, डेली आध्यात्म का एक तरीका है। देखने वाली बात यह है दोस्तों कि किसी भी तरीके को अपना कर आध्यात्म की प्रैक्टिस की जा सकती है। मुद्दा ये है, पर्पस ये है इस कार्यक्रम का कि हम अपनी प्रैक्टिस को बताएं कि हम इस तरीके से आध्यात्म को प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सुंदर। तो
1: सर, इसी के बारे में मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहता हूं।
0: प्लीज प्लीज।
1: जो मैंने प्रैक्टिस करी है और सफल भी हुआ हूं, और वो एग्जांपल ये है कि हमारे घर में जो मेड काम करने आती हैं, जनरली ये जो लेवल 4 के जो एम्प्लॉइज होते हैं ये ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होते, और मैं यू नो बुरी आदतें बहुत होती है इनके पेरेंट्स में, उनमें नहीं होती है लेकिन उनके पेरेंट्स में बुरी आदतें बहुत होती हैं।
0: जी,
1: तो हमारी जो मेड आती है उसके फादर को दारू पीने की, तंबाकू खाने की बहुत आदत थी।
0: जी,
1: तो बहुत बीमार रहता था, घर पे मारपीट करता था। तो उसने मुझे बताया कि सर आप कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ बताइए दवाई। तो मैं साथ साथ होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी करता हूँ, मैं होम्योपैथिक पढ़ता हूँ।
0: जी,
1: मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन होम्योपैथी की बुक मेरे पास है, मैं पढ़ता हूँ। तो उसमें से पढ़ के मैंने उसको एक मेडिसिन खरीद कर दी। मैंने कहा ये अपने फादर को देखे, देखो आप यकीन मानेंगे 3 महीने के अंदर अंदर उसके फादर बिल्कुल ठीक हो गए।
0: ओहो,
1: इस तरह की मदद, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो इनको इस तरह की मदद करके हम एक तरह से आध्यात्म की ही को फॉलो करते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों, ये भी कितना एक खूबसूरत रूप है आध्यात्म का जो माथुर साहब ने आज हमें बताया, बहुत सुंदर। चलिए फिर माथुर साहब की ही आवाज में इस भजन का आनंद लेते हैं और विचार करते हैं।

0: बहुत प्यारी बात, बहुत ही प्यारा भजन। माथुर साहब, जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वहां दो शब्द और आ जाते हैं, मेडिटेशन और प्रेयर, ध्यान लगाना और प्रार्थना करना। तो सर आपके हिसाब से ध्यान लगाने में, मेडिटेशन करने में और प्रार्थना करने में, प्रेयर करने में क्या अंतर है सर?
1: सर ये मेडिटेशन या ध्यान लगाना एक तरह से एक अपने अंदर जाने की एक प्रैक्टिस है। मतलब जब आप ध्यान लगाते हैं तो आप बाहर की दुनिया से अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है मेडिटेशन करना, इतना आसान नहीं है, लेकिन आप कोशिश जरूर करते हैं। और अगर आपने समझिए 10 मिनट मेडिटेशन किया तो हो सकता है उसमें से 2 या 3 मिनट ही आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरी बाहर की दुनिया से अलग हो गए हैं, क्योंकि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो दिन रात होता रहता है वो दिमाग आपके ख्याल वो आपके दिमाग में आते ही रहते हैं, आप कितना भी अपने आप को उनसे अलग करने की कोशिश करें। मेरा ये अनुभव है कि वो जो ख्याल है, जो दिन भर की बातें, वो आपको परेशान करती ही रहती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं रोज मेडिटेशन की तो उसमें एक दो पल ऐसे आते हैं कि आपको ये लगता है कि आप बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, तो वो तो हो गया मेडिटेशन। अगर आप इतना भी कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ काफी है, क्योंकि जो संत लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, जब पहाड़ों पर जाकर मेडिटेशन करते हैं, तपस्या करते हैं, तो वो लोग इसीलिए अपने आप को दुनिया से अलग करके बाहर बैठ जाते हैं ताकि उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, हम तो एक साधारण आदमी है जो दुनिया में रहते हैं। तो मेडिटेशन तो ये हो गया, और जो प्रेयर है वो प्रेयर तो हम लोग जो रोज पूजा में करते हैं वो एक एक्सटर्नल चीज है, एक एक्सटर्नल डायलॉग है जो हम भगवान से अपने अपने तरीके से उसको करने की कोशिश करते हैं, अपनी ग्रेटफुलनेस, अपनी ग्रेटिट्यूड, अपनी एक जो भी हम भगवान से मांगना चाहते हैं, जो हम निवेदन करना चाहते हैं, अपनी जो फीलिंग्स है वो हम भगवान को प्रार्थना के रूप में हम लोग देते हैं, हम लोग अपना अर्पण करते हैं उनको, और उसके बदले में आपको आपकी जिंदगी में अच्छा भी होता है सब कुछ। और मैं ये नहीं कहता कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनका अच्छा नहीं होता, उनका भी अच्छा होता है। तो अपने अपने तरीके हैं प्रार्थना करने के, लेकिन हमारा तरीका जो है प्रार्थना करने का वो पूजा से है, मतलब फिजिकल पूजा, पूजा में बैठकर, चाहे आप 5 मिनट ही सुबह उठ के पूजा करें या दिन में करें, लेकिन करना जरूरी समझते हैं हम इसको। तो मेरे हिसाब से मेडिटेशन में और प्रार्थना में ये फर्क है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं सच कहूं चांद साहब, जैसा आपने हमारी बातचीत के दौरान पहले कहा कि इस कार्यक्रम की वजह से हम अपने आप में बहुत कुछ सीखने को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब हम इन सवालों के बारे में डिस्कशन करते हैं, जवाब ढूंढते हैं। आपने बड़ी ही प्यारी बात कही, हम लोग जब बात कर रहे थे कि पहले हमें लगा करता था कि साहब अध्यात्म तो साधु संत लोगों की चीज है, हमारी तो है नहीं, लेकिन हम उनकी प्रैक्टिस जरूर करते हैं, ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। तो आज जब आप मुझे बता रहे हैं कि ध्यान और प्रार्थना में क्या अंतर है, तो बिल्कुल एक नया आयाम मेरे सामने खुल रहा है, एक नई चीज, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे धुंध सी थी जो अब हट रही है, जो अब कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या था और क्या हम समझे बैठे थे। भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद चांद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों विचार कीजिए, एक बड़ी ही खूबसूरत चीज, बड़ी ही सरल भाषा में, बहुत सरल भाषा में, इसमें कोई साधु संतों की और बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों की भाषा नहीं है, ये एक नॉर्मल साधारण से इंसान की भाषा में चांद साहब ने हमें बताया है क्या फर्क है ध्यान का और प्रेयर का। चलिए इसी बात पर माथुर साहब की ही आवाज में ये प्यारा सा भजन सुन लेते हैं।

0: बहुत सुंदर। माधव साहब, क्या आप मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी अपनाने से, यानी कि मान लीजिए आपकी सारी बातें सुनकर मुझे बड़ी चीजें समझ में आ गई, मेरे दोस्तों को भी समझ में आ गई और मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो क्या मुझे शांति मिलेगी, आत्मिक शांति मिलेगी, इससे मुझे फायदा क्या होने वाला है, मतलब वो बताइए।
1: सर, मेरा ये मानना है कि पिछले 3 साल से मैं प्राणायाम कर रहा हूं और उसका एक खास कारण है, क्योंकि जब 3 साल पहले जब मुझे शिंगल्स का अटैक हुआ था तो उसमें मैंने अपने हाथ की और लेफ्ट लेग की और लेफ्ट हैंड की मोबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई थी। शिंगल्स में होता है कि ये आपकी मसल्स को और नर्व्स को अटैक करता है, मतलब उसकी पूरी जो क्षमता है आपकी नर्व्स की और मसल्स की वो पूरी चली जाती है। तो फिजिकल एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करने से उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन मैं पता नहीं किस तरीके से मेरा एक जुड़ाव हो गया एक रेकी की जो टीचर थी, जो कोच थी, उन्होंने मुझे बताया कि आप ये शुरू कीजिए, प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया शुरू कीजिए, आपको और आराम मिलेगा। तो समझिए मैं पिछले 2 या 2.5 साल से इसको कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं अपनी बीमारी के बाद में बारे में बहुत ज्यादा टेंस रहता था, बहुत डिप्रेशन रहता था, बहुत टेंशन रहती थी दिमाग में, कह रहे मुझे क्या हो गया, ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब से मैंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम बढ़ाया है, मतलब अपने तरीके से लोगों की मदद करना और मेडिटेशन करना और यू नो प्राणायाम करना, सुदर्शन क्रिया करना, तो मेरा मेंटल स्ट्रेस बहुत कम हो गया। मुझे अब कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, मैं अंदर से इंटरनली, जो कि दवाइयों से नहीं हो सकता था। और तो ये मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है कि स्पिरिचुअलिटी से डेफिनेटली आपकी मेंटल टेंशन जो है वो कम होती है, और मेरी तो हुई है। और जो सिचुएशंस जैसे जैसे आपके सामने आती हैं, उन सिचुएशंस को आपको एक्सेप्ट करना है। मतलब ये मैं ये नहीं कह सकता कि ये बीमारी मुझे क्यों हुई, अब हुई तो हुई, मतलब हर एक की जिंदगी में खुशी और गम तो आते ही रहते हैं, हर एक को अपना अपने दुख सुख का हिस्सा मिल जाता है अपनी जीवन में, तो ये मुझे मिलना था तो मुझे मिल गया, लेकिन मेरा फर्ज क्या है कि मैं उसका सामना कैसे करूं।
0: जी जी,
1: ये मेरे बस में है, इस वक्त उसका सामना कैसे करूं।
0: जी,
1: तो मैंने ये किया तो मुझे तो बहुत मेंटल रिलीफ मिला इससे।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों देखिए, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द साधु संत और जो भी हमारे महात्मा गुरु लोग हैं जो हमें तमाम तरीके के प्रवचन देते हैं, मैं उन सब की तरफ हाथ जोड़ते हुए, उनको रेस्पेक्ट पे करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आज जो चांद माथुर साहब बता रहे हैं वो एक हमारे आपके जैसे इंसान के भाव और एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जो ये महात्मा लोग बताते हैं उसमें वो उनके विचार होते हैं जिसे हम मानते हैं, लेकिन आज माथुर साहब का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कैसे आध्यात्म ने उनकी बीमारी से, उनकी फिजिकल बीमारी से यानी कि शारीरिक बीमारी से उनको आराम पहुंचाया, दूर कर दिया, स्वस्थ बनाया। इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं सचमुच आज बहुत बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं चांद माथुर साहब कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य साबित हो रहा है, सार्थक हो रहा है आपकी इन बातों से, कि लोग समझ पाए कि कोई एक साधारण इंसान कैसे लाभान्वित होता है इन चीजों से। चलिए,
1: मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताया आपको।
0: जी जी, जी।
1: मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूँ आपके साथ।
0: नहीं, बिल्कुल ठीक बात है,
1: और मैंने इसीलिए बहुत सोच समझ के आपको उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कितने लोग इससे एग्री होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है।
0: ऐसी बात नहीं है चांद साहब, देखिए आपने भी बहुत बहुत एक्सपीरियंस, बहुत अनुभव इकट्ठा किया है जिंदगी में, लाखों करोड़ों लोगों से आपने भी मुलाकातें की होंगी। जो व्यक्ति सच बोल रहा होता है ना, दिल से बोल रहा होता है, वो लोगों के दिल तक जाता है। लोग चाहे ना चाहे उस व्यक्ति की आवाज में, उसके मैनरिज्म में, उसके बॉडी लैंग्वेज में समझ ही जाते हैं कि ये व्यक्ति झूठ तो नहीं बोल रहा, वो आवाज में सुनाई दे जाता है साहब, चिंता मत करिए। तो लोग बाग आज आपकी बात सुनकर, आपकी आवाज के टेक्सचर सुनकर, आपकी आवाज का जो भाव है ना वो सुनकर समझ पा रहे होंगे कि ये आदमी बनी बनाई बात नहीं बोल रहा, जो दिल से आ रही है वो बोल रहा है।
1: जी,
0: बहुत सुंदर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चांद माथुर साहब का ही गाया हुआ, जी हाँ, उन्हीं की आवाज में एक प्यारा सा भजन सुन लें।

0: बहुत प्यारा भजन। मातर साहब, अब एक और बड़ी टफ सी, बड़ी क्लिष्ट, बड़ी मुश्किल, लेकिन बड़ी ही कॉमन, बहुत ही कॉमन बात करते हैं, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन से वगैरह से जुड़ी हुई। आत्मा के बारे में क्या विचार है आपका? आपको लगता है आत्मा होती है?
1: सर, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो कहीं किताबों में नहीं मिलती है, लेकिन अपनी सोच मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं।
0: जी,
1: मुझे लगता है कि आत्मा यानी सोल, ये एक तरह का एक्सपीरियंस है और ये एक सोचने का विषय है। तो मुझे लगता है कि आत्मा जो है वो शरीर से और आपके मन से, ये एक परे चीज है जिसके बारे में हम कोई नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जब मनुष्य की मौत होती है तो शरीर चला जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो किसी और शरीर में प्रवेश कर जाती है, इतना ही हम लोग जानते हैं। मतलब एक रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जो सुनते हैं, जो कभी किसी की मौत होती है, जब कभी आप प्रेयर मीटिंग में आप अटेंड करते हैं, तो जो भी लोग प्रेयर मीटिंग में, जो ज्ञानी लोग आके बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि शरीर आपका बदलता रहता है और आपकी जो आत्मा है वो किसी दूसरे शरीर में चली जाती है, लेकिन किसी ने आत्मा को आज तक कभी देखा नहीं, क्योंकि मरने के बाद तो हमें भी नहीं पता हम कहाँ जाते हैं। तो ये

0: इंटरनल एक पर्सनैलिटी है ये, जो मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा जो है एक इंटरनल पर्सनैलिटी है, और इसको एक्सपीरियंस करने की बात है। इसमें कोई ऐसी फिजिकल चीज नहीं है आत्मा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ख्याल है। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, मैं कुछ पढ़ा ज्यादा इसके बारे में मैंने स्टडी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ज्ञानी लोग कहते हैं तो कोई ना कोई तो इंटरनल फीलिंग होती है। जब आप सुने गुरु रविशंकर जी को सुने या किसी और को सुने, तो ऐसा मुझे लगता है कि कोई कोई इंटरनल चीज है जो आपको पता नहीं है। हम तो सिर्फ अपना हार्ट, अपना दिल, अपने हाथ पैर, यही सब लोग जानते हैं, लेकिन जब वो नष्ट हो जाता है, जब आप खत्म हो जाता है, उसके बाद में जो चीज आपके शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, उसे शायद आत्मा कहते हैं, और वो जाती ही होगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आपको इसके बारे में भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस साझा कर सकता हूँ, जो
1: जी बिल्कुल
0: जो मैं आज कह रहा हूं उसको, वो एक मेरे बिलीफ में कन्वर्ट हो गया है। वो इस तरह कन्वर्ट हो गया, जब मैंने इसको बारे में सोचना शुरू किया, आपने जो प्रश्न पूछा मुझसे, तो मैंने बहुत साल पहले जब मैं बच्चा था, तब मैं यूपी में रहता था, मतलब हमारे नाना के घर में मेरठ में मैं रहता था, तो हम लोग ऐसे ही छत पे बैठे हुए थे, तो हमारी एक बहुत ही ओल्ड ग्रेट ग्रैंड मदर थी जो छत पे बैठी हुई थी, बहुत ही बुढ़ी थी। उनके इनकी एक आदत थी कि जब भी उनको कोई नमस्कार करता था तो वो राम राम, मतलब सैकड़ों आशीर्वाद आपको दे देती थी।
1: जी
0: तो इट सो हैपेंड ऑन वन डे कि मैंने उनको राम राम कहा, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, राम राम बोला मुझे, और उस दिन उनकी मेरे सामने उनकी डेथ हो गई। मुझे पता नहीं था कि डेथ किसे कहते हैं, और वो एक तरफ को, मतलब वो बिस्तर पे बैठी थी, एकदम लुढ़क गई बिस्तर के ऊपर, और उनके शरीर में से एक नीले रंग की कोई चीज निकली जो ऊपर गई।
1: उत्तरी की ओ माय गॉड
0: हाँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब मुझे वो बात रियलाइज हुई सुनकर, फिर मैंने जाते ही नीचे अपनी मदर को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो तो मदर तो बहुत बड़ी है, तो उन्होंने समझ गई इसका मतलब उनकी डेथ हो गई है, उनकी आत्मा निकल गई। इसको मैं कहता हूं कि ये कहीं ना कहीं आत्मा होती है, लेकिन मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने उसको उनकी शरीर से निकलते हुए देखा।
1: माय गॉड
0: जी,
1: आज
0: तो ये मेरा
1: जब
0: पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये कहते हैं, ये भी सुना है हमने, मुझे पता नहीं कितना सच है, कि आत्मा जब निकलती है तो किसी ना किसी रास्ते से निकलती है, तो जब इंसान की डेथ होती है तो उसका कोई ना कोई शरीर का अंग जो है वो खुला रहता है, या तो आंखें, या तो नाक, या तो मुंह, इन तीन जगह से, या आपकी जो मलमूत्र की जगह होती है वहां से भी आत्मा निकलती है, जहां से उसको जगह मिलती है।
1: दोस्तों, अगर आपने गौर किया तो चांद माथुर साहब ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताए हैं, और खास करके ये वाला जो एक्सपीरियंस इन्होंने बताया कि उस महिला की उनके सामने निधन हुआ और उन्होंने वो चीज देखी, और जाके ठीक है उस वक्त माथुर साहब उतना मतलब छोटे थे, वो उस चीज को बहुत सीरियसली नहीं ले पाए, उन्होंने जाके अपने माता जी को बताया और माता जी ने उस चीज को समझाया। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मुझे ऐसा लगता है करोड़ों लोगों में से किसी एक को होता होगा, और आपने बिल्कुल सही सही
0: जी
1: बात फरमाई है माथुर साहब। ये सचमुच ही चमत्कार है। आप बहुत मतलब फॉर्चुनेट हैं, जिसको कहा जाए सौभाग्यशाली हैं,
0: जी हाँ जी हाँ
1: जिन्होंने जिंदगी के एक सबसे मतलब महत्वपूर्ण पहलू को अपने सामने घटित होते हुए देखा। ये बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। फिर वो चाहे
0: जी
1: जन्म हो चाहे मृत्यु, दोनों ही इवेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है और बहुत जरूरी है। ये सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। कहें कि साहब हम मृत्यु के बारे में बात नहीं करेंगे, डर लगता है वगैरह वगैरह, तो ये उस कबूतर की तरह है जिसने बिल्ली देखकर आंखें मूंद ली, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने
1: उचित तो
0: जी
1: नहीं
0: हाँ
1: है ये। तो चलिए, आज एक नया आयाम खुला आत्मा के बारे में, चांद साहब ने अपना पर्सनल अनुभव बताया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए प्रस्तुत करता हूं ये प्यारा सा भजन, इसे सुनिए और विचार कीजिए।

0: बहुत सुंदर माधुर साहब
1: जी,
0: जो लोग आपने अभी जब हम लोग ये बातचीत शुरू हुई तो आपने बहुत सारा विचार किया, कुछ समझा और हम लोगों के साथ अपने अनुभव शेयर किए। आपको अब क्या लगता है कि अगर कोई इंसान अध्यात्म को अपनाना चाहे, अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहे, तो उसे क्या करना चाहिए? सर
1: मेरा ख्याल ये है कि उसको एक बहुत ही सिंपल सी शुरुआत करनी चाहिए, जैसे रोज डेली कुछ मिनट के लिए साइलेंस को फॉलो करना चाहिए, मतलब मौन रखना या अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना और अपना जो एक्सपीरियंस है उसमें आपने क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या अच्छा रहा क्या खराब रहा, तो जो अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसको दूसरों से साझा करें, दूसरों को भी स्पिरिचुअलिटी के लिए मोटिवेट करें और थोड़ा दिखावे से थोड़ा दूर रहे। मतलब दिखावे की जिंदगी आजकल बहुत है कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, तुम्हारे पास नहीं है, उससे जरा दूर रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि एक पेशेंस इंसान को रखनी चाहिए हर चीज में। ऐसा नहीं कि मैंने ये किया है तो मुझे कल से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाना चाहिए, ये नहीं होता है। तो थोड़ा पेशेंस रखें और लव एंड कंपैशन को फॉलो करें, और जब किसी चीज के बारे में आपको ज्ञान ना हो तो पूछने में कभी संकोच ना करें। मतलब कोई होगा जो ज्ञानी होगा तो आपको वो गाइड ही करेगा। अगर आपको कुछ दिमाग में आपके कुछ कोई परेशानी चल रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो दूसरों से पूछें, सलाह करें, उनकी सलाह को समझने की कोशिश करें। और आपका जो डेली, जो आपके जीवन है, जो आपका डेली लाइफ है, उसको ही अपना उद्देश्य बना के रखें। मतलब उसको जितना सिंप्लिसिटी के साथ आप जिएंगे, बजाय इसके कि आप मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा ध्यान दें, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दें, अपनी सेहत, अपना वेलबींग, अपने पार्टनर की केयर, अपने बच्चों की केयर, अपने घर की केयर, इन सब बातों पर ध्यान दें, बजाय इसके कि आप दुनिया को देखें, देखो उसके पास ये है लेकिन मेरे पास नहीं है, उसको कंपैरिजन ना करें कभी भी। तो मेरे हिसाब से ऐसी एक शुरुआत करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों, ये चांद माथुर साहब की प्रैक्टिकल एडवाइसेस हैं। डेली रूटीन में जो उन्होंने अध्यात्म को समझा है, अपने जीवन को जिस भी तरीके से उन्होंने संभाला, उसे सुधारा, उनके हिसाब से, उनकी परिभाषा के हिसाब से उसे सुंदर बनाया, उस अध्यात्म को, उन प्रैक्टिसेस को, उन तरीकों को आज चांद माथुर साहब ने आपके साथ शेयर किया, बताया कि साहब मैंने ये किया था, उसकी वजह से मेरी जिंदगी सुंदर हुई। अब ये निर्णय जो है ये आपको लेना है दोस्तों, कि आपको चांद माथुर साहब के जो तरीके हैं वो अच्छे लग रहे हैं, सरल लग रहे हैं, अपनाने लायक लग रहे हैं, तो अपनाइए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए जैसा माथुर साहब ने किया।
1: सर एक और बात मैं यहाँ पर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग,
0: नो प्रॉब्लम,
1: एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है तो हमेशा अपने से छोटे को देखें। मतलब जिसके पास आपसे कम है
0: जी,
1: ये देख के परेशान ना हो कि उसके पास तो मुझसे ज्यादा है। आप ये देखिए कि आपसे कम कितने लोगों के पास है और आप कितने लकी हैं, कितने खुशनसीब हैं कि आपको ये सब कुछ मिला है
0: जी,
1: जो और किसी दूसरे के पास नहीं है। तो जो आपको खुशी मिलेगी उसका बयान नहीं कर सकते आप। और अगर आप किसी दूसरे को देखेंगे जिसके पास आपसे ज्यादा है तो जो आपको दुख मिलेगा वो भी बहुत खराब होता है।
0: सही कहा।
1: मैं ये समझता हूं कि हमेशा अपने से छोटे को देखिए जिसके पास वो नहीं है जो आपके पास है।
0: भाई वाह,
1: वो जो खुशी आपको मिलेगी वो आपकी आंतरिक खुशी है।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने प्रस्तुत किया, सही फरमाया साहब आपने। अपने से नीचे वालों को, अपने से छोटे, अपने से गरीब, या थोड़ा सा उनको देख लीजिए तो आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको लगेगा कि आप बहुत बेहतर स्थिति में हैं। आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे, जो भी शक्ति है उसका आप धन्यवाद करेंगे और उनकी मदद करने की कोशिश में तत्पर होंगे, तभी मजा आएगा
1: जी।
0: बहुत सुंदर माथुर साहब, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे इस प्रोग्राम में और आपसे बातचीत की। थैंक यू सो मच।
1: बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी। मेरे को तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी कितनी नॉलेज बढ़ी है इन इसका उत्तर खोजने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। एक आम, तीन दोस्त और एक लेजेंड की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक छोटे से आम से शुरू होती है, बट एंड बिल्कुल आम लोगों पे नहीं होती। ये कहानी खत्म होती है हिस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक नाम पर। रुक जाइए, ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, इसमें है बचपन की शैतानी, फॉरबिडन जंगल जैसे पेड़, दूरदर्शन का एक संडे और एक मिशन इम्पॉसिबल। बीच में एक छोटा सा लड़का जिसकी एनर्जीज इतनी ज्यादा थी कि अगर उसे चैनलाइज नहीं किया जाता तो शायद कॉलोनी ही हिल जाती। 80s का संडे, एक सेक्रेट रिचुअल। दोस्तों, आज के बच्चे समझ ही नहीं सकते कि संडे आफ्टरनून का मतलब क्या होता है। एक ही चैनल दूरदर्शन और एक ही इवेंट संडे की मैटनी फिल्म। पूरा परिवार सोफे पर, पड़ोसी भी आ जाते थे कभी कभी, और अगर मूवी अच्छी हो तो साइलेंस ऐसा होता जैसे एग्जाम चल रहा हो। उस दिन चल रही थी गाइड और बैकग्राउंड में बज रहा था आज फिर जीने की तमन्ना है। बाहर का महा साइलेंस, कॉलोनी का ग्राउंड बिल्कुल खाली, ना क्रिकेट ना साइकिलिंग, बस हवा चल रही थी और पेड़ हिल रहे थे। पर एक बेंच के पास तीन शैडोज बैठी हैं, सुनील, अविनाश और एक छोटा सा लड़का, छोटा साइज पर फुल पावर। नाम सचिन। सचिन मतलब फुल ऑन एनर्जी पैकेट। अगर आप उसे 10 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो तो या तो वो कुछ तोड़ देगा या फिर कुछ नया कर देगा। अब कॉलोनी में कुछ बड़े बड़े आम के पेड़ थे, उन पे आम लगते थे, रस भरे, टेम्पटिंग। पर रूल ये था कि उसे टच भी नहीं करना। और दोस्तों, जब किसी बच्चे को बोलो ये मत करो तो उसका मतलब होता है बस यही करना है। सचिन उन पेड़ों को रोज देखता था जैसे कोई एक्सप्लोरर एवरेस्ट को देखता हो। सुनील धीरे से कहता है, सब लोग टीवी देख रहे हैं। अविनाश कहता है, ये परफेक्ट चांस है। सचिन की आंखों में एक चमक आती है, मिशन आम। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, आज फिर जीने की तमन्ना है। और सचिन, देखा, यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहा है। तीनों धीरे धीरे पेड़ के पास जाते हैं जैसे आर्मी ऑपरेशन हो। सचिन सबसे आगे, मैं लीड करूंगा। सुनील, तू सबसे छोटा है। सचिन बोलता है, इसीलिए तो सबसे फास्ट हूं। और चढ़ाई शुरू, एक ब्रांच, दो ब्रांच, सचिन ऑलमोस्ट टॉप पे, आम बिल्कुल सामने, और उसका एक्सप्रेशन, आज हिस्ट्री लिखनी है भाई। और तभी सुनील भी सेम ब्रांच पर चढ़ जाता है। ब्रांच सोचती है, भाई मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूं। क्रैक, और फिर ग्रेविटी का फुल डेमोन्स्ट्रेशन, थार, धूम, धपाक, पूरी कॉलोनी बाहर, टीवी बंद, गाइड पॉज। ये आवाज कहां से आई?
और वहां सचिन और उसकी टीम आम के नीचे उफ पड़े हुए, आम के नीचे। पेरेंट्स का एक्सप्रेशन, बेटा आज तो तुम गए। घर पे इमरजेंसी मीटिंग बैठती है, मम्मी बोलती है ये लड़का रुकता ही नहीं है। पापा कहते हैं इसकी एनर्जीज बहुत है, और भाई कहता है डायरेक्शन जीरो है। सचिन क्वाइटली, पर आम मिल जाता। और तब एक डिसीजन होता है, इसको किसी स्पोर्ट्स में डालो, इसकी एनर्जीज को यूज करो। नेक्स्ट मॉर्निंग सचिन को ले जाया जाता है एक क्रिकेट कोचिंग कैंप में। सचिन बोलता है ये क्या है, मैं आम के लिए गया था, ये बात कहां से आ गई। कोच ऑब्जर्व करते हैं रमाकांत आचरेकर जी, उनकी नजर अलग थी। उन्होंने देखा एनर्जी, फोकस, जुनून, और उन्होंने डिसाइड किया ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। सचिन बैटिंग करता है। पहला शॉट थोड़ा ऑकवर्ड, दूसरा शॉट बेटर, और तीसरा शॉट परफेक्ट टाइमिंग। और धीरे धीरे वो एनर्जी जो पेड़ पे चढ़ रही थी अब बॉल के पीछे दौड़ रही थी। दोस्तों जरा सोचिए, अगर वो आम का पेड़ नहीं होता, अगर वो गिरता नहीं, और अगर पेरेंट्स परेशान नहीं होते, तो शायद उन एनर्जीज को डायरेक्शन ही नहीं मिलता। कभी कभी हमारी शैतानी, हमारी गलतियां हमारी डेस्टिनी का शॉर्टकट होती हैं। और फिर क्या हुआ वो सब जानते हैं। एक छोटा लड़का जिसे आम चाहिए था एक दिन दुनिया का फेवरेट बन गया। लोग उसका नाम लेते ही स्माइल करते हैं, रिस्पेक्ट फील करते हैं। दोस्तों जिंदगी कभी कभी बहुत सिंपल सिग्नल्स देती है। एक आम, एक गिरना, एक दांत, और उसके पीछे छुपा होता है एक बड़ा सा फ्यूचर। आपकी लाइफ में कोई आम मोमेंट था, कोई शैतानी जो ब्लेसिंग बन गई, या कोई गिरना जो डायरेक्शन बन गया? जरा सोचिए, शायद आपका भी वो मैंगो मोमेंट है जो आपको कहीं ले जाने वाला है। मैं हूं आपकी दोस्त, और अगली स्टोरी तक याद रखिए, कभी कभी एक छोटा सा आम एक पूरी कहानी लिख देता है जो बिल्कुल आम नहीं होती, बहुत खास होती है, जैसे कि आप। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: टाइपिंग वाले आर्टिस्ट। टाइपिंग डॉट डॉट डॉट, एक मिनट। टाइपिंग डॉट डॉट डॉट डॉट डॉट डॉट, दो मिनट। और मैसेज आता है इतना बिल्डअप तो किसी फिल्म के ट्रेलर में भी नहीं होता।
2: लिखे जो

एक फैसला, एक प्यार और एक कहानी जो दुनिया बदल गई। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सफर है। एक ऐसा सफर जहां जिंदगी, कानून, प्यार और किस्मत सब एक ही लाइन पे मिल जाते हैं। और बिलीव करिए, इसका एंड आपको सरप्राइज ही नहीं, हैरान कर देगा। एक आदमी जो कभी पकड़ा नहीं गया। सोचिए, रात का वक्त है, शंघाई की सड़कें, बारिश की हल्की सी बूंदें, लैंटर्न्स हवा में धीरे धीरे हिल रहे हैं और उन्हीं रोशनियों के बीच एक आदमी चल रहा है। उसकी चाल सीधी है पर उसका रास्ता कभी सीधा नहीं रहा। नाम फैंग डाओलोंग, पर असली बात यह है कि उसका कोई एक नाम नहीं था। दिन में कार्गो शिप पे काम करता था एक आदमी, साइड में स्मगलर और असली सच एक सीक्रेट एजेंट। एक ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी खुद भी नहीं समझ पाता था, क्योंकि वो हर रोज किसी और की जिंदगी जी रहा होता था। फैंग के लिए हीरो बनना जरूरी नहीं था, जिंदा रहना जरूरी था। उस पर हमले हुए, धोखे हुए और कई बार उसकी मौत का प्लान बनाया गया, पर वो बच गया। कैसे? क्योंकि वो लड़ता नहीं था, वो समझता था और निकल जाता था। इसलिए लोग कहते थे वो आदमी नहीं, एक साया है। 29 इयर्स की उम्र में फैंग सब कुछ छोड़कर शंघाई आ जाता है। नया शहर, नया नाम और नई जिंदगी, और वो है पोर्ट ऑफिसर। आईने देखिए, जो आदमी कल तक इलीगल चीजें ले जाता था, वो आज उन्हें रोक रहा है पोर्ट ऑफिसर बनके। पर दोस्तों, पास्ट कभी पीछा नहीं छोड़ता, ये हम सब जानते हैं। वो बस थोड़ा धीरे चलने लगता है। इसी शहर में एक और कहानी लिखी जा रही है। एक औरत, नाम है लिली, उसकी आंखों में शाम का साया है और आवाज में थोड़ी सी थकान। वो स्ट्रांग है पर टूट चुकी है। सिंगल मदर, दो बेटियां और जिंदगी का हर बोझ अकेली उठाती है। लिली गैम्बलर थी और वो जीतने की आदत डाल चुकी थी। लोग कहते थे इसके हाथ में जादू है, पर जिंदगी का एक रूल होता है, हाउस ऑलवेज विंस। और एक दिन जिंदगी जीत जाती है। कर्ज, लोगों का प्रेशर और घर में दो छोटी बेटियां, लिली के पास अब ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ मजबूरी है। उसे ऑफर मिलता है, एक काम कर लो, सब ठीक हो जाएगा, ओपियम स्मगलिंग। एक रात, एक शिप और एक रिस्की सफर। लिली सोचती है और फिर हां कह देती है। पोर्ट पर रश है, लोग भाग रहे हैं। लिली बैग लेकर आगे बढ़ती है, बैग चेक होगा, वो रुक जाती है। ऑफिसर कौन है जानते हैं? जी हाँ, फैंग डाओलोंग। बैग खुलता है, अंदर ओपियम। अब यहां कहानी खत्म हो सकती थी, अरेस्ट, जेल और दी एंड। पर कहानी यहां से शुरू होती है दोस्तों। फैंग पूछता है, ये क्यों कर रही हो? लिली कहती है, दो बेटियां हैं मेरी। उसकी आंखों में ना ड्रामा है ना एक्टिंग है, सिर्फ सच्ची आंखें हैं। फैंग चुप हो जाता है, क्योंकि उसने भी मजबूरी देखी है। और फिर वो साइड हो जाता है, चली जाओ, बस इतना ही कहता है, ना लेक्चर ना वार्निंग, सिर्फ एक चांस। महीने बीत जाते हैं। एक रात, एक क्लब, म्यूजिक, स्मोक और बीच में लिली। फैंग उसे देख लेता है और दोनों मुस्कुरा देते हैं। फिर मिलना, फिर बातें, फिर अपनी कहानियां शेयर करना। और धीरे धीरे दो लोग जो बस सरवाइव कर रहे थे, जीना सीख लेते हैं। 1949, शहर बदल रहा है, पावर्स शिफ्ट हो रही हैं और फैंग जैसे लोग डेंजर में हैं। उन्हें भागना है और इस बार वो अकेला नहीं है। फेक नाम, फेक जिंदगी, रात के अंधेरे में वो भागते हैं हांगकांग की तरफ।
अब ना स्पाई मिशंस, ना थ्रिल, सिर्फ रियलिटी। फ्लोर साफ करना, डिशेस धोना और चुप रहना। कभी कभी पास्ट याद आता है, पर वो बस एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर एक दिन एक बच्चा पैदा होता है, उसी गरीबी में पर उम्मीद के साथ, उनका बेटा। आप सोच रहे होंगे ये तो परफेक्ट फिल्म है, पर दोस्तों ये फिल्म नहीं है, ये सच्चाई है। और वो बच्चा जो इतनी मुश्किलों में पैदा हुआ, वो बड़ा होके बना जैकी चैन। सोचिए, अगर उस रात फैंग ने लिली को अरेस्ट कर लिया होता तो क्या होता? ना ये कहानी होती, ना ये प्यार होता और ना ये सुपरस्टार होता। जिंदगी में कभी कभी हीरो बनना जरूरी नहीं होता, इंसान बनना जरूरी होता है। कभी कभी एक छोटा सा डिसीजन दुनिया को एक लेजेंड दे देता है। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। अगली कहानी तक याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है और हर इंसान के पीछे एक सैक्रिफाइस जरूर होता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: फ्री वाईफाई लवर्स, कुछ लोग जगह नहीं देखते, बस फ्री वाईफाई देखते हैं। यहाँ व्यू कैसा है, होटल रूम कैसा है, फैसिलिटीज कैसी है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। चेक इन करते ही उनका पहला सवाल होता है, फ्री वाईफाई का पासवर्ड क्या है।

जब कचरा कहानी बन गया। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी सी अलग इसीलिए है क्योंकि थोड़ी अजीब है और सच कहूं थोड़ी सी शर्मिंदा करने वाली भी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन चीजों की जो हम रोज फेंक देते हैं और उन लोगों की जो उनमें भी कहानियां ढूंढ लेते हैं। सोचिए, सुबह के 4 बजे का टाइम, ना ट्रैफिक ना हॉर्न, बस हल्की सी ठंडी हवा और स्ट्रीट लाइट्स का पीला सा उजाला। और इसी वक्त एक आदमी चल रहा होता है, हाथ में ग्लव्स लिए, पीछे एक कचरे की गाड़ी, नाम मुस्तफा। अब मुस्तफा कोई आम इंसान ही है, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल आम नहीं है। आप और मैं डस्टबिन के पास से गुजरते हैं और ऑटोमेटिकली थोड़ा सा फेस साइड कर लेते हैं, पर मुस्तफा वो रुकता है, झांकता है और ध्यान से देखता है। उसे क्या दिखता है? किताबें। जी हाँ, किताबें। एक दिन एक पुरानी सी नॉवल, हाफ टोन कवर, पेजेस मुरझाए हुए, जैसे किसी ने थक कर उसे छोड़ दिया हो। मुस्तफा उसे उठाता है और एक सेकंड के लिए रुकता है। कल तक किसी के हाथ में थी, आज कचरे में है। वो उसे घर ले जाता है, रात को पढ़ता है और खुद से सोचता है, कहानी तो अब भी जिंदा है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। हर दिन एक नई किताब, कभी स्कूल बुक, कभी पोएट्री, कभी हिस्ट्री। और मुस्तफा हर किताब को ट्रीट करता है जैसे किसी ने उसे पर्सनली दी हो। एक दिन उसका दोस्त बोलता है, मुस्तफा भाई, तुम कचरा उठाते हो या पढ़ाई करते हो? मुस्तफा हंस के कहता है, दोनों, दिन में काम, रात में उसके सपने। सब हंसते हैं, पर धीरे धीरे वो भी नोटिस करते हैं कि मुस्तफा सिर्फ बुक्स नहीं उठा रहा, रिस्पेक्ट उठा रहा है। नेक्स्ट डे एक कोवर्कर एक बुक साइड में रख देता है, ले तेरे लिए। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर धीरे धीरे ये एक आदमी का शौक नहीं, एक टीम का मिशन बन जाता है। कभी कभी उनके बीच फनी बातें होती हैं। ये हॉरर बुक है, तू ले जा, तू ऑलरेडी स्कैरी है। ये रोमांस नॉवल है, इसको मुस्तफा को दो, उसकी लाइफ में थोड़ा रोमांस आए। और सब हंसते हंसते बुक्स कलेक्ट करते जाते हैं। अब प्रॉब्लम शुरू होती है, बुक्स बढ़ने लगती हैं। मुस्तफा के घर का हाल, बेड के नीचे बुक्स, अलमारी में बुक्स, किचन शेल्फ पे बुक्स। उसकी वाइफ, ये घर है या सेकेंड हैंड लाइब्रेरी? मुस्तफा कहता है, ये फ्यूचर का म्यूजियम है। टीम समझ जाती है, अब स्पेस चाहिए, तो क्रिएट करते हैं। और उन्हें मिलती है एक पुरानी डस्टी अबंडन फैक्ट्री की जगह, जो पहले गार्बेज ट्रक्स के लिए यूज होती थी। उन्होंने फैक्ट्री साफ की, पेंट की, शेल्फ्स बनाए और बुक्स अरेंज की। धीरे धीरे कचरे की जगह कहानियों का घर बन गया। 2018 में ये लाइब्रेरी ओपन होती है, पर ये सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है, ये एक मैसेज है कि कुछ भी बेकार नहीं होता। एक छोटी लड़की आती है, अंकल ये बुक्स फ्री हैं? मुस्तफा मुस्कुराता है, नॉलेज फ्री होती है बेटा। उस लड़की की आंखों में चमक आ जाती है और फिर उस मोमेंट मुस्तफा समझ जाता है कि ये सब कुछ वर्थ इट था। फिर वो लोग रुकते नहीं, हर जगह बुक्स पहुंचनी चाहिए और स्टार्ट होता है एक मोबाइल लाइब्रेरी का मिशन। गाड़ी में बुक्स, गांव गांव तक नॉलेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इवन प्रिजन्स तक ये कहानियां, ये किस्से और ये किताबें पहुंचती हैं, क्योंकि कहानी हर जगह जरूरी होती है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है जानते हैं? ये नहीं कि बुक्स बची, ये नहीं कि लाइब्रेरी बनी। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, जिन लोगों को सोसाइटी इग्नोर करती है, वो लोग नॉलेज के रक्षक बन गए।
हम क्या करते हैं? पुरानी बुक्स फेंक दो, पुराने कपड़े फेंक दो, पुराने रिश्ते छोड़ दो। पर मुस्तफा, वो कहता है देखो तो सही इसमें क्या बचा है। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो चीजों की कीमत देखते हैं और दूसरे जो चीजों की कहानियां देखते हैं। और जो कहानी देख लेता है वो कभी किसी चीज को कचरा नहीं कहता। आपने लास्ट टाइम क्या फेंका था? कोई किताब, कोई सपना या कोई रिश्ता? और अगर आज मुस्तफा होता तो शायद वो कहता इसे मत फेंको, इसमें भी कहानी बाकी है। मैं हूं आपकी दोस्त, और अगली कहानी तक याद रखिए, कभी कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज कचरे से ही मिलती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: लोग एडवाइस फ्री में देते हैं, पर गलतियां हम खुद करके सीखते हैं। मतलब गाइडेंस अनलिमिटेड है, पर समझ थोड़ी लिमिटेड। फ्री एडवाइस और पेड मिस्टेक्स।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: मैं आपका दोस्त आलू कुलश्रेष्ठ आज एक नया प्रोग्राम लेकर आपसे मुखातिब हूँ। प्रोग्राम का नाम है आलोक के साथ रूबरू। इस प्रोग्राम में हम हमारे समाज के उन लोगों से बातचीत करेंगे जिनके पास भले ही अकूत धन संपदा ना हो, लेकिन जिन्होंने अपना जीवन अपनी शर्तों पर जिया, जिन लोगों के पास भले ही सेलिब्रिटी का स्टेटस ना हो, लेकिन अपनी सोच से समाज के लिए कुछ नया करने की कोशिश की है। इन लोगों ने भीड़ के साथ चलने की बजाय अपना रास्ता अलग से बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, आज जिन मेहमान से हम रूबरू होने वाले हैं उनको बुलाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हमारा देश जहां एक ओर विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, वही दूसरी ओर आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में हमारे समाज का ताना बाना कुछ कुछ उलझ सा गया है। इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है परिवार के सदस्यों के आपसी रिश्तों पर। जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस बदलाव से सबसे अधिक कौन प्रभावित हो रहा है? जी हाँ, हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य या हमारे बुजुर्ग। उनकी देखभाल करने के लिए आज परिवार के किसी सदस्य के पास समय नहीं है। हम सब जानते हैं बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के चलते लॉन्गेविटी बढ़ रही है, यानी कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनके साथ बात करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए परिवार में किसी के पास समय नहीं है। अधिकतर संतानें या तो विदेश में सेटल हैं या महानगरों में अपना कैरियर बनाने में व्यस्त हैं। दोस्तों, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सरकार के पास हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है उन्होंने इस समस्या को हल करने का बीड़ा उठाया है। मेरे साथ हैं डॉक्टर पी सी जैन, जो कि टाइम बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर चेयरमैन हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यह एक बैंक के चेयरमैन हैं, लेकिन उस बैंक में पैसा या रुपए जमा नहीं होते, बल्कि समय या टाइम जमा होता है। है ना कुछ दिलचस्प, कुछ नया और यूनिक सा? डॉक्टर जैन नमस्कार, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आलोक जी, नमस्कार।
0: चलिए जैन साहब, आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि टाइम बैंक है क्या और ऐसा क्या हुआ या वो कौन सा ट्रिगर था जिसने आपको इस कार्य करने की प्रेरणा दी?
1: आलोक जी, आपने ब्लड बैंक का नाम सुना होगा, आपने आई बैंक का नाम सुना होगा, तो बैंक से हमारे मस्तिष्क में ये आता है कि ऐसी कोई भी संस्था जहां हम कुछ जमा करते हैं। ब्लड बैंक में रक्त जमा होता है, आई बैंक में कॉर्निया जमा होता है, और जो फाइनेंशियल बैंक है उसमें धन जमा होता है
0: जी।
1: तो इसी प्रकार से ये एक बैंक है जिसमें ना तो धन जमा होता है, ना रक्त जमा होता है, ना कॉर्निया जमा होता है। इसमें वो चीज जमा होती है जिसके लिए हम कहते हैं कि उसे पकड़ के नहीं रखा जा सकता, अर्थात समय जो बहता चला जाता है उसे हमने थामने की कोशिश की है, तो हम इसमें समय को जमा करते हैं।
0: बहुत अच्छा, और क्या हुआ ऐसा जिसने आपको ये प्रेरणा दी?
1: आपने देखा होगा कि आज सबसे ज्यादा कमी है तो समय की है, बावजूद इसके कि सबके पास पर्याप्त समय है। समय की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी समय नहीं है।
0: जी जी जी।
1: आप किसी को फोन कर लें तो वो छूटते पूछता है कि बताइए क्या काम है। अर्थात सामान्य अगर हम बात करना चाहें, मित्र से बात करना चाहें कि चलो यार थोड़ा मन हल्का करते हैं, दो घड़ी बात करते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि किसी काम से फोन किया होगा। और ये स्थिति आपने देखी होगी कि कोरोना जब आया था, कोविड-19 आया था, आइसोलेशन में लोग थे जिनको कोरोना हुआ, शुरुआत का जो दौर था बड़ा डरावना था। उस समय डॉक्टर भी पूरा पीपीई किट पहन के आते थे और अलग से उनको रखा जाता था, किसी दुनिया से संपर्क नहीं रहता था, यहाँ तक कि मोबाइल भी उनके हाथ में नहीं दिए जाते थे, बाद में तो मोबाइल भी देने लग गए। लेकिन वो जो पीरियड उनका रिकवरी का पीरियड था, उसमें चूंकि वो पूरे संसार से कटे हुए थे तो इतने त्रस्त थे, इतना भयावह स्थिति थी उनकी कि कोई मिले बात करने को। और आपने देखा होगा कि जैसे कोविड खत्म हुआ तो मेल मिलाप का दौर चल पड़ा, यानी कि बेसिकली मनुष्य मनुष्य को चाहता है। हम एक सामाजिक प्राणी है, हम अपने संग साथ के बगैर नहीं रह सकते। उनके साथ में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जो अब समाज में मूवमेंट नहीं कर सकते, जिनका आना जाना बंद हो गया। हम आप जो अभी इस स्थिति में है, शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक है, हम इतने वृद्ध भी नहीं हुए कि हम अकेले नहीं जा सके, तो हम कहीं भी फंक्शन होता है, समाज में कोई एक्टिविटी होती है, दोस्तों के यहाँ जाना है, हम चले जाते हैं। लेकिन उन बुजुर्गों का क्या, जो आज ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वे घर से अकेले निकल नहीं पाते। अब वो हमेशा इस बात का प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कोई दो घड़ी उनके पास में आए, बैठे, बतियाए, उनका मन लगे इस बहाने, लेकिन किसी के पास इस चीज के लिए समय नहीं है। तो ये ऐसा पॉइंट था जिसने ये मुझे सोचने को मजबूर किया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। मेरी माता जी भी जो उस समय लगभग 92 ईयर्स की थी, 92 साल की थी, और शारीरिक रूप से इतनी समर्थ नहीं थे कि वो अकेले कहीं जा आ सके, तो उन्हें हमेशा ये रहता था कि कहीं जाना है तो बेटा तू घुमाला, चल कार में बिठा के एक चक्कर ही लगाया बाजार का, फलानी मेरी सहेली से मिला ला। या उन्होंने अपना कुछ ग्रुप बना लिया था, जो महिलाएं आती थी वो सत्संग करती थी, भजन कीर्तन करती थी।

0: लेकिन आप सोच के देखिए, ये स्थिति समाज की हमारी धीरे धीरे ऐसी होती जा रही है कि अकेलापन बढ़ता चला जा रहा है। महानगरों में बड़ी समस्या है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आपको फर्स्ट डोर नेबर के बारे में नहीं पता होता। जहां
1: जी
0: पहले हम
1: बिल्कुल
0: कभी
1: सर।
0: भी ऐसे ही घंटी बजा के चले जाते थे बिना अपॉइंटमेंट।

0: कि आज फोन करके अपॉइंटमेंट लिए बगैर अपने घनिष्ठ मित्र के पास भी जाने में संकोच होता है। और ऐसा एक समाचार एक आया, जो हमारी विश्व की नई यूनिवर्सिटी है जिसे हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिसमें दुनिया भर का ज्ञान होता है, तो सामान्यतः इसमें इतने मैसेजेस होते हैं कि हमें डिलीट ही करने पड़ते हैं, पर कभी कभी कोई ऐसे मैसेज होते हैं या ईश्वरीय कोई कृपा होती है कि आपका ध्यान वहां अटक जाता है। ऐसा ही एक संदेश टाइम बैंक के बारे में आया था, स्विट्जरलैंड की एक स्टोरी किसी बच्चे ने साझा की थी कि वहां पे ऐसे समय बैंक चलता है और मेरी लैंड लेडी थी, वो जाती थी समय जमा करती थी, फिर वो एक दिन गिर गई, अकेली थी तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उसकी हड्डी वड्डी टूट गई, तो उसने कहा कि यार कौन संभालेगा, तो उस लैंड लेडी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैंने अपने समय बैंक में समय जमा कर रखा है और अब वो लोग आएंगे और मुझे समय देंगे। तो मैं जो दिन में जाती थी तो मैं किसी काम पे नहीं जाती थी बल्कि किसी बुजुर्ग की सेवा करने जाती थी और उसकी सेवा के बदले में मैं समय जमा कर रही थी। इसने मुझे सोचने को मजबूर किया कि क्या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई संदेश है या वास्तव में ऐसा कुछ है भी। मैंने नेट पे सर्च करना शुरू किया, देखा तो ये वाकई स्विट्जरलैंड में सरकार की ओर से ये योजना चलती है और बकायदा वहां जमा खर्च होता है समय का। और फिर मैंने और सर्च किया तो मैंने देखा कि और भी कई देशों में वेस्टर्न कंट्रीज में ये टाइम बैंक की अवधारणा प्रचलित है, कहीं पे ये एनजीओ के माध्यम से चल रही है, कहीं सरकार के माध्यम से चल रही है। फिर यहाँ भारत में मैंने इसको ढूंढने का प्रयास किया तो मुझे भारत में कहीं पे भी टाइम बैंक नहीं मिला। अब आप तो जानते हैं आलोक जी, बैंक से रिटायर हुए हैं, ऐसा कोई समाज सेवा का कोई अनुभव नहीं था कि संस्था कैसे बनती है कैसे चलाई जाती है। तो मन में विचित्र सी स्थिति थी कि यदि हम इसे शुरू करेंगे तो इसमें क्या क्या कठिनाई आएगी, क्या परेशानी आएगी, तो इस पे क्या करें। एक ये भी दिमाग में होता था कि एनजीओ के का मतलब एक दिमाग में प्रश्न पहुंचता है कि एनजीओ बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं उसके लिए, फिर वो पैसा लेते हैं, धंधा लेते हैं, उगाते हैं, मेंबरशिप फीस रहती है, फिर उसका क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं पता नहीं, कई बार संस्थाओं में इसी बात को लेके झगड़े होते हैं, फंड को लेके झगड़े होते हैं। तो एक ये मन में था कि संस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें पैसे का कोई लेन देन ना हो,
1: चलिए चलिए
0: ऐसा करें अच्छा। कि जिसमें मतलब मिनिमम पैसे से काम हमारा चल सके, लेकिन तो आगे कैसे बढ़े। हाँ आप कुछ कह रहे हैं।
1: तब इसका मतलब है कि यहाँ पैसे की बजाय टाइम जमा होता है और जो अपना टाइम देता है वो उसके खाते में क्रेडिट हो जाता है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्रेडिट हो जाता है। तो इसको शुरू करने के लिए मैंने सोचा कि कुछ बुजुर्गों से बात की जाए। मुझे ध्यान है कि एक बार एक केंद्रीय विद्यालय के पेंशनर्स का कोई सम्मेलन हो रहा था, अखबार में खबर आई कि आज फलानी जगह ये सम्मेलन होगा, तो मैंने कहा कि यार चलते हैं यहाँ बात करके देखते हैं। मैं किसी को जानता नहीं लेकिन वहां चला गया, उनको जाके मैंने आयोजकों को कहा चलती मीटिंग में कि साहब ऐसा ऐसा एक कंसेप्ट है कि बुजुर्गों की देखभाल करनी हो तो समय दे के हम आपस में एक दूसरे की देखभाल करें, इस बारे में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं अगर अनुमति दे तो। मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि कहीं पे भी आप जानते हैं कि कोई सभा चल रही होती है तो उनका पूरा शेड्यूल होता है और किसी भी अनजान व्यक्ति को बोलने की अनुमति होती नहीं क्योंकि उनका सारा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। लेकिन उन्होंने मुझे सहर्ष अनुमति दे दी कि बोले आप ठीक है अपनी 5 मिनट में अपनी बात आप रख सकते हैं, 5 मिनट का हम समय देते हैं। तो मैंने 5 मिनट में अपनी बात वहां पे कही और कह के मैंने कहा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इससे जुड़ना चाहते हैं या इस बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर लें, मैं अपना मोबाइल नंबर आपके आयोजकों के पास छोड़ता हूँ क्योंकि मेरा 5 मिनट का टाइम हो गया था।
1: ठीक।
0: तो मैं मन से मैंने उनको कहा कि सर आपके पास मेरा नंबर है, अगर किसी को जरूरत हो तो आप दे दीजिए। मीटिंग में बैठे हुए कुछ लोगों ने वहीं से आवाज लगाई कि साहब आप तो बोल दो यहीं से बोल दो हम नोट कर लेंगे। तो मैंने कहा देखिए मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं इसका अतिक्रमण नहीं करना चाहता तो आप यहाँ से ले लें। तो वो आयोजक ही खुद बोले कि साहब कोई बात नहीं आप तो बोलो और ये नंबर नोट कर लेंगे।
1: ठीक।
0: और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बच्चों की तरह उन्होंने अपने मोबाइल में या नोट पैड पे मेरे नंबर नोट करने शुरू कर दिए।
1: अच्छा।
0: और जहां अटक रहे थे वहां रिपीट करने शुरू कर दिए।
1: अच्छा अच्छा।
0: इसके बाद में मैं और कई लोगों से मिला, प्रबुद्ध लोगों से मिला, मैंने चर्चाएं की कि भाई ये एक ऐसा अवधारणा मुझे शुरू करनी है तो आप बताइए इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो लोगों ने सुन के पूरा पूरा मैंने कंसेप्ट समझाया, उसके बाद पहला ही सवाल लोगों के दिमाग में आया कि साहब सीनियर सिटीजन एक सॉफ्ट टारगेट है, इनके साथ में कुछ हो गया, आपने कहा कि वो उनके घर जाएंगे, उनका अकेलापन दूर करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, बतियाएंगे, उनको लेके जाएंगे, है ना, हॉस्पिटलाइजेशन है तो वहां पे देखभाल करेंगे, लेकिन अगर घर पे जाते हैं तो अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा उसका? अब इसका जवाब मुझे आसानी से मिल नहीं रहा था, क्योंकि अगर तो सही बात है सरकार के स्तर पे कुछ हो रहा है तो सरकार देखेगी, एनजीओ के स्तर पे कुछ हो रहा है तो बड़ी मुश्किल होगी जी।

0: तो ये अपन आगे चर्चा जारी रखते हैं। थोड़ा मेरे को इसकी ये बात बताइए कि अभी टाइमिंग क्या आपका एक दो शहरों तक ही सीमित है या कई शहरों में इसकी उपस्थिति है?
1: आलोक जी, अब तो ये बहुत शहरों में हो गया है, काफी विस्तार ले चुका है। लगभग यूं कहें कि देश के जो हमारे बड़े बड़े शहर होते हैं, प्रमुख शहर होते हैं, सब
0: हाँ
1: जगह इसकी उपस्थिति इसकी दर्ज हो चुकी है और
0: हाँ तो
1: अच्छा
0: अभी
1: चल रहा है।
0: कितने मेंबर्स हैं इसके अभी फिलहाल? अच्छा
1: फिलहाल हमारे इसमें तकरीबन 9,000 मेंबर हैं, हाँ,
0: अच्छा अच्छा
1: देश भर की
0: और
1: शाखाओं में,
0: कई कई स्टेट्स में हैं।
1: कई स्टेट्स में है।
0: अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि बैंक के सदस्य किस प्रकार की सहायता दूसरे सदस्यों को देते हैं, जैसे किन किन मेडिकल कंडीशंस में उनकी मदद करते हैं?
1: इसमें सबसे पहला तो हमारा ये है कि जो घर पर अकेले हैं, जिनके पास में कोई बैठता नहीं है, उनके पास आप बैठे हैं ताकि उनका एक तरह से देखभाल भी हो सके और उनका मन भी लगा रह सके। मैं आपको शेयर करूं कि एक एशियन पेंट्स का एक सीरीज आई थी, हर घर कुछ कहता है, उसमें
0: अच्छा
1: उन्होंने धर्मेंद्र का इंटरव्यू लिया था और
0: अच्छा
1: कई एपिसोड में था उसका ये इंटरव्यू, जिसमें उसके पूरे
0: जी
1: जीवन के बारे में उन्होंने चर्चा की थी।
0: जी
1: उसमें से
0: जी
1: एक क्लिपिंग मुझे मिली, जिस क्लिपिंग में वो पूछते हैं कि जब आप बॉम्बे आए थे और आपके परिवार भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे तो आपको कैसा महसूस होता था, तो
0: हाँ
1: बोले कि वो मैंने बाऊजी और माता जी को पता नहीं क्या कहते थे, तो वो लोग
0: हाँ
1: वहां पे आ गए और ये बड़े प्रसिद्ध हो गए थे। पैसा था, कोठी थी, नौकर चाकर बंगला सब कुछ था। तो वो तो शूटिंग से लौटते थे, कई बार कई कई दिन होते थे, महीनों लग जाते थे, घर आते थे, माता जी के पास बैठते थे, उससे पूछते थे कि आपको कोई दिक्कत है, कुछ काम है, वो ऐसे ही बैठी रहती थी उदासी सी। बोले नहीं बेटा, सब कुछ तो है, क्या कमी है, तेरे तो सब कुछ कर रखा है ना, किसी तरह की दिक्कत तो है नहीं, तो कोई बात नहीं। फिर वो बाबूजी के पास जाते थे तो वो ऐसे हाथ से एक्टिंग करके कह रहे थे कि वो ठुड्डी पे हाथ रख के बाबूजी बैठे होते थे। मैं पूछता था कि बाबूजी क्या चाहिए, बोले बेटा कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो तूने दे रखा है, गाड़ी है, नौकर चाकर बंगला है। बड़े मायूस से होके कहते हैं कि लेकिन बेटा तू थोड़ा जल्दी आ जाया कर। उनका अभिप्राय है कि मतलब बेटा उनके पास में बैठे थोड़ी देर के लिए, इतने नौकर चाकर की भीड़ में भी वो अकेले हैं,
0: सबसे बड़ी समस्या अकेलेपन की है
1: अकेलेपन की समस्या।
0: आजकल।
1: तो पहला काम तो हमारा यही है कि उनका अकेलापन दूर हो, जिनके पास में कोई आने जाने वाला नहीं है। दूसरा काम हमारा होता है कि ऐसे बुजुर्ग जो सक्षम नहीं है, उन्हें छोटे छोटे काम के लिए लोगों का मोहताज होना पड़ता है। चश्मे की डंडी टूट गई है, अब कोई मिलेगा तो वो जाके बनवा के ला पाएंगे, अन्यथा वो बैठे हुए हैं ऐसे। उनको
0: जी।
1: डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, फिजियोथेरेपी के लिए जाना है, यहाँ तक कि मंदिर जाना है या सुबह घूमने जाना है ना। आपने
0: हाँ
1: देखा होगा जो काफी बुजुर्ग होते हैं, उनका पोता या कोई सर्वेंट या कोई उनका बेटा वो हाथ पकड़ के
0: हाँ
1: साथ साथ लेके आता है, पैदल चल रहे हैं लेकिन वो अकेले नहीं जा पाते, उनको डर लगता है गिरने का, कुछ हो जाने का, तो
0: जी
1: साथ जाते हैं। तो ऐसे में उनको
0: हाँ
1: साथ ले जाना ले
0: चाहिए
1: आना, उनके
0: चाहिए
1: काम करा के घर छोड़ दे। और
0: जी
1: तीसरा काम है हमारा कि जब अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं
0: हाँ
1: तो वहां पे अटेंडेंट के तौर पे आपको रुकती नहीं मिलता।
0: जी,
1: आपने
0: आपने ये
1: देखा
0: बात
1: होगा,
0: बहुत
1: हम और आप सब इससे गुजरे हैं कि हमारे
0: जी
1: कोई मित्र अस्पताल में भर्ती हो गए तो हम देखते थे कि विजिटिंग आवर्स क्या है, उस समय जाते
0: हाँ
1: हैं 5-7 मिनट बैठते हैं और वापस आ जाते
0: हाँ
1: हैं,
0: फॉर्मेलिटीज ही
1: लेकिन
0: निभाते हैं
1: फॉर्मेलिटी से
0: एक।
1: निभाते हैं। वो भी इसलिए कि वो ठीक होने के बाद ये नहीं कहे यार तू तो देखने भी नहीं आया
0: बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही बात
1: ना और कई बार तो हम अनजाने में उसका नुकसान और कर आते हैं। वो
0: जी
1: ऐसे कि वहां बैठते हैं, हम सबके सब तो डॉक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े है ना, तो अच्छा
0: सब
1: अरे तू यहाँ कहाँ यार, हॉस्पिटल में आ गया, ये हॉस्पिटल तो बड़ा बदनाम है ना, लूटता है, तेरे को उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अच्छा
0: बिल्कुल
1: किस
0: सही
1: डॉक्टर से
0: बात
1: इलाज चल रहा है, इस डॉक्टर से, अरे यार ये
0: अच्छा
1: डॉक्टर अच्छा नहीं है, इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, वो
0: दूसरे
1: फलाना
0: जगह
1: डॉक्टर
0: हाँ
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: कोई
0: बिल्कुल
1: कहेगा
0: सही
1: हल्दी में मिला के ये खा लेना, कोई कहेगा फिटकरी के गरारे कर लेना, तो वो
0: हाँ
1: बेचारा जो
0: बिल्कुल
1: उसका विश्वास है उस डॉक्टर पे और हॉस्पिटल पे, उसको शेक करके और आ जाता है।
0: बिल्कुल सही बात
1: लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि यार मेरे पास यहाँ पे कोई है नहीं, तुम क्या दिन भर छुट्टी लेके मेरे पास में या हॉस्पिटल में रुक सकते हो, तो वो
0: हाँ
1: दाएं बाएं हो जाएंगे
0: दाएं
1: यार,
0: बाएं
1: आज
0: बाएं
1: तो मेरे ये काम है, आज तो नहीं, मैं कल कल देखता हूँ, है ना, वो कल होके आगे होके वो
0: बिल्कुल
1: पूछेंगे भी नहीं कल कि भाई वो तेरी जरूरत थी मैं आऊं या नहीं आऊं। तो
0: बिल्कुल सही बात
1: बहुत घनिष्ठ हमारे मित्र हैं, जिनको हम लंगोटिया यार कहते हैं, जो ये तकलीफ उठा के भी अपना काम धंधा छोड़ के हमारे पास आ सकते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमने परिवार के सदस्य हैं, केवल वही लोग
0: आते हैं
1: आपके पास आ सकते हैं, यहाँ टाइम खर्च करके आपके पास रुक सकते हैं, बाकी किसी के पास टाइम नहीं। तो टाइम बैंक वहां पे उनकी देखभाल
0: तो
1: आराम से करता है।

0: डालोगे?
1: अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी सदस्य को मदद चाहिए तो वो किस प्रकार से रिक्वेस्ट करे, क्या कोई चार्जेस देने पड़ते हैं?
2: नहीं नहीं, इसमें चार्जेस तो मैंने बताया कि हमने कुछ रखा ही नहीं, पैसे का तो कहीं कोई लेन देन है ही नहीं, ना इसकी सदस्यता के लिए कोई शुल्क है और ना ही उसको किसी सेवा के बदले में कोई पैसा देना है।
1: ओके,
2: और ना संस्था सेवा देने वाले को कोई पैसा देती है।
1: अच्छा, तो जो
2: सदस्यता के
1: जो सदस्य बनने के लिए भी कोई चार्जेस नहीं है?
2: ना ना, कोई चार्जेस नहीं, फ्री है मेंबरशिप।
1: ओके ओके, कोई एलिजिबिलिटी अगर मेंबरशिप लेने की क्या है, क्या जिसको पात्रता कहते हैं अपन?
2: हाँ, पात्रता जरूर है। पात्रता ये है कि हम एक टी कंसेप्ट कहते हैं कि चाय पीनी हो तो आप टाइम बैंक के सदस्य बन जाइए। और टी टी का टी ई ए का टी स्टैंड फॉर टाइम।
1: ओके,
2: अगर आपके पास टाइम है देने के लिए या लेने के लिए, आपको समय चाहिए दूसरों से या आप किसी को समय दे सकते हैं, तो आप सदस्य बनिए। दूसरा है ई, ई फॉर एनरोलमेंट, अगर आपके पास टाइम है तो आप एनरोल कीजिए, सदस्य बनिए। और तीसरा है ए, ए मीन्स एटीट्यूड, आप में सेवा का जज्बा है, अगर ये तीन चीजें हैं तो आप सदस्य बन जाइए। सेवा का जज्बा होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, एनरोल करना है, आपको देने के लिए या लेने के लिए समय होना चाहिए। बस इतना सा है कि चूंकि किसी भी संस्था में जुड़ने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं, उसको एक्सेप्ट करना होता है टर्म्स एंड कंडीशन को, तो एक तरह से ये एग्रीमेंट जैसी चीज है। तो हमने ये रखा कि 18 साल से कम की उम्र के बच्चे इसमें सदस्य नहीं होंगे। 18 साल से ऊपर का किसी भी उम्र का हो, हमारे यहाँ पे 98-99 के भी सदस्य रहेंगे।
1: अच्छा, तो इसका मतलब है सीनियर सिटीजन्स के अलावा जो यंग लोग जिनमें जज्बा है वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं?
2: हाँ, बिल्कुल, कोई भी बन सकता है, किसी भी सर्विस क्लास का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, प्रोफेशन का हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो, IAS हो, प्लंबर हो, मैकेनिक हो, रिक्शा चलाने वाला हो, कोई भी हो सकता है। हमारे ट्रक ड्राइवर भी मेंबर बने हुए हैं।
1: अच्छा अच्छा, अभी हाल ही में 1 अक्टूबर को देश में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया गया। आपके अधिकांश मेंबर्स वरिष्ठ नागरिक हैं, इनकी सहायता करते समय इनकी सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित करते हैं?
2: हाँ, ये आपने बहुत उचित सवाल पूछा, क्योंकि यही सबसे ज्वलंत समस्या है। जब भी कभी हम कहीं जाते हैं तो यही बात सामने आती है, जो खासतौर पर सरकारी अधिकारी होते हैं तो वो भी पूछते हैं। तो हमने इसकी सुरक्षा के लिए कई सारे लेयर्स लगाए, जैसे जैसे हमें समझ आती गई बातचीत करते हुए, लोगों ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा
1: जी।
2: तो हमने ये देखा कि जब कभी भी हमें मदद की जरूरत होती है, मान लीजिए कि आप ही को हॉस्पिटल जाना है और कोई ले जाने वाला नहीं है, आप अकेले नहीं जा सकते, आपको कोई साथी चाहिए, ठीक है ना? तो पहले आप अपने बच्चों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को ढूंढेंगे, ठीक है ना, जो पास में हो आपके
1: जी।
2: और अगर वो नहीं होंगे तो आप अपने पड़ोसी को कहेंगे, अपने किसी मित्र को कहेंगे, है ना? तो जाने अनजाने हम जिसको भी ढूंढते हैं, जिसको भी मदद के लिए पुकारते हैं, उसमें हम तीन क्वालिटी देखते हैं
1: जी।
2: पहली क्वालिटी देखते हैं कि वो हमारा जानकार हो, विश्वसनीय हो
1: जी।
2: दूसरी क्वालिटी देखते हैं कि वो हमारे पास में हो, नजदीक हो, बहुत दूर नहीं हो, क्योंकि बहुत दूर होगा तो वो हमारे लिए इतना काम का नहीं होता। तीसरी चीज हम देखते हैं कि वो उपलब्ध भी हो, ठीक है ना? उपलब्ध से मेरा मतलब है कि जैसे आप आपके पड़ोस में ही कोई रहता है और आपका मित्र भी है, आपका विश्वसनीय है, सब कुछ है, लेकिन वो उस दिन शहर से बाहर गया हुआ, तो वो उपलब्ध नहीं है,
1: नेचुरली,
2: है ना? पहली दो क्वालिटी पूरी होने पे भी तीसरी क्वालिटी उस पैरामीटर में खरा नहीं उतरता। तो ये तीन चीजें हैं जिसके ऊपर हमने काम किया। अब इसमें जो आपने सुरक्षा की बात की, उसमें हमने कई सारे लेयर्स लगाए।
1: अच्छा,
2: पहला लेयर तो ये है कि जो रजिस्टर करेगा, ऑनलाइन मेंबरशिप है, वेबसाइट पे जाके कोई भी मेंबर बन सकता है, timebankofindia.com हमारी वेबसाइट है। तो जब वो रजिस्टर करता है तो उसमें जो डाटा है वो किसी को भी उपलब्ध नहीं होता है, कोई मेंबर हो या नॉन मेंबर हो, कोई भी ये नहीं देख सकता कि इसमें कौन कौन मेंबर हैं,

0: उनके नाम पते क्या है, उनके मोबाइल नंबर क्या है, उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट का क्या हाल है, किसी को कुछ नहीं पता होता। सिर्फ अपनी डिटेल देख सकता है और किसी की नहीं देख सकता। पहली लेयर हमने ये लगाई। दूसरी लेयर लगाई हमने केवाईसी की, कि जो मेंबर बनेगा वो अपनी फोटो भी डालेगा, अपनी केवाईसी का डॉक्यूमेंट भी डालेगा, अपनी डिटेल भी पूरी भरेगा, एड्रेस भी पूरा भरेगा, सारी चीजें कंप्लीट करते हैं उसमें। और रजिस्ट्रेशन भी ओटीपी के माध्यम से हम करते हैं, ताकि कोई फेक नंबर से कोई रजिस्ट्रेशन ना करे।
1: ठीक है।
0: इसके बाद अगली हमने रखी है जो लेयर, कि जो मेंबर ऑनलाइन रजिस्टर करता है वो बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव होता है।
1: ओके।
0: उसे अप्रूव करते हैं तो फिर वो एक्टिव मेंबर कन्वर्ट होता है।
1: जी,
0: तो हमारे यहाँ एक्टिव इनएक्टिव की कैटेगरी है, तो बाय डिफॉल्ट जो भी रजिस्टर होगा वो पेंडिंग फॉर अप्रूवल की कैटेगरी में जाता है। और हमारा जो यूनिट्स है, जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है, पोस्टल पिन कोड या और भी छोटी यूनिट्स होती है, उनके संचालन के लिए एडमिन होते हैं, जो वॉलंटियर्स में से ही हमारे मेंबर्स में से ही कोई होते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसका वेरिफिकेशन करे। वो उसके घर जाकर, उससे वीडियो कॉल करके, उससे फोन करके, मीटिंग के दौरान उसकी संतुष्टि होनी चाहिए कि जिनायन व्यक्ति है, तो वो उसे अप्रूव करता है।
1: जी।
0: तो जो हमारा अप्रूव सदस्य है, सेवा लेने में या देने में वही भाग ले सकता है। ना तो अनअप्रूव मेंबर सेवा लेने के लिए अनुरोध कर सकता है, ना सेवा पूरी करने के लिए वो उसको एलिजिबिलिटी होती है।
1: ठीक।
0: तो अप्रूव होना जरूरी है। यहां तक हमने सब कर लिया। फिर किसी ने कहा कि साहब आप आई कार्ड और इश्यू कर दो इनको। तो हमने कहा कि भाई आई कार्ड इश्यू तो कर दें, लेकिन हम मुझे आप बताइए कि जिस देश में पैन कार्ड और पासपोर्ट और आधार डुप्लीकेट बन जाते हैं, तो आई कार्ड का क्या होगा। तो बात यह है कि विश्वसनीयता या मित्रता बनती तब है जब हम लगातार मिलते जुलते हैं,
1: मिलते रहते हैं।
0: हालांकि मैं बैंक में नौकरी करता रहा हूँ, है ना, जहाँ ट्रांसफरेबल जॉब है, नए शहर में जाते हैं, ना तो स्टाफ जानकार होता था, ना कोई और पड़ोसी जानकार होता था।
1: जी।
0: तो वहां हम अपने स्टाफ में तो चलो ज्वाइन करते थे, तो जान जाते थे कि भाई ये मैनेजर साहब आए हैं, ठीक है। फिर हम उनके माध्यम से या ब्रोकर्स के माध्यम से मकान लेते हैं, जिस मोहल्ले में मकान लेते हैं जानते हैं आपके वहां पे, फिर हमें कोई भी जानकार नहीं होता, लोग दरवाजे से झांक के देखते हैं कि कोई नया मुर्गा इस मोहल्ले में आया है है ना, कि कौन आया है, थोड़ा सा वो देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है। छोटा शहर होता है तो अड़ोस पड़ोस वाले आ जाते हैं कि साहब आप नए आए हो क्या, आपको कुछ चीज चाहिए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, लेकिन बड़े शहरों में कोई नहीं पूछता।

0: चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपकी संस्था ने इतने समय में इतनी प्रगति कर ली है, क्या सरकार से आपको कोई सपोर्ट या सहायता मिलती है?
1: सरकार से सपोर्ट और सहायता की बात करते हैं आप, ऐसे अगर ये कोई हम कहें कि कोई कोलैबोरेशन हुआ है तो वो यहाँ तो राजस्थान में नहीं हुआ, आंध्र प्रदेश सरकार से जरूर हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि हमारा इसमें हमने ये शुरू से ध्येय रखा है कि पैसे का लेन देन इसमें नहीं होगा, इसलिए हमारी संस्था टेक्नोलॉजी पे काम करती है, वेबसाइट के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से काम करती है। पूरे देश में हमारे कोई ऑफिस नहीं है और कोई कर्मचारी नहीं है, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगभग जीरो सी है। तो सरकार के पास भी हम जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए। अब यहाँ हम राजस्थान सरकार के पास जब जब गए तो उनके साथ में यही एक समस्या थी कि उन्हें ये बात समझ में नहीं आती थी कि इनकी मदद कैसे करें, क्योंकि जो संस्था उनके पास जाती है वो या तो अनुदान मांगते हैं, है ना,
0: या जमीन
1: या जमीन, जमीन मांगती है, इसके अलावा उनके पास में और कुछ है नहीं। और वो कहते हैं साहब आप बताइए आपको जमीन चाहिए या कुछ और चाहिए तो हमें बताएं। हमें ना तो जमीन चाहिए ना आपका पैसा चाहिए
0: जी,
1: हमें तो आपसे प्रचार में मदद चाहिए, क्योंकि हमारे पास में प्रचार के लिए पैसा नहीं, हम पैसा इकट्ठा करते ही नहीं है, तो हमारे पास में प्रचार करने के लिए एडवर्टाइज करने के लिए खर्चा नहीं है, तो आप वो कर दीजिए। अब वो उनके बात समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमने एक तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है,
0: अच्छा पुलिस डिपार्टमेंट,
1: पुलिस डिपार्टमेंट है तो हर पुलिस के थानों में अलग अलग बीट बनी हुई होती है। बीट का मतलब होता है कि एक थाने में ऐसा एक क्षेत्र जिसका एक प्रभारी एक पुलिस कांस्टेबल होता है, उस एरिया की जो भी क्रिमिनल गतिविधियां होती है उसकी सूचना देना, सुराग देना, इंफॉर्मेशन रखना, वो उस बीट कांस्टेबल का काम होता है
0: जी।
1: और यहाँ राजस्थान में उनकी ड्यूटी में एक ड्यूटी ये भी शामिल है कि उस बीट के जो बुजुर्ग हैं, अकेले बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान रखें, उनसे बीच बीच में जाके मिले, उनका हालचाल पूछे, ये उनकी ऑफिशियल ड्यूटी में है।
0: ऑफिशियल ठीक है।
1: हाँ, हमें किसी ने बताया तो हमने देखा कि भाई ये तो कभी तो देखा नहीं हमने किसी बुजुर्ग के पास इनको बीट कांस्टेबल को आते आते, तो हम पुलिस डिपार्टमेंट के पास गए, उनसे हमने कहा कि साहब ऐसा ऐसा है, आपकी जो बीट कांस्टेबल है उनके पास ऐसी ड्यूटी होती है, लेकिन चूंकि आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करनी है, ये आपकी सेकेंडरी ड्यूटी है, तो वो इतना कर नहीं पाते, हमें इतना कर दीजिए कि ऐसे बुजुर्गों को बीट कांस्टेबल के माध्यम से हमारे साथ जोड़ दीजिए, देखभाल का काम हम कर लेंगे।
0: ओके।
1: तो उन्हें हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने लिखित में सारे थानों को ये आदेश जारी किया कि वे अपने बीट कांस्टेबल्स को टाइम बैंक के साथ में कनेक्ट करें। तो एक तो ये सरकार के साथ हमारा कनेक्ट है ना, क्योंकि पुलिस भी डिपार्टमेंट आसानी से ऐसे पत्र देती नहीं,
0: ठीक है, सही,
1: विश्वसनीयता देख के ही उन्होंने ऐसा पत्र जारी किया।
0: जी जी जी जी।
1: दूसरा जो है, जब हम यहाँ एक जो समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय होता है जो इस तरह के समाज कल्याण से संबंधित कामों को देखता है, उनके पास गए, उन्हें हमने कहा ये, तो ये बात तो उनको समझ में आई नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कर दिया कि जो भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ सीनियर सिटीजन से संबंधित काम होते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, अपना जो देवस्थान विभाग है जहाँ वरिष्ठ नागरिकों के तीर्थ यात्रा योजना होती है, नगर निगम है ना, तो वहां पे ऐसी जरूरत पड़ती है, तो ऐसे सारे डिपार्टमेंट से उन्होंने एक चिट्ठी भेज दी कि साहब जो भी टाइम बैंक से संबंधित आवश्यकता हो आप इनकी यथासंभव मदद करें।
0: चलिए,
1: तो उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार का हमारे साथ में बड़ा अच्छा तालमेल हुआ।
0: नहीं, पुलिस से अगर ये मदद मिल जाए, कम से कम सरकार ने ऐसा सर्कुलर इश्यू तो किया है, यही बहुत बड़ी बात है।
1: हाँ हाँ हाँ।

0: है।
1: अच्छा ये बताइए कि ये आंध्र प्रदेश सरकार से आपके टाइम में का क्या जुड़ाव हुआ है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए मुझे।
2: उसमें क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश सरकार को स्वयं ये विचार आया कि अपने बुजुर्गों के लिए, क्योंकि साउथ में बुजुर्ग ज्यादा हैं नॉर्थ के कंपेरेटिवली, है ना, जहाँ पे भी, हाँ जहाँ पे भी अपने शैक्षणिक स्तर जहाँ अच्छा है वहाँ पे बर्थ कंट्रोल भी अच्छा है और वहाँ पे फिर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। तो आंध्र प्रदेश सरकार को ये विचार आया कि ऐसा कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि बुजुर्गों की देखभाल हो सके। तो उन्होंने अपने स्टाफ को लगाया इस काम के लिए, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम डायरेक्ट,
1: अच्छा
2: उनके थ्रू ये काम चला। उन्होंने अपने स्टाफ को लगाया कि पता करो साहब यहाँ पे ऐसा क्या हो सकता है। उन्होंने जब काफी रिसर्च की तो देखा कि एक टाइम बैंक ऑफ इंडिया देश में ऐसा काम कर रहा है और कोई संस्था उनको मिली नहीं। तो उन्होंने पूरी वेबसाइट हमारी अच्छे से छानी, देखी, समझने का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया, कुछ सवाल थे वो हमसे बात की, उन्होंने, हमने उनके जवाब दिए, उससे वो काफी संतुष्ट हुए। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और आईएएस लेवल पे एक मीटिंग हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मीटिंग हुई,
1: अच्छा,
2: जिसमें उनके बड़े उच्च स्तर के पदाधिकारी थे और हमारे यहाँ के टीम के भी लोग थे। हमने पूरा प्रेजेंटेशन बना रखा था कि हम कैसे सरकार के साथ काम कर सकते हैं। वहां पर भी हमारा ये था कि सर हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, हमें आपसे जमीन नहीं चाहिए, हमें आपसे जो जो चाहिए वो एक तो प्रचार में मदद चाहिए हमें खासतौर पर, और दूसरा हमें कि अगर हम यहाँ से कोई आते हैं वहां पे तो हमें एक प्रोटोकॉल की तरह मिल जाए कि भाई हमें कम से कम रहने का खर्चा तो नहीं हो, ट्रेवल का खर्चा हम कर लेंगे, रहने का और ट्रांसपोर्ट का खर्चा हमारा बच जाए, प्लस हमारी जो मीटिंग्स होती है उन मीटिंग्स के लिए आपके पास बहुत सारी जगह है, सेंटर्स होते हैं, वो हमें आप दे दीजिए, उसमें आपका कोई पैसा लगना नहीं है। तो इसके लिए तैयार हो गए, उन्होंने एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन भेज दिया वहां पर, बोले आप कैसे शुरू करेंगे। हमने कहा कि एक आप पायलट प्रोजेक्ट कर लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट का, उससे आपको भी तसल्ली होगी हमें भी तसल्ली होगी, एक साथ पूरे प्रदेश में लागू करने के बजाय हम ऐसे चले तो ज्यादा बेहतर है। उन्हें ये विचार अच्छा लगा और उन्होंने हमसे ही चुनने के लिए कहा। हमने विशाखापट्टनम को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना और 18 मार्च 2025 को सरकारी स्तर पर आयोजित समारोह में, जहां पे विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के सभी लगभग अधिकारी उपस्थित थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, कलेक्टर के हाथों से इसका उद्घाटन करके हम पायलट प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम में शुरू करके आ चुके हैं और वहां पे हमने अपने एडमिन मनोनीत कर दिया और वहां पे अब काम हमारा चल रहा है।
1: चलिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आपके कई राज्यों में उपस्थिति हो गई है टाइम बैंक की। आप मुझे ये बताइए कि श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टाइम बैंक ऑफ इंडिया अगर आप गूगल करेंगे तो आप इसकी वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे और इसके बारे में सारी जानकारी आपको टाइम बैंक के बारे में मिल जाएगी। और जैसे कि अभी अभी बीच में जैन साहब ने भी बताया था इसके बारे में,

0: चलिए, अब टाइम बैंक का ये सफर बहुत लंबा रहा है आपका। इस दौरान कोई ऐसी घटना हुई हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, जो आपसे हमसे शेयर करना चाहें, जिसे आप भूल नहीं पाते हो, ऐसी कोई बात हो तो बताइए।
1: हाँ, ऐसी बात है सर। बीच में कुछ अखबार में खबरें आई थी, कभी कभी अभी भी आ जाती है, कि
0: जी
1: बुजुर्ग दंपति घर में अकेले थे, नौकर आता था काम करके चला जाता था। चांस की बात है कि नौकर छुट्टी पे था
0: जी
1: और उस बुजुर्ग दंपति की डेथ हो गई, क्योंकि वो इतने बुजुर्ग थे कि घर से आना जाना संभव नहीं था।
0: जी
1: अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे नौकरी से रिटायर हुए थे, जिनके बच्चे भी अच्छे सेटल हैं, शहर से बाहर हैं, दूर हैं। और पड़ोसियों ने खबर करके ये पुलिस को बताया कि साहब इस घर से बदबू आ रही है, और
0: ओहो
1: तब जाकर ये पता लगा कि उनकी
0: हाँ
1: तो मृत्यु हो चुकी है। तो
0: ओहो
1: ये बड़ी पीड़ादायक, मुझे इसने बड़ा झकझोर दिया कि देखिए क्या स्थिति है आज हमारे समाज की, कि जहां पर हम इतने निष्ठुर हो गए हैं कि किसी को ऐसे उससे गुजरना पड़े और कोई भी ना हो। तो ये बड़ा
0: बिल्कुल
1: एक दुखित
0: सही
1: किया।
0: बात। नहीं, ऐसी घटना है।
1: हाँ,
0: जी
1: एक
0: जी
1: एक इंसिडेंस और मैं शेयर करना चाहूंगा कि
0: जी
1: मतलब हम ये तो नहीं कहते कि सारी पीढ़ी ही ऐसी है, लेकिन
0: जी
1: फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो परिवार का ध्यान नहीं रखते, अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते हैं। और सरकार ने
0: हाँ
1: भी इसके लिए वृद्ध जन भरण पोषण अधिनियम बनाया है, जहां जो ध्यान नहीं रखते उनको पाबंद किया जाता है, उनके ऊपर केस भी किया जा सकता है। कुछ लोग हैं ऐसे, ज्यादातर तो बच्चे दुखी होते हैं कि वो अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाते, पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि मजबूर हैं, दूर हैं,
0: जी
1: विदेश में हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो यहाँ होते हुए भी, साथ रहते हुए भी उनकी कदर नहीं करते। तो ऐसा एक वाकया मेरे साथ आया था, हमें किसी ने फोन करके बताया, उन्हें कहीं से पता लगा हुआ टाइम बैंक के बारे में। तो उन्होंने फोन करके बताया कि साहब ऐसे एक अकेली लेडी रहती है,

0: बातचीत करने लायक हुई, तब उनसे हमने पूछा कि भाई आपका खर्चा कैसे चलता है, कैसे होता है, कौन है कौन नहीं, आपको भर्ती करा के गए थे, वो दोबारा आए भी नहीं कभी भी, क्योंकि अगर एक बार भर्ती कराया तो दिन भर नहीं रुक सकते, पर कभी कभी तो हाल पूछने आ ही सकते हैं पड़ोसी।
1: सही बात है।
0: तब हमें पता लगा कि वो उनके रिश्तेदारी थी, भतीजी और उसके दामाद थे, पड़ोस में ही रहते थे, लेकिन वो इससे बचने के लिए वहां पे भर्ती कराकर और
1: चले गए
0: चले गए। तो बताइए मतलब कितनी सुखद स्थिति है। तो समाज में ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि कम से कम इनकी देखभाल हो सके। ये कुछ घटनाएं थी जिन्होंने बड़ा झकझोर दिया मुझे।
1: यही बात है, बिल्कुल। नहीं नहीं, बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसी बहुत घटनाएं होती हैं, जो पुरानी रिटायर्ड हीरोइंस हैं या हीरोज हैं, उनकी कई बार डेथ हो गई है और बाद में खबर नहीं आई है, ऐसी बहुत।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परवीन बॉबी का काफी सुनने में आया था।
1: परवीन बॉबी का एक और शुभा कोटे या दुर्गा कोटे।
0: हाँ, हाँ,
1: उसका
0: हाँ,
1: भी ऐसे बहुत
0: मतलब ऐसे भी देखे हमने जिनके पीछे लवाजमा होता था, जिनके पीछे लोग बाग आगे पीछे
1: सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी
0: हाँ सेलिब्रिटीज होते थे, और किस अंतिम घड़ी में उनके साथ में बड़ा
1: कोई नहीं।

0: बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जैन साहब आप। चलिए अब ये थोड़ा सा बदलते हैं इसको, आपके कोई खास शौक हो, कोई आपका फेवरेट गाना हो या कोई ऐसी चीज हो तो आप बताएं हमें, क्या क्या शौक है जैन साहब के, एक व्यक्ति के रूप में आपके क्या शौक है?
1: शौक तो ये है कि मतलब कभी कभी गाने गा लेते हैं, पहले तो हम प्ले वगैरह भी करते थे,
0: जी जी जी जी,
1: सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते थे, डिबेट विबेट का शौक रहा है,
0: जी जी,
1: अभी भी कभी कभी गुनगुना लेते हैं गाने वाले।
0: अरे वाह।
1: और तो कुछ गाने ऐसे हैं, आप भी गानों का शौक रखते हैं, मुझे पता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे गाने बने हैं कि आप किसी भी मौके के लिए ढूंढ लीजिए, आपको गाना मिल जाएगा। लड़की विदा हो रही है तो बाबुल की दुआएं लेती जा, है ना, बारात दरवाजे पर आई तो आज मेरे यार की शादी है, तो बच्चे का जन्मदिन है तो हम भी अगर बच्चे होते हैप्पी बर्थडे टू, तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं। तो जब हम सेवा की बात करते हैं तो राज कपूर साहब की फिल्म का एक गाना, अनाड़ी फिल्म का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें वो लाइन आती है, माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, है ना। तो वो जो गीत है ये मुझे बड़ा प्रिय लगता है।
0: चलिए, मुकेश का गाना है ये,
1: मुकेश जी का गाया हुआ है बहुत बड़ी
0: और राज कपूर साहब पे फिल्म आया गया है। वाह, बहुत ही बढ़िया गाना है और आपके टाइम बैंक की थीम से भी ये बिल्कुल जुड़ता है।
1: किसी की मुस्कुराहट हो पे हो निसार,
0: किसी
1: का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते में हो तेरे दिल में प्यार,
0: दिल में प्यार,
1: जीना इसी का नाम।
0: तो आप अपना समय दे रहे हैं, अपना लोग समय दे रहे हैं एक दूसरे के लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। तो चलिए, जैसा मैं अंत में आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अभी अंतर्राष्ट्रीय जन वृद्ध जन दिवस पर टाइम बैंक को राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है।
1: जी जी।
0: और आपके प्रयासों के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से भी अवार्ड दिया गया है। हमारी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से इस सम्मान के लिए बधाई स्वीकार कीजिए। आप इस मिशन को लेकर आगे बढ़ते रहें, ये हमारी कामना है। इस अवसर पर यदि कोई संदेश आप देना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: संदेश सीधा सा और साफ है कि जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं, वे पहला काम तो ये करें कि अगर उनके माता पिता हैं तो एक जो संयुक्त परिवार की हमारी प्रणाली थी, प्रथा थी, जिसमें हर एक का ध्यान रखा जाता था, तो वे उनका ध्यान रखें, उन वृक्षों का ध्यान रखें जिन्होंने जवानी में उनको फल दिए थे, छाया दी थी, आज उनके पास फल नहीं है, वो जर्जर हो गए हैं, उनकी देखभाल करें, उनका ध्यान रखें, पहला काम ये करें ताकि हमारे देश में

0: आश्रमों की या किसी भी अकेले बुजुर्ग को किसी भी त्रासदि से ना गुजरना पड़े। लेकिन फिर भी यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, किन्हीं के बच्चे भी नहीं है, ऐसे बुजुर्ग हैं, या आपके बुजुर्ग नहीं है आपके पास में, तो दूसरे बुजुर्गों का सहारा बने, उनका संबल बने। इस अभियान के लिए टाइम बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े, निःशुल्क काम है, वेबसाइट है timebankofindia.com, उससे जुड़े। इसमें कोई समय की बंदिश आपके पास नहीं है, आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको हर हफ्ते कुछ करना है या हर दिन कुछ करना है या महीने में कुछ करना है। ये वैसा बैंक है जहां आपके पास जब समय हो तो जमा कीजिए। बैंक में भी आप जब पैसा होता है तो जमा करते हैं, नहीं होता तो नहीं करते हैं, जरूरत होती है तो निकालते हैं। इसमें भी जब आपके पास समय होगा और कोई अनुरोध हेल्प का आएगा, आप कर सकें तो आप यस कीजिए। जो साथी कहते हैं कि मैं तैयार हूं, हम उन्हीं को ये रिक्वेस्ट असाइन करते हैं, तो जुड़ जाइए, कोई नुकसान नहीं है इसमें जुड़ने में। ये संदेश हम देना चाहेंगे।
1: अब एक और, चूंकि हमारे इस रेडियो स्टेशन की ऑल इंडिया रीच है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपकी उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में भी कोई प्रेजेंस है टाइम बैंक ऑफ इंडिया की?
0: जी हाँ, उत्तराखंड में देहरादून में हमारी यूनिट बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में तो कई जगह है, कानपुर है, आगरा है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, कुछ शहर और भी है, एकदम मुझे याद नहीं आ रहे। उत्तराखंड में अभी हमारा देहरादून में है।
1: अच्छा।
0: हाँ, हिमाचल में शिमला में है।
1: तो उससे रिलेटेड सवाल यह है कि अगर अपने शहर में कोई एक टाइम बैंक की उपस्थिति चाहता है या उसकी शाखा चाहता है, तो वो क्या करना चाहिए, उसको किस तरह से आगे बढ़े वो?
0: देखिए, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे मित्रता के लिए मिलना जरूरी है, ठीक है ना, और मेल मिलाप करने के लिए कुछ सदस्यों का होना जरूरी है। तो अगर कोई भी शुरू करना चाहता है, वो थोड़ा सा इसका प्रचार करे और कुछ सदस्य बनाए। अगर आपके पिन कोड के क्षेत्र में, आपके आसपास के क्षेत्र में 10 मेंबर भी हो जाते हैं,
1: अच्छा,
0: ठीक है ना, तो हम आपका एक यूनिट अलग से बना देंगे, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उसमें हम आपको एडमिन मनोनीत कर देंगे, जिनका काम सदस्यों को वेरीफाई करना है और मंथली मीटिंग आयोजित करना है। और तीसरा काम होता है उनका कि जब कभी कोई हेल्प रिक्वेस्ट आ जाए तो उसको बाकी मेंबर्स को चैनलाइज करना है, वेबसाइट पे उसकी प्रविष्टि करनी है। और इन सब कामों के लिए किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है, किसी ऑफिस की आवश्यकता नहीं है। आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप आपका ऑफिस है, आप कहीं से भी इसको संचालित कर सकते हैं। आप छुट्टियों पे घूमने गए हुए हैं नैनीताल और आप लखनऊ में हैं, तो भी आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं, सिवाय फिजिकल मीटिंग के और या फिजिकल हेल्प देने के। आपकी फिजिकल प्रेजेंस की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो भी करना चाहे वो आगे बढ़े, आए, जुड़े और हमें बताएं, हम उनको एडमिन की पावर्स दे देते हैं। जिनको पावर्स होती है उनको वो मेंबर्स का डाटा उपलब्ध होता है, ताकि वे उनको देख सके और उनको वेरीफाई कर सके।
1: जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो अगर आपको चाहते हैं कि टाइम बैंक ऑफ इंडिया की प्रेजेंस आपके शहर में हो, तो आप जैन साहब से या संपर्क कर सकते हैं, या इसकी वेबसाइट पर जाकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरह से आगे बढ़ना है।
0: तो हमारे नंबर दिए हुए हैं, एक जानकारी और दे दूं श्रोताओं को कि जो हमारी वेबसाइट है उसमें एक सेक्शन हमने दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति संपर्क करना चाहे अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, तो वहां पर हमने अपने सारे एडमिन्स की डिटेल, हमारी गवर्निंग काउंसिल की डिटेल वेबसाइट पे डाली हुई है। वहां आप जाइए, आवर टीम इस नाम से एक सेक्शन मिलेगा आपको, बिना मेंबर बने हुए भी वो सेक्शन मिलता है। आवर टीम में जाएंगे, वहां पे हमारे ऑल इंडिया में जो जो एडमिन्स हैं उनके नाम, मोबाइल नंबर उपलब्ध है। आप किसी शहर से हैं और वहां पे एडमिन है कोई हमारा, तो उनसे संपर्क कर लें, नहीं तो हमारे नंबर है, हमसे संपर्क कर लें। हमारी मेल आईडी है timebankofindia@gmail.com, आप मेल कीजिए, उससे भी हो जाएगा। वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट अस का एक सेक्शन बना हुआ है, वहां आप अपना संदेश लिखिए, उससे भी हम आपको कॉन्टेक्ट कर लेते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। तो डॉक्टर जैन, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना अमूल्य समय दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके इस मिशन की सफलता के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, यही हमें हमारी आवश्यकता है, क्योंकि हम विज्ञापन नहीं देते हैं, तो जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से या दृश्य श्रव्य माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से अपनी बात हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हम उसी का प्रयास करते हैं। इसमें आपने योगदान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया,
1: थैंक यू।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।
2: छोटी सी हमारी कायनात बन गई।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
5: अ से अर्जुन,
6: आ से आशा
5: जी।
7: भैया ने बुलाए, चलते हैं।
8: सही कह रहा है, चलो चलते हैं फटाफट। इससे पहले टाइम नहीं है, मुझे लगता है खेलने के लिए बुलाया होगा। चलो,
9: कल कहीं पढ़ने के लिए तो नहीं बुला रहे?
8: कहीं काम से
10: लगता है बच्चे आ गए। बच्चों की आवाज है। अरे अरे अरे अरे, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, शाबाश।
11: नमस्ते
10: बच्चों, नमस्ते, आ जाओ शाबाश। बैठ जाओ। हाँ, ये हुई ना बात। पहले तो सब बच्चे अपना अपना नाम बताएंगे, ठीक है ना?
11: नमन,
10: लवीश,
11: अर्णव,
10: अभय,
11: दक्षार,
10: कुशाग्र,
11: निशांत।
10: भाई जोर से बजाओ ताली पहले सबके लिए। शाबाश। ये बताओ, कहानी सुनना किस किस बच्चों को अच्छा लगता है?
12: हाँ, मुझे।
10: तो बच्चों, आज से मैं आपको रोज एक नई कहानी सुनाया करूँगा।
12: कहानी
13: अपनी बहन को,
14: महमूद भी आए।
10: हाँ हाँ, महमूद को लेके आना, अपनी बहन को लेके आना, अपने भाई को लेके आना, ठीक है ना? और जानते हो कहानी किस पर हुआ करेगी?
12: हाथी,
10: गिलहरी, बिल्ली। बिल्कुल ठीक भाई, मैं इन सब की कहानियां तो सुनाऊंगा ही, और साथ में सुनाऊंगा तुम्हें अक्षर की कहानी।
15: क्या बात हुई?
10: ये कौन आ रहा है?
15: नमस्ते भैया।
10: नमस्ते बेटा, नमस्ते। आजा बेटा, आजा, आजा, अंदर आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ
15: जाओ। तो आज नई कमीज पहनी है।
10: क्या क्या क्या?
15: आज नई कमीज पहनी है।
10: अरे निशांत, इसका नाम आतुल नहीं, अतुल है।
15: अतुल?
10: अरे वाह अतुल, तुम्हारी कमीज तो बहुत ही सुंदर है।
15: ये मामा जी ने दी है।
10: अच्छा, क्या बात है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जैसे निशांत ने अतुल को आतुल बोला, ऐसे ही अगर हम अमर में अ की जगह आ लगाएं तो क्या बनेगा?
15: अमर।
10: अमर।
15: और भैया अकल का हो जाएगा आकल।
10: आकल। वैसे बच्चों, होता है अकल, जैसे अकलमंद, तुम तो सच में बहुत अकलमंद।
15: और भैया अजब का बन जाएगा आजब।
10: हाँ आजब, शाबाश, बजाओ सी बात, जोरदार तालियां, बजाओ तालियां, शाबाश। अच्छा बच्चों, अगर मैं आरती में आ की जगह अ लगाऊं तो क्या बनेगा? सोचो।
12: आरती।
10: वाह शाबाश। और अगर मैं अकेला में अ की जगह आ लगाऊं तो क्या बनेगा?
12: अकेला।
10: अकेला। तो इसी बात पर बच्चों, हो जाए अक्षर की कहानी। तो अ से अक्षर, अ से
12: अक्षर।
15: भैया मेरी बहन ने छोटे अ से अनार सिखाया है।
10: अच्छा, और बड़े अ से?
15: बड़े अ से आम।
10: वो आपको समझाने के लिए कहती हैं छोटा आ बड़ा आ, और वो बच्चों इसलिए क्योंकि हम अगर थोड़ी देर के लिए बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे अ, और अगर ज्यादा देर के लिए बोलेंगे तो हम इसको खींचेंगे जैसे आ, तो अ और आ, अ से अनार और आ से आम। इसीलिए तुम्हारी मैडम या तुम्हारे सर तुम्हें समझाने के लिए कहते हैं छोटे अ से अनार, बड़े आ से आम। होता है लघु स्वर जैसे अ, थोड़ी देर के लिए बोला हमने, और दीर्घ स्वर ज्यादा देर के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे आ। बोलो मेरे पीछे एक साथ, ठीक है?
12: आ,
10: आ,
12: आ, आ, आ,
10: शाबाश। तो बच्चों हमारी आज की कहानी है अ से अर्जुन और आ से आशा। अ आ,
12: आ, आ।
10: हाँ, आगे समझ में। अ से
12: अर्जुन
10: और आ से
12: आशा।
10: शाबाश। बच्चों दोनों भाई बहन थे, अर्जुन छोटा था, आशा बड़ी थी। दोनों भाई बहन बड़े शरारती थे, दिन भर खेलते रहते इतना खेलते बच्चों, इतना खेलते कि उन्हें खाने पीने की भी चिंता नहीं रहती थी। हाँ अच्छा, एक बार पता है क्या हुआ?
8: क्या हुआ भैया?
6: क्या हुआ भैया?
10: एक बार अर्जुन और आशा के घर के बाहर तमाशे वाला आया। अच्छा तमाशे वाला कौन होता है, कौन बताए?
8: वो रस्सी पे चलता है भैया।
10: हाँ सही कहा तुमने,
8: जादू भी करता है।
10: जादू भी करता है हाँ।
8: भैया और वो नए नए खेल दिखाता है।
10: नए नए खेल दिखाता है, क्या बात है। तो एक बार अर्जुन और आशा के घर के बाहर तमाशे वाला आया। आ से आया, आ से आशा और आ से आया, ठीक है। तो बच्चों दोनों तमाशा देखने में इतना खो गए, इतना खो गए कि अचानक जब वर्षा आई तब भी वो बाहर ही खड़े रहे।
8: भैया आ से अचानक।
10: हाँ अ से अचानक।
13: भैया आ से आया,
10: आ से आया और आ से आई।
8: भैया आ से आता,
10: आ से आता। शाबाश, आ से आज। तो सुनो आगे क्या हुआ। तो बच्चों जब बारिश हो रही थी तो उनकी अम्मा ने उन दोनों को आवाज लगाई। अरे बच्चों, अरे आशा और अर्जुन, जल्दी आओ जल्दी, अरे बारिश होने लगी है बेटा, अरे बीमार पड़ जाओगे, भीग जाओगे, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ अंदर। हाँ तो बच्चों आ से आशा, आ से आवाज, आ से आओ और अ से
8: अर्जुन,
10: अ से अर्जुन,
8: आ से अमरूद,
10: अ से अमरूद,
8: आ से अगली,
10: अ से अगली,
8: आ से अजगर,
10: अ से अजगर,
13: अंदर,
10: अ से अंदर,
8: अम्मा
10: और अ से अम्मा। शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों अर्जुन और आशा भीग चुके थे, उन्होंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले। इसी बीच अम्मा ने चूल्हे में आ से आग जलाई और पकाए गर्मा गर्म पराठे।
8: भैया आ से आटा,
10: आ से आटा। शाबाश,
13: आ से आग,
10: आ से आग।
13: भैया अ से अरहर की दाल।
10: अ से अरहर, सही कहा तुमने। और बच्चों साथ ही बनाई अरबी की सब्जी। किसकी सब्जी?
12: अरबी की सब्जी।
13: भैया अ से अरबी।
10: हाँ शाबाश,
12: अ से अम्मा।
10: हाँ अ से अम्मा।
8: अ से अगर,
13: अ से अगरबत्ती,
10: अ से अगरबत्ती, अ से अगर, अ से अजगर, अ से असलम और अ से अम्मा, अ से अरहर और अ से अरबी। और हाँ एक चीज और भी बनाई, बड़ी चटपटी मसालेदार।
8: भैया क्या बनाई?
10: अम्मा ने बनाए चटपटे आलू।
13: भैया मुझे आलू पसंद है।
10: मुझे भी पसंद है भाई चटपटे आलू।
8: भैया मुझे अनार पसंद,
10: अनार
8: है।
10: पसंद है। अ से अनार। तो अम्मा ने उन्हें अनार भी दिया खाने को और हाँ आम भी दिया। आम किसको पसंद है? वाह सभी को पसंद है ना। तो आ से आम, आ से आलू, अ से अरबी और अ से अरहर,
8: अ से अपनी,
10: अ से अपनी और आ से आंखें, अपनी आंखें।
13: भैया आ से आम का अचार,
10: आ से आम और अ से अचार। तो आम का अचार, वाह क्या बात है, बजा ताली जोरदार। तो बच्चों आगे सुनो, अम्मा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और अर्जुन और आशा से कहा, अरे बच्चों, अरे भाई अपने आप ले लो खाना, मैं तो काम में बहुत व्यस्त हूँ, ले लो ले लो। हाँ
13: अ से अपने,
10: अ से अपने।
8: भैया आ से आप,
10: आ से आप। शाबाश,
13: अपने
10: आप, वाह क्या बात है अपने आप। तो बच्चों अर्जुन और आशा ने ढेर सारा खाना खाया, उन्हें भूख भी तो लगी थी ना
8: भैया।
10: अच्छा बच्चों ये बताओ उन्हें खाना कैसा लगा होगा?
13: बहुत अच्छा लगा।
12: से अच्छा।
10: शाबाश, अ से अच्छा। तो दोनों कहने लगे, आहा मजा आ गया। आहा अम्मा ने कितना अच्छा कितना स्वादिष्ट खाना

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: अधिक बलवान कौन?

0: एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा,
1: मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ।
0: सूरज ने हवा से कहा,
2: मुझमें तुमसे ज्यादा ताकत है।
0: इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा,
1: इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है।

0: सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा,
1: ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत।
0: हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की।

0: आदमी की टोपी उड़ गई।
1: अरे अरे अरे
0: पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा।
1: अरे अरे अरे
0: पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी।

0: सूरज ने कहा,
1: हवा अब तुम मेरी ताकत देखो।

0: सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा,
1: देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट।
0: हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा,
2: मान गई तुम्हारी ताकत को।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: जलियांवाला बाग

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
3: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।

0: और नो।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। Yes. Hey, you, come up.
2: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से

पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: पताकी
1: जय,
0: भारत माता की।
2: जनरल डायर के सामने नर लगन कैसी हिम्मत, जी चाहता है इन्हें कोरियर से पूंद डालू। नो नो नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
3: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
4: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
5: भारत माता की
1: जय,
5: भारत माता की
1: जय,
5: भारत माता की
1: जय।
4: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
5: हमारी मांगे
1: पूरी करो,
5: हमारी मांगे
1: पूरी करो,
5: हमारी मांगे
1: पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
6: रोलेट एक्ट
1: वापस लो,
6: रोलेट एक्ट
1: वापस लो,
6: रोलेट एक्ट
1: वापस लो।
4: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है।
5: मारो,
4: मारो। सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
5: सत्यपाल को
1: रिहा करो,
5: डॉक्टर किचलू को
1: रिहा करो,
5: सत्यपाल को
1: रिहा करो,
5: डॉक्टर किचलू को
1: रिहा करो।
3: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली।

0: दुनिया रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम जाबुआ की आवाज।
1: पहली उड़ान में
2: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
3: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
4: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
5: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
4: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
5: हाँ पूछो बेटा।
4: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
5: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
3: लेकिन माँ।
5: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
4: जी
5: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
4: अच्छा माँ, ये लो माँ।
5: ला।
6: कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
4: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे, मिल गया मुझे।
5: क्या मिल गया
4: मुझे? माँ माँ माँ,
5: क्या मिल गया? क्या मिल गया
4: मुझे? मिल गया।
6: हाँ क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
5: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
4: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।

0: लगता है। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो,
1: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें।
0: हाँ,
1: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
0: हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
1: ठीक है, आओ मेरे साथ।
2: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन, जोसेफ, सुनो तो।
3: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
5: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
4: हाँ भाई, भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार, भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
5: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
4: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
5: आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
6: ना यार, क्या करेंगे,
4: रहने दीजिए, भला कोई चीज उड़ नहीं सकती।
6: हो गया है।
4: अरे भाई साहब, जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
5: भाई साहब, हट जाइए। आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
4: अरे अरे, वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
5: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ,
4: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो, एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
5: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
4: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे वो देखो, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
5: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
4: अरे अरे अरे, वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे
5: कमाल कर दिया।
4: ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो, वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
5: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
4: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
5: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
4: अरे जबर, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
5: वो देखो वो देखो, गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ।
4: अरे
5: देखो,
4: अरे हाँ हाँ, अरे वो पेड़ों की तरफ। अरे बापे, अरे वो पेड़ से जाकर टकराया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
3: साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बत्तख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना

0: जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था, लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के दो भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था, और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, और मैं हूँ आप सभी के बीच में आपकी रेडियो साथी आरजे भावना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा आप सभी के बीच में हाजिर होती हूँ लेकर समुदाय के चर्चा में एक नया विषय, और आज भी एक नए विषय के साथ में मैं आरजे भावना हाजिर हूँ आप सभी के बीच में लेकर ये बहुत ही खास और बेहतरीन जानकारी जो है नशा मुक्ति भारत अभियान पर। और आज के इस चर्चा के विषय में शामिल होने हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्म कुमारी से ज्योति बहन। ज्योति बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, कृपया अपना परिचय दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय झाबुआ से मैं ब्रह्मा कुमारी ज्योति बहन, जो कि विगत 25 वर्षों से झाबुआ आदिवासी क्षेत्र में आध्यात्मिकता के द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हूँ।
1: दोस्तों, तो आपने जाना ज्योति बहन का परिचय, इन्होंने अपने बारे में बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, और अब हम चर्चा के विषय पर आते हैं। तो ज्योति बहन, आप ये बताइए कि नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए क्या कहना चाहेंगी हमारे श्रोताओं से?
2: आज का हमारा विषय है, जो कि भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारी के MOU से एक बहुत सुंदर अभियान चल रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि जो झाबुआ जिला है, हम सभी को ज्ञात है कि इस झाबुआ जिले में नशा बहुत मात्रा में फैला हुआ है। हम ये कहेंगे कि सुबह की शुरुआत और पूरे दिन का अंत अर्थात रात तक अधिकतर मनुष्य आत्माएं शराब में डूबी हुई रहती हैं, तंबाकू पाउच का सेवन करती हैं, और इस गिरफ्त में आज के छोटे छोटे बच्चे भी अछूते नहीं रहे हैं, वो भी इस गिरफ्त में आते जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि हम सभी परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान हैं, और परमात्मा ने हम सभी को एक बहुत सुंदर उपहार दिया है, और वो उपहार है हमारा शरीर। वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर का आकलन करके इसकी कीमत लगाई है, जो है 220 करोड़ रुपए। आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि आज यदि हम एक 10 लाख की मारुति कार खरीदते हैं, तो भी हम उसका कितना रखरखाव करते हैं, उसमें पेट्रोल डालना है तो पेट्रोल ही डालते हैं, समय प्रति समय उसकी सर्विसिंग कराते हैं। ऐसे नहीं कि आज हमारे पास पेट्रोल नहीं है तो हमने डीजल डाल दिया, नहीं, हम उस गाड़ी का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है, और उन्होंने हमें 220 करोड़ रुपए का ये शरीर दिया है। आज मनुष्य आत्मा ने उसकी क्या हालत बना ली है। आज का मानव अपने शरीर के अंदर शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, गुटखा आदि डालकर अपने शरीर को डस्टबिन अर्थात कचरे का डब्बा बनाते जा रहा है। आज परमात्मा के सामने भी इन चीजों का भोग अर्थात नैवेद्य कभी नहीं लगाते हैं। परमात्मा के सामने भी हम बहुत सुंदर चीजों का भोग रखते हैं, और हम परमपिता परमात्मा को रोज याद करने वाले, अपने घर में हमने उनकी तस्वीरें लगा रखी हैं, लेकिन हम अपने शरीर में कितना गंदगी डाल रहे हैं, और उसके कारण जो है शरीर इतना कमजोर होता जा रहा है।
1: जी बहन जी, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी आपसे कि ठीक है नशे की वस्तुएं हैं, लेकिन इंसान नशे का शिकार होता ही क्यों है, या फिर अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, कृपया इसके बारे में बताइए।
2: अब हमें ये जानना होगा कि व्यक्ति नशे का शिकार क्यों होता है। आज तक हमने जितना भी सर्वे किया या जो जो नशीली चीजों का सेवन करते हैं उनसे यदि हम पूछते हैं तो उनका एक ही उत्तर होता है कि दीदी हम बहुत छोटे थे और हमारे दोस्तों ने हमें ऑफर किया कि पाउच खा लो या तंबाकू खा लो या थोड़ी सी शराब पी लो या गांजा ले लो और हम उन्हें ना नहीं कह सके। और एक बार हमने बाल्यावस्था में ही उस चीज को लेना शुरू किया और धीरे धीरे हम जो है उसके आदि बन गए हैं।
1: जी जी मैम, बहुत ही बढ़िया आपने जानकारी दी। अब एक और सवाल था हमारे मन में कि आखिर ये नशा किन किन चीजों से हो सकता है या फिर किन किन चीजों से होता है, कृपया इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: तो नशा सिर्फ शराब बीड़ी सिगरेट तंबाकू का ही नहीं है। आज एक और नशा इस समाज को अपनी गिरफ्त में लेते जा रहा है और वो नशा है मोबाइल का भी नशा। आज यदि हम देखते हैं कि कई घर परिवारों में सुनने के लिए मिलता है दीदी बच्चा खाना नहीं खाता है और उसको जैसे हम मोबाइल दे देते हैं वो आराम से जो है मोबाइल देखता जाता है और भोजन करता जाता है। बच्चा रो रहा है हमने उसको मोबाइल दे दिया। तो क्या आज हम अपने बच्चों को जो आने वाली हमारी पीढ़ी है हम उसको कैसा जीवन हम खुद ही प्रदान कर रहे हैं। तो वर्तमान समय की ये पुकार है कि हम सभी 24 घंटे में से घड़ी दो घड़ी आध्यात्मिकता को अपने जीवन में शामिल करें, आध्यात्म के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और आध्यात्म से ही हम सभी का जो जीवन है वो परिवर्तन हो सकता है। आज हमने अपने जीवन में कई परिवर्तन किए हैं जिसके लिए हम सोचते हैं कि हम विकास की ओर जा रहे हैं, लेकिन एकांत में बैठकर के यदि हम घड़ी दो घड़ी चिंतन करें तो हम अपने आप से यदि बातें करें या अपना आत्मविश्लेषण करें तो हमें ये पता चलेगा कि हम विकास की ओर नहीं बल्कि आज हम विनाश की ओर जा रहे हैं।
1: जी मैम, हमने सूक्ष्म रूप से ये जाना है कि नशे के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब हम संपूर्ण रूप से जानना चाहेंगे कि आखिर ये नशे के कारण क्या क्या है और इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है या फिर इसके निवारण क्या है, कृपया इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: नशे के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, जैसे किसी घर परिवार में बच्चों को स्नेह नहीं मिलता है और इस कारण जो है बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है तो वो जब बाजार में जाता है तो वो सुंदर पाउच यदि किसी पान की दुकान पर लगे हुए हैं तो उनकी ओर वो अपने आप आकर्षित होता है और एक बार यदि वो खाना शुरू करता है तो वो उसको बड़ा अच्छा लगने लगता है और वो उसका आदि हो जाता है। कहीं कहीं व्यापार में असफलता है या कहीं किसी को अपने प्यार में धोखा मिलता है तो भी हमने देखा है कि व्यक्ति जो है शराब का या सिगरेट का सहारा लेते हैं, या फिर आर्थिक परेशानियां हैं या व्यक्ति कोई बीमार है वो भी जो है फिर इस नशे की तरफ बढ़ता है और वो नशा जब करते हैं तो थोड़ी देर उनको बड़ा अच्छा लगता है लेकिन फिर जैसे ही नशा उतर जाता है तो फिर वही स्थिति होती है, फिर वो नशा करने लगता है, इस प्रकार वो इस चीज का आदि हो जाता है।
1: जी मैम, अभी आपने आध्यात्मिकता के बारे में बताया तो क्या आप ये बता सकती हैं कि आध्यात्मिकता का प्रयोग करके नशे से दूरी कैसे बनाई जा सकती है, इसका क्या रोल हो सकता है इसमें, कृपया इसके बारे में बताएं।
2: देखिए, नशे से दूर होने के लिए इसे व्यक्ति कहता है आज मेरा शराब पीने का मन है या कह कहता है कि आज मेरा सिगरेट पीने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले हमें जो है अपने मन को पावरफुल अर्थात शक्तिशाली बनाना होगा और मन शक्तिशाली दवाइयों से नहीं बनेगा, उसके लिए हमें थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर मुड़ना पड़ेगा। तो जैसे कि ब्रह्मा कुमारीज में खास हम सिखलाते मेडिटेशन, जैसे एक डिस्चार्ज मोबाइल की बैटरी है और जैसे हमने उसको पावर हाउस से कनेक्ट किया तो हमारे मोबाइल की बैटरी रिचार्ज होने लगती है और मोबाइल हमारा कार्य करने लगता है। इसी प्रकार हमारा शरीर एक मोबाइल है और इसके अंदर एक बहुत सुंदर सिम है वो है आत्मा और इसके अंदर जो मन है वो बैटरी है। परमात्मा से अपने मन को कनेक्ट करना उसकी एक बहुत सुंदर विधि है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से हम परमात्मा से सीधा कनेक्ट होकर के धीरे धीरे अपने मन को पावरफुल बनाते, मन को शक्तिशाली बनाते हैं। दूसरा, हम नशे को दूर करने के लिए दूसरा हम सहारा लेते हैं, बुद्धिमत्ता का विकास। मान लीजिए हमारे पास में कोई व्यक्ति आता है, सिगरेट पीकर के आता है, तो हम उससे घृणा करते हैं, आपके पास से बदबू आ रही है, आप दूर हो जाइए, मेरे पास मत बैठिए। या कोई व्यक्ति शराब पीकर आया तो हम उससे नफरत करते हैं, आपने बहुत शराब पिए, आप हमारे पास मत बैठिए। नहीं, हमें उनसे सबसे पहले स्नेह से, प्यार से उनके साथ में पेश आना है कि देखिए आप शराब को कम कीजिए, सिगरेट को पीना कम कीजिए। और धीरे धीरे जैसे उसके बुद्धि में ये उतरेगा कि मुझे इससे दूर होना है, और मान लीजिए अगले दिन व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति एक दिन में 10 सिगरेट पीता है, लेकिन उसने अगले दिन 9 सिगरेट पी, उसने एक सिगरेट कम पी है, तो हमें उसको प्रोत्साहित करना है, शाबाश, वेरी गुड, आज आपने बहुत अच्छा किया, आपने एक सिगरेट को कम किया। इससे उसके अंदर उमंग उत्साह आएगा कि ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे फिर इस नशे को छोड़ने का प्रयास करेगा और उसने सफलता मिलेगी। तीसरा, नशे को दूर करने के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ, जो कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी से भी हम निशुल्क ही प्रदाय करते हैं, जिसमें सिगरेट, तम्बाकू और शराब को छोड़ने के लिए होम्योपैथिक दवाई देते। और चौथा प्रकार है, कुछ घरेलू उपाय भी हैं, छोटे छोटे नुस्खे बनाकर उसका प्रतिदिन कई दिनों तक नियमित सेवन करने से भी हम नशे को पूर्णतया छोड़कर एक बहुत सुंदर शांतिमय जीवन बना सकते हैं। जो व्यसन का आदि व्यक्ति, उसको आत्मिक स्नेह की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जैसे वो मेडिटेशन करता है तो उसको आत्मिक स्नेह के साथ साथ परमात्मा के प्रति भी वो आकर्षित होने लगता है। और जो जो मनुष्य आत्मा, नशे का आदि व्यक्ति परमात्मा की ओर आकर्षित होता है, तो धीरे धीरे उसका जो ये नशा है वो छूटने लगता है, उससे एक रूहानी नशा, एक आध्यात्मिक नशा चढ़ने लगता है कि मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ जीवन बनाना है, श्रेष्ठ कर्म करना है।
3: जी मैम, आपने अभी अभी कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में बताया, तो हम जानना चाहेंगे और साथ ही जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे वो सभी भी जानना चाहेंगे कि आखिर कौन से वो घरेलू नुस्खे हैं जिसका इस्तेमाल करके हम नशे से दूर हो सकते हैं या फिर नशे को खुद से दूर किया जा सकता है। तो प्लीज मैम, वो घरेलू नुस्खे के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: हाँ, नशे को छोड़ने के लिए हम सौंफ, मिश्री, अजवाइन, तिल्ली, इन चारों को बराबर मात्रा में लेकर के अच्छा मिक्सर में पीस के उसका चूर्ण बना के और उसका दिन भर में 4 या 5 बार उसका सेवन करें, तो जो बार बार जो व्यक्ति का मन करता है मुझे गुटखा खाना है, पाउच खाना है या शराब पीना है, तो वो जो है धीरे धीरे उसका जो है मन उधर से हटने लगता है। दूसरा, एक अदरक का टुकड़ा, अदरक को छील कर उसका ऐसा स्लाइस बना करके भी व्यक्ति मुंह में रख करके उसको चूसता रहे, चबाता रहे और उसका रस अंदर लेता रहे, तो भी जो है पीने की या जो गुटखा खाने की वो धीरे धीरे तमन्ना जो है वो कम होने लगती है।
3: जी मैम, आपने बहुत ही बढ़िया और अहम जानकारियां दी हमारे श्रोताओं को नशे को लेकर, और साथ ही हमारे झाबुआ जिले के जो श्रोता सुन रहे होंगे वो शायद इसे समझ भी रहे होंगे कि नशा कितना खतरनाक है और हमारे दैनिक जीवन में, हमारे शरीर पर और आर्थिक जीवन में उसका क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो इसे वो सुनेंगे, समझेंगे और साथ ही हम आशा करते हैं कि वो नशे से आज ही दूरी बनाना शुरू करेंगे। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे श्रोताओं को इतनी अहम जानकारियां प्रदान की, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, आज आपने जाना नशे से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी परेशानियों से अगर आपको सामना नहीं करना है तो कृपया नशे से दूरी बनाए। नशा कोई अच्छी चीज नहीं है, नशा एक बहुत ही गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है और वो बीमारी हमारी जान भी ले सकती है। इसलिए कृपया नशे से दूरी बनाए और जितना हो सके खुद को इससे दूर रखें और भी लोगों को समझाएं कि नशा न करें। नशा मुक्त रहेंगे तभी तो स्वस्थ जीवन जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें। रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और हमारे किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि हम और आप देख रहे हैं गर्मी इतनी ज्यादा भीषण पड़ रही है। ऐसे में हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान साथी जिनका मन नहीं मानता है और वो सोचते हैं कि हम तो खेती में ही हमें पूरा समय व्यतीत करना है, और चाहे वो गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, या फिर बरसात का मौसम हो, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, सोचते रहते हैं कुछ नयापन करने के लिए। और बहुत सारे किसान साथी ऐसा करते भी हैं और कर भी रहे हैं। तो ऐसे में किसान साथी थोड़ा अपना भी ख्याल अवश्य रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने से हमारे किसान साथी यदि बीमार पड़ जाएंगे तो आगामी फसल कैसे करेंगे। हाँ, हमें आशा है कि किसान साथी हमारी बात को समझ रहे होंगे। और किसान साथी, इस बार चूंकि आपके जिले झाबुआ में पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन खुल गया है, तो नई नई जानकारी तो आप सुन ही रहे होंगे, और आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों की ये जो जानकारी है वो बहुत पसंद आ रही होगी। हम कोशिश करेंगे कि वो छोटी से छोटी जानकारी हमारे किसान साथियों तक पहुंचाई जाए, जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी से दो। अब हमारे किसान साथी चूंकि पथरीला इलाका है झाबुआ जिले का, और हमारे किसान साथी कम सीमित उनके पास खेती भी है, और जिनके पास ज्यादा खेती है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन जिनके पास कम खेती है वो क्या करते हैं कि खेती बस दो सीजन की खेती लेते हैं, या ये बरसात के बाद जो खरीफ वाली है या रबी वाली फसल, दोनों फसलें लेते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है, ऐसे में किसान साथी संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी से परामर्श लेकर, आपके पास में केबीके है यानी कृषि विज्ञान केंद्र भी है, वहां पर जो संबंधित वैज्ञानिक बैठे रहते हैं वो आपके लिए तत्पर तैयार रहते हैं। और साथियों, आपके पास कम्युनिटी रेडियो है जिस पर आप जानकारी अपनी आदान प्रदान कर सकते हैं, साझा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसान साथी कि आय किस तरीके से दोगुनी हो, क्योंकि दुगनी तभी होगी हमारे किसान साथियों की आय जब हम वैज्ञानिक पद्धति की ओर मूव करेंगे, जब हम वैज्ञानिक खेती करना स्टार्ट करेंगे, नई नई पद्धति, नई नई वैरायटी के बीज, और स्प्रिंकलर से खेती करना या फिर ड्रिप एरिगेशन से खेती करना, तो विभिन्न प्रकार की संभावनाएं खेती में, और इसमें लागत भी कम आती है और मुनाफा अधिक होता है। तो हमारे किसान साथी समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हमें आशा है कि समझ गए होंगे। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, और अभी से चूंकि बरसात का मौसम जैसे ही आएगा तो हमारे किसान साथी क्या करेंगे, अभी से तैयारी करें, क्योंकि मनरेगा में बहुत सारा पैसा रहता है, मेड़ बंधान कर सकते हैं हमारे किसान साथी, जो ढालू उबड़ खाबड़ जमीन है उसको एक साथ समतलीकरण उसका कर सकते हैं, जो हमारे किसान साथियों के लिए समतली जमीन है उन पर वो बागवानी लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं, तमाम प्रकार की संभावनाएं खेती में करें। तो किसान साथी करने के लिए यदि तत्पर हैं तो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी भी तत्पर हैं, और हमारे वैज्ञानिक भी तत्पर रहते हैं आपके सहयोग करने के लिए। आपको बस उनके पास जाना है, समझना है, सोचना है, और हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना है। आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज हम एक नई पद्धति की खेती के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, वो है कि किस तरीके से जो हमारे किसान साथियों के पास छोटी छोटी जमीनें हैं वहां पर पॉली हाउस, चूंकि पॉली हाउस सरकार द्वारा अनुदान भी इसमें दिया जाता है, पॉली हाउस में टमाटर की खेती किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर की खेती यानी टमाटर सीजनेबल होता है, और आपको पता है कि अहम खेती में से एक मानी जाती है टमाटर की खेती। तो ऐसे में किसान साथी, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कैसे संभालें, तो पॉली हाउस में किस तरीके से खेती कर सकते हैं टमाटर की, उस पर हम आज एक नजर डालेंगे। साथ साथ में एक सफल किसान की कहानी भी हम सुनाएंगे, साथ साथ में आधुनिक जमाने में हम किसान साथियों को किस तरीके से खेती कर सकते हैं, कौन सी योजना का लाभ लेकर हमारे किसान साथी खेती करते हैं, कर सकते हैं, इस पर भी हम
5: चर्चा करेंगे। तो तीन चार सेगमेंट होंगे, आज हम साथ साथ में मौसम आधारित जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन साथियों जानकारी उपलब्ध कराने से पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आप लोग रेडियो अपनी बातें।

आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया बिल 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से भीली गीत को सुना, आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अब जानते हैं मौसम क्या कहता है, क्योंकि जब तक हम मौसम आधारित खेती नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा क्या कहता है मौसम। तो आने वाले 5 दिनों के दौरान तेज हवा, आंधी, तूफान चलने की संभावना देखते हुए हमारे किसान साथी, जिन किसान साथियों के पास कच्चे छत वाले पशुशालाओं हैं, तो उनका गिरने का डर बना रहता है, इसलिए कच्चे पशुशालाओं की मरम्मत का कार्य अति शीघ्र शुरू कर दे। साथ साथ में कच्चे छत वाले पशुशालाओं के पशु सुरक्षित रहें। आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना बताई जा रही है। आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना भी बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 45 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना बताई जा रही है। रात का न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना बताई जा रही है। हवा की औसत गति 11 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें? आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना बताई जा रही है। साथ साथ में गर्म लू चलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई जिन्होंने सब्जी बोई है, उड़द मूंग भी की फसल उन्होंने बोई है, फलों के बगीचे उन्होंने लगाए हैं, तो हल्की हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर करते रहें। साथ साथ में मूंग में सफेद मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई फसल का निरीक्षण करें। नियंत्रण हेतु मिथाइल डेमोटोन और डाई मैथो एट दवा 2.0 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आसमान जब साफ रहे तब उसका छिड़काव अवश्य कर दें। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वे हरी घास हेतु मक्का या ढेंचा की बोनी कर सकते हैं। आने वाले 5 दिनों के दौरान तेज हवा चलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई पान की यदि खेती करते हैं तो पान की बेलों को डंडी या बांस से ऊपर बांधकर चढ़ाने का कार्य शुरू कर दें। साथ साथ में टमाटर जिन किसान साथियों ने लगाई है, मिर्च बैगन की नर्सरी लगाई है, तो उनको दोपहर के समय छाया का उचित प्रबंधन अवश्य करें जिससे गर्म हवाओं से बचा जा सके। कद्दू वर्गीय जिन किसान साथियों ने सब्जियां लगाई हैं, लाल कीड़ा सफेद मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके लिए हमारे किसान भाई ट्राइजोफास 40 ईसी दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य कर दें तथा दवा छिड़काव के 7 दिन बाद तक सब्जियों को ना तोड़ें। वर्तमान मौसम में बैगन और टमाटर में फल तथा तना छेदक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव के हेतु क्वानाल फास 25 सीसी दवा 2.0 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य कर दें। और हमारे जिन किसान साथी नए बाग बगीचे फलबाग लगाने के लिए सोच रहे हैं तो वो गड्ढों की खुदाई अवश्य कर दें, उचित दूरी पर गड्ढे खोदें। साथ साथ में खुदी हुई जो मिट्टी रहती है उसको धूप से तपने दें जिससे जो कीटाणु है वो नष्ट हो जाए। मानसून पूर्व पशुओं को गलघोंटू और जहरी बुखार के टीके अवश्य लगवा लें। आपके नजदीकी जो पशु चिकित्सा होगा तो वहां पर जाकर संपर्क कर लें। साथ साथ में बारिश के मौसम के आने तक इनके अंदर रोग रोधक क्षमता का विकास हो सके। मुर्गी पालक हमारे किसान साथी जो पाले हुए हैं उनको मुर्गियों को गर्मी से बचाव हेतु मुर्गी खाने में चारों ओर जालियां में टाट फट्टी जो रहती है, बोरे जो रहते हैं उसको लगा देवे। साथ साथ में दिन का समय 2 से 3 बार पानी का छिड़काव अवश्य कर देवे। तो ये थी जानकारी मौसम आधारित जो आपको सुनाई जा रही थी। इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है हमारे कार्यक्रम को सुनने का। हमारे किसान साथी दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि गीत संगीत भी होगा और आपको जानकारी भी हम मुहैया कराएंगे। तो आइए इसी बीच सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके अरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपड़ा रेडियो आपड़ी बात है।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुने

0: वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं पॉली हाउस में हमारे किसान साथी किस तरीके से टमाटर की खेती कर सकते हैं। आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया बिल 90.8 FM। आप रेडियो अपनी बात है।
1: टमाटर की फसल बहुत ही नाजुक होती है, मौसम की मार इस पर बहुत ज्यादा पड़ती है, प्रभावित हो जाती है इसकी उपज। ऐसे में जरूरी है कि हम कोई विकल्प ढूंढें। विकल्प है पॉली हाउस। जी हाँ, टमाटर की खेती हम पॉली हाउस में कर सकते हैं, बेहतर उत्पादन हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। किस तरह से ये संभव हो सकता है, आइए जानते हैं हमारे इस सेगमेंट के जरिए।
2: हमारे देश में टमाटर की मांग साल भर बनी रहती है। प्रधानमंत्री से टॉप फसलों में शुमार कर चुके हैं और ये केंद्र सरकार की ओर से चलाए जाने वाले ऑपरेशन ग्रीन्स का भी हिस्सा है। ज्यादा मांग की वजह से ही इसकी खेती आर्थिक रूप से काफी सुरक्षित मानी जाती है, यानी टमाटर कमाई वाली फसल है। लेकिन ज्यादा धूप, तेज हवा, अत्यधिक बारिश, ओले या मौसम दूसरे हमले इस फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में कीटों और बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। इसकी वजह से किसानों को फसल में कीटनाशकों और दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। इससे न सिर्फ लागत बढ़ जाती है बल्कि गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। पॉली हाउस लोहे और पॉलीथिन से बना छाया घर है, जो महंगी फसलों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं और उन्हें मौसम की मार से बचाता है। इन घरों में जलवायु को नियंत्रित करके बेमौसमी फसलें भी उगाई जा सकती है। बेमौसम फसलें हमेशा से ही ज्यादा मुनाफा देती है। पॉली हाउस में बोने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कई किस्में तैयार की हैं। पूसा रक्षित, पूसा टमाटर, संरक्षित ए, चेरी टमाटर, हिम शिखर, नवीन, हिम सोना, अभिलाष, शहनशाह, अर्का रक्षक और अर्का सम्राट। ये ऐसी किस्में हैं जो उन्नत भी है और लंबे समय तक फल देती है। टमाटर की खेती के लिए हल्की बलुई या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। मिट्टी पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होनी चाहिए और पीएच मान 6 से 7। पॉलीहाउस के अंदर खेत तैयार करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। मिनी रोटावेटर या कल्टीवेटर से 2-3 जुताई काफी है। पहली जुताई के समय गोबर की खाद जरूर डाल दें। टमाटर उथली जड़ वाली फसल है और फल आने के बाद शाखाओं के लटक जाने या टूट जाने का खतरा रहता है, इसलिए समय समय पर पौधों को रस्सी से बांधकर सहारा देना चाहिए। बसंत और गर्मियों के दिनों में 4 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी है। आम मौसम में हर 10 दिन पर पानी दे सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि पॉली हाउस में टपक सिंचाई का इंतजाम करें। इससे न सिर्फ पानी की बचत होगी बल्कि लागत भी कम आएगी। पॉली हाउस चूंकि बंद संरचना है, इसलिए बारिश होने पर जल भराव की समस्या नहीं आती। टमाटर में रुपाई के पहले 4 हफ्तों के दौरान निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। फसल में तापमान और नमी बनाए रखने के लिए फोगर सिंचाई भी कर सकते हैं। पॉली हाउस में चूंकि वातावरण नियंत्रित होता है, इसलिए पैदावार भी खुले खेत के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसके अलावा आप साल भर टमाटर की फसल ले सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पॉली हाउस सामान्य खेती के मुकाबले 4 गुना ज्यादा मुनाफा दिला सकता है।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी। और अभी आपने सुना पॉली हाउस में किस तरीके से टमाटर की खेती कर सकते हैं। अगला सेगमेंट है कि बागवानी में किस तरीके से हमारे किसान साथी आगे बढ़ सकते हैं। और साथ में सुनेंगे सफल कहानी हमारे एक किसान की। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपका रेडियो अपनी बात है। इसी बीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं इस प्यारे से वीर गीत को।

0: देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
1: खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा।
0: इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती है। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
2: बहनों, खेती किसानी में कई ऐसी मिसालें हैं जो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। आज एक ऐसे ही किसान अमरनाथ से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कैसे उन्होंने कामयाबी का ये सफर तय किया है।
3: अमरनाथ का जन्म गांव खेड़ा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा में हुआ था। इन्होंने खेतीहर परिवार में जन्म लिया था, इसलिए जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे उनकी रुचि खेती से जुड़ती जा रही थी। उनके पिता ने उनका दाखिला स्कूल में कराया तो था, लेकिन पेड़ों की छांव में पढ़ते समय भी अमरनाथ के दिमाग में खेती ही गूंजती रहती थी। पुराने दिन की वे यादें आज भी वे भूले नहीं है। अमरनाथ बचपन से ही अपने पिता के साथ खेतों पर जाते थे। उन्होंने देखा कि किसान किस तरह खेतों में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जितनी मेहनत वो करता है उसके मुकाबले किसानों को मजदूरी तक नसीब नहीं होती है। इसी कारण अमरनाथ ने कई जगह नौकरी भी की, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ खास तरक्की नहीं मिली। आखिरकार अमरनाथ ने खेती को चुना और इसमें लगातार मेहनत करने लगे। वो दिन रात खेतों पर काम करते, बुआई बिजाई से लेकर कटाई तक सारे काम वे खुद ही करते हैं। काम करने की लगन और हमेशा कुछ नया करने की जिद ने अमरनाथ के लिए नए रास्ते बनाने शुरू कर दिए। उन्हें कहीं से पता चला कि सरकार किसानों के लिए अनेक सुविधाएं और ऋण मुहैया कराती है, तो बस फिर क्या था, अमरनाथ ने सरकार से खेती करने के लिए ऋण लेकर अपने काम को आगे बढ़ाया। उन पैसों से ट्रैक्टर खरीदा, धान काटने की मशीन खरीदी। सरकार की तरफ से मिली इन सुविधाओं से खेती से काफी मदद मिली। इन सभी मिली सुविधाओं से अमरनाथ की समझ भी बढ़ी। उन्हें ये समझ आने लगा कि परंपरागत खेती को छोड़ नई तकनीकों को अपनाकर ही किसान खेती में सफलता हासिल कर सकता है। लिहाजा वे नई तकनीकों के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने लगे। अमरनाथ ने अनेक राज्यों के सेमिनारों में शिरकत की और वहाँ अपने फसलों का प्रदर्शन किया और उसके लिए अमरनाथ को इनाम भी मिला। अमरनाथ खेती से जुड़ी बारीकियों और नई तकनीकों को जानने के लिए शहरों के चक्कर भी लगाते थे। इसी बीच उनका नासिक जाना हुआ था। वहाँ जाकर उन्होंने उन्नत किस्म के प्याज की उपज के विषय में विस्तार से जानकारी इकट्ठी की। उन्होंने प्याज की खेती करनी शुरू कर दी और उसमें उन्हें अपार सफलता भी मिली। सेमिनारों में उनके प्याज को खूब सराहा गया और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। अमरनाथ ने फसल चक्र को अपनाया। उन्होंने एक साथ कई फसलें लेनी शुरू की। प्याज के साथ गन्ना और चना भी लगाया, जिससे उनकी आय में भारी इजाफा हुआ और प्रगति के नए रास्ते भी खुलते गए। गरीबी के साए में पले बढ़े अमरनाथ आज अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बलबूते आज सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं।
0: ये पूरा प्राकृतिक है। अधिक जानकारी के लिए
2: बता दें आपको कि हमारी जो सरकार है वो आपकी उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, कई अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम है कृषि अवसंरचना कोष। इस कोष का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, हमारे किसानों को यानी कि आप लोगों को इससे किस तरह का लाभ मिल सकता है, जानने के लिए आइए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट पर।
4: लेकिन साथियों, उनकी बातचीत को सुनने से पहले सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपना रेडियो आपनी।

0: अवसंरचना कोष केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बनाई गई एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद कृषि अवसंरचना प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए माध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना, उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन उपलब्ध करना, लिए गए ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारित तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनिटिक मानदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 यानी 10 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स पात्र हैं। ये ऋण 4 वर्षों में वितरित करने का लक्ष्य है। कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म सभी योग्य संस्थाओं को ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन से पहले अलग अलग बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऋण दरों के बीच तुलना करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं।
1: किसान भाइयों बहनों, अथर्ववेद में लिखा है कि ये धरती हमारी माँ है और हम सभी इसके पुत्र हैं। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, वैसे ही ये धरती भी हम इंसानों का पेट भरती है अपनी उपज से। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा उपज मिले, इसके लिए हमने क्या किया? रासायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया, जिससे हमारे देश की मिट्टी बीमार हो गई। अब हमारा दायित्व है कि हम इसे स्वस्थ बनाएं। कैसे? प्राकृतिक खेती को अपनाकर। आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं।
2: रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है, जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें दो तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद दो तरह से बन सकती है, मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खासतौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उपयोजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और महत्वपूर्ण योजनाएं साथ साथ में हमारे सफल किसान की कहानी और साथ साथ में पॉली हाउस में किस तरीके से हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं उसके बारे में हमने जाना, समझा और सोचा। साथियों, हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अब समझ गए होंगे कि आपके लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है और साथ साथ में योजना पर भी काम कर रहे हैं। और साथियों, यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए हो तो केवीके अपना झाबुआ में बना हुआ है, वहां पर संबंधित जो वैज्ञानिक रहते हैं उनसे परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि पॉली हाउस की योजना में भी अनुदान दिया जाता है, तो किस तरीके से लाभ लेना है उससे संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में नई पद्धति से नए बीजों का चयन और किस तरीके से जैविक पद्धति से हम खेती करना चाहते हैं, किस तरीके से बागवानी लगाना चाहते हैं, तो आप संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। कि हमें आशा है कि हमारे किसान साथी इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और हम कोशिश करते रहेंगे कि किसान साथियों को वो सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी है। एक बार फिर से आपको हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, अपना ख्याल रखें, पशुओं का भी विशेष तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ऐसे में पशुओं को बार बार पानी पिलाएं, साथ में उनको शरीर पर ठंडक बनाए रखें, नहलाएं उनको, नदी यदि आसपास है तो वहां पर नदी में भी नहला सकते हैं, साथ साथ में मेड़ बंधान पर विशेष तौर पर ध्यान दे सकते हैं हमारे किसान साथी। और साथ साथ में एक हम उम्मीद करेंगे कि इन कार्यक्रमों को सुनकर हम हमारे किसान साथी अपने जीवन में, अपनी खेती में जरूर बदलाव करेंगे। और साथ साथ में एक बातचीत और फिर से दोहराना चाहते हैं कि जिन किसान साथी जो खेत पर काम कर रहे हैं वो विशेष तौर पर अपना जरूर ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बार बार पानी पीते रहें, साथ साथ में तौलिया या गमछा अपने सर पे डाल के रखें जिससे आपको धूप ना लगे, और ज्यादा मेहनत ना करें, समय समय पर रेस्ट लेते रहें और अपना काम करते रहें। तो ये जानकारी जो आपको उपलब्ध कराई जा रही है वो आपको बता देना चाहते हैं, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको दी जा रही है। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। फोन नंबर है हमारा 94 25 41 36 03 यानी 9425413603 इस नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि समय, समाज और सोच के रंग समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी आवाज जो पत्रकारिता से लेकर साहित्य तक समाज के गहरे पहलुओं को लिखती है, समझती है और उन्हें समझाती है। 20 साल से ज्यादा सक्रिय पत्रकार, लेखिका, पब्लिक स्पीकर और जिनकी नई कहानियों की किताब बवालिस्तान हाल ही में प्रकाशित हुई है। तो आइए दोस्तों, हम दिल से स्वागत करते हैं तस्नीम सिद्दीकी जी का। तस्नीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की जिंदगी के रंग गीतों के संग पर।
1: बेहद शुक्रिया, बेहद आभार।
0: तस्नीम जी, हम आपकी जर्नी से शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं। आप डीडवाना से जयपुर तक का जो सफर आपने तय किया है, एक छोटे से शहर की लड़की से एक नेशनल लेवल पर पहचाने जाने वाली लेखिका हैं आज आप। तो अगर आप अपनी खुद की जर्नी को कोई एक शब्द, कोई एक पंक्ति या कोई एक कविता में बयां करें तो वो क्या होगा और क्यों?
1: वो एक पंक्ति है कि सपने जो है उनके लिए मेहनत, सपनों के लिए मेहनत। तो सपने देखना जरूरी हर किसी के लिए, क्योंकि सपने जो है वो दिशा तय करते हैं। तो मैंने जो सपना देखा उसने मेरी दिशा तय की, और उस दिशा पर चलने के लिए मैंने मेहनत की। ऑब्वियसली मेहनत के बिना, सभी ने कहा है, सभी बड़े लोगों ने कहा है, पहले कहते रहे आगे भी कहेंगे कि मेहनत के का कोई कुछ और, मेहनत के सिवा आपको कुछ और नहीं है जो बना सके।
0: बिल्कुल,
1: मेहनत ही सब कुछ है। तो सपनों के लिए मेहनत करना, यही मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी पर रहा, प्राथमिकता पर रहा कि मैं सपने देखूं। एक सपना पूरा किया मैंने, दूसरा देखा, फिर तीसरा देखा, और उनके लिए मेहनत। तो उनसे मुझे दिशा मिलती गई, और दिशा जब आपको मिलती है तो आपका फोकस बढ़ जाता है, आपका आप पैशनेट हो जाते हैं उस चीज के लिए जब दिशा मिल जाती है। तो बिल्कुल, आप सपने देखिए, उसके लिए दिशा तय कीजिए और उस दिशा के लिए मेहनत कीजिए, आप मंजिल तक पहुंचेंगे। और मंजिलें जो होती है वो एक नहीं होती है, मुझे लगता है फिर आप आगे बढ़ने का सोचते हो। तो एक, जब आप एक सफर पूरा करते हो तभी आप दूसरा शुरू कर पाओगे। तो जरूरी है कि ये जो है बना रहे कंटिन्यूटी में पूरी जिंदगी भर, कि आप सपने देखते जाओ, पूरे करते जाओ उनको, और अपने ही नहीं, इस पूरी दुनिया के लिए हम काम करते रहे, अपने समाज के लिए काम करते रहे। तो जब हमारा फोकस बड़ा होता है, जब हमारा जो मोटिवेशन है उसके लिए एक बड़ा फलक होता है, तो वहां काम करने का एक अपना ही मजा है, और वो वहां आपको लगता है कि आप जिंदगी के प्रति एक ग्रेटिट्यूड की उस अवस्था में आ चुके हैं, जो आपके जीवन के नजरिए को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो सपने और मेहनत, उसके लिए जुनून, उस ग्रेटिट्यूड, यही सब कुछ है जो मुझे लगता है कि किसी को कुछ भी बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत दिशा देने वाला जवाब था आपका, और सही है कि दिशा से ही दशा बदलती है जैसे कि हम जानते हैं। और जितना बड़ा आप सोचेंगे, जितना खुल के आप सोचेंगे, उतनी उड़ान शायद आपके जीवन में हो सकती है। तो बहुत ही इंस्पायरिंग और दिशा देने वाला जवाब। आगे चलते हैं आपकी कहानियों के बारे में। जैसे कि आपने हमें बताया, अक्सर जो थीम होती है वो परिवार, समाज, धर्म, राजनीति, इन पहलुओं को एक साथ लाके उनको लाइट में लाना और उन्हें एक बड़े स्तर पे दिखाना और उन्हें अपनी लेखन में उनको उनकी सच्चाई को झलकाना आपके लेखन में हमेशा देखा गया है, ये एक थीम रही है आपकी। तो ये जो थीम्स हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो, परिवार हो, ये आप खुद से कॉन्शियसली चुनती हैं या समय और समाज खुद आपकी कलम को डायरेक्शंस देते हैं?
1: देखिए, कलम को डायरेक्शन ही मिलता है अपने आप पहले से प्लान्ड जो है वो लेखन में कुछ नहीं कर सकते। लेखन कभी भी प्लान्ड नहीं हो सकता कि प्लानिंग के साथ में आप कुछ रच रहे हैं। हाँ, सडनली आपके सामने कोई किरदार आता है, कोई इस तरह की परिस्थिति आती है कि उसे दर्ज कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये एक बेचैनी होती है, और मुझे लगता है किसी के पास भी ये बेचैनी है तो ब्लेसिंग्स है कि कुछ चीजें जो या परिस्थितियां जो है, या हम देखते हैं कि रूढ़िवादिताएं जो है वो परंपराओं की आड़ में आज भी चली आ रही है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर उन्हें देखकर आप बेचैन होते हो और बदल देने के लिए आपको नींद नहीं आती कि मुझे ये सब बदलना है, कहां से बदलूं, कोई सिरा नहीं मिल रहा और आपको नींद नहीं आ, ये सारी चीजें देखें, या कोई और भी परिस्थिति होती है कि हम दूसरों की पीड़ाओं से जो है वो

0: परेशान हो जाते हैं, हम सो नहीं पाते, तो ये सब ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग मैं इसलिए मानती हूँ इनसे कि यहाँ से आपके अंदर बदलाव की बेचैनी शुरू होती है। और बदलाव हाँ ठीक है कि एक अकेला जो है बहुत नहीं बदल सकता, लेकिन कुछ तो बदल सकता है। और कुछ कुछ बदलना जो है वो बेहद जरूरी है कि हम अपने जीवन में जीवन जीकर जब जाएं तो ये जरूर छोड़कर जाएं कि हमने कोई एक रूढ़ी थी, एक गलत था कुछ जिसको हमने ठीक किया, और वो ठीक सिर्फ खुद के लिए नहीं किया, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए किया। तो लेखन को भी मैं यही मानती हूँ कि जब आप बेचैन होते हो, आपकी पीड़ाएं होती है, दूसरों की पीड़ाएं आपके अंदर उतरने लगती है, आप वही हो जाते हो जिन्हें आप देखते हो, तो उनको दर्ज कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और दर्ज के बिना चैन नहीं पड़ता, तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। और मैं उन बेचैनियों का एक सिरा ढूंढती थी जो कि पत्रकारिता में पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पत्रकारिता की जो स्टोरीज हैं जो हम अखबार में देते हैं तो वो 200 शब्द 250 शब्द, इनमें आप वो सब नहीं कह सकते जो आप देख रहे हैं, जो समाज के लिए कहना जरूरी है। उस आखिरी व्यक्ति जो गांधी कहते थे, आखिरी व्यक्ति जो उसकी बात ऊपर तक पहुंचना जरूरी है सत्ता तक, तो उस आवाज के लिए वो काफी नहीं था। तो मुझे जब मैं ये सब कुछ ढूंढ रही थी तो ढूंढते ढूंढते अचानक इत्तफाकन में लेखन की ओर बढ़ी, और लेखन की ओर बढ़ी तो बिल्कुल वो एक दिशा मुझे मिल गई वहां पर। और उसके बाद मैंने जब लिखना शुरू किया तो यही सब होता है कि जब आप बदलने की चाह होते हो तो वो आप खुद से शुरुआत करते हैं, और खुद से का मतलब होता है आपके परिवार, आपका समाज, आपकी गली, आपका मोहल्ला, आपका शहर, और आपका गांव, कस्बा से शहर या और भी जो आपके आसपास चीजें हैं आप वहां से शुरू करते हैं। तो बिल्कुल ये परिवार, समाज, ये सभी जगह एक से हैं, ये आप देखेंगे कहानियों में तो रिलेट कर पाएंगे कि हाँ हम भी ऐसे ही समाज में जी रहे हैं। क्योंकि जो जिन चीज समाज की या परिवारों की बात मैंने अपनी कहानियों में की है वो पूरा भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहां सिर्फ एक धर्म या एक घर या एक परिवार की बात नहीं है, वो पूरा भारतीय समाज जहां पर हम कई सारी रूढ़िवादिताओं को आज भी परंपराओं की तरह हो रहे हैं, ढोते जा रहे हैं, और बहुत सारी कमी है। और राजनीति की मैं बात करूं तो राजनीति हम पर डायरेक्ट इम्पैक्ट ना डाले, लेकिन राजनीति का बहुत बड़ा असर हमारी निजी जिंदगियों पर होता है। और आज का युवा मेरे ख्याल में बेहतर समझता है, हम लोगों की पीढ़ी से ज्यादा बेहतर समझता है कि राजनीति जो है वो आपको पूरी तरह से जो है एक पूरे परिवार को, आप मान लीजिए एक परिवार है उसको पूरी तरह से प्रभावित करती है। वो चाहे उनके घर का बजट हो, चाहे उनके घर के विचार हो, चाहे उनको नौकरियों की बात हो, पढ़ाई की बात हो, राजनीति जो है वो बहुत बड़ा प्रभाव जो है रखती है हर परिवार में या हर व्यक्ति के जीवन में। तो उस राजनीति के लिए चेतना कितनी होनी चाहिए हम सभी में, तो उस चेतना के ऊपर कितना काम होना चाहिए, वो उसको के मैंने सोचा कि इसकी बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी काम है। और कहानियों में ये चीजें आनी चाहिए और पहले भी आती रही है। राजनीति पर बहुत सारे राजनीति को लेकर उपन्यास गए हैं, तो मनु भंडारी ने भी इसके ऊपर महाभोज एक बहुत बड़ा राजनीतिक उपन्यास है वो लिखा है, और इसी तरह बहुत सारा कुछ लिखा गया। तो राजनीति जो है हमारी चेतना में आनी चाहिए, जैसे कि हमारी आदत में होता है कि एक हिंदी का स्टूडेंट है वो हिंदी के सारे जो है सब कुछ सॉल्व कर देगा, मैथ्स का स्टूडेंट मैथ्स के, लेकिन उन सभी में जो एक सा होना चाहिए वो राजनीतिक चेतना होनी चाहिए। उनको पढ़ना आता है, लिखना आता है, नौकरी पाना आता है, लेकिन राजनीति उनको क्या प्रभावित कर रही है उसको वो इग्नोर कर जाते हैं, जबकि इग्नोर करने की वो चीज नहीं है। तो हाँ, मुझे ये लगता है साहित्य में ये हमेशा चीज मौजूद रहनी चाहिए, और बहुत हल्की, बहुत ही मैं कहूंगी कि बहुत ही नाजुक मिजाज के साथ या इस तरह से आनी चाहिए कि ये तो हमारे बीच ही मौजूद है, बहुत अलग से नहीं आनी चाहिए। तो बिल्कुल जहां जिंदगी है वहां पर राजनीति भी है, प्रेम भी है, नफरत भी है, हर चीज है। तो मैंने राजनीति से कभी परहेज नहीं किया, खुद ने अपने जीवन में भी नहीं किया, इसलिए मैंने कहानियों में भी कभी नहीं किया।
1: बहुत ही तजुर्बे का समावेश था आपका जवाब। आपने कितनी एक तजुर्बे से लेड जीवन जिया है, भरा हुआ आपका कहीं ना कहीं आपके अनुभव हैं जो आपके एक्सपीरियंस में और आपके यू नो कलम में उतर के आते हैं। और जैसे कि आपने एक बहुत खूबसूरत लाइन कही कि आपकी बेचैनियों को सिरा मिलता है लिखने से, तो वो बहुत ही खूबसूरत एक मेरे जहन में रहेगी बात। और थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए तस्नीम जी। इसी बात से हम आगे चलते हैं और हमारे पहले गीत की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी समझ को समझने के लिए खुद से सवाल करना पड़ता है, कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक तस्नीम जी। हम आगे चलते हैं। आपने हमें बताया कि जो आपका उपन्यास था ए मेरे रहनुमा, ये सिर्फ प्रकाशित ही नहीं हुआ बल्कि इस पर पीएचडी और एमफिल भी की गई। तो जब कोई रचना एकेडमिक स्टडी का हिस्सा बनती है तो आपको लेखिका के रूप में आपको क्या अनुभव होता है, क्या अंदर चल रहा होता है, किस तरह से आपको वो चीज आप अप्रोच करते हैं और कैसे वो आपको चेंज करता है, इसके बारे में अगर कुछ बताएं।
1: चेंजिंग के बारे में मैं सबसे पहले आपको कहूंगी कि एक जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है जिम्मेदारी कि आपको आगे जो भी लिखना है और भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ लिखना है। तो ये सबसे पहले तो जिम्मेदारी देता है खुशी से भी ज्यादा, और बेशक खुशी जो होती है कि आपने काम किया है उसको रिकग्नाइजेशन मिल रहा है। तो मैं हैरान थी सबसे पहली बात तो कि इस उपन्यास के प्रोसेस से लेकर और इसके आगे बढ़ने तक मैं हर कदम पर हैरान हुई हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बेचैनियां थी मेरे अंदर कुछ बदलने की। तो मैंने ये उपन्यास मैंने लिखा और उसी समय भारतीय ज्ञानपीठ जो है बहुत लोग जानते हैं बहुत भारतीय ज्ञानपीठ के बारे में, कि भारतीय ज्ञानपीठ से पुस्तक का आना और भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से युवा जो पुरस्कार वो देते हैं उसमें रिकमेंडेशन मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हिंदी युवा साहित्यकारों के लिए। तो मैंने जब पहला उपन्यास लिखा उसी समय भारतीय ज्ञानपीठ ने विज्ञप्ति जारी की थी और उपन्यास मांगे थे और उसी वक्त मैं लिख ही रही थी। तो मैंने चुपचाप से भारतीय ज्ञानपीठ के एड्रेस पे उसको पोस्ट कर दिया और अचानक 2 महीने बाद मेरे पास कॉल आता है और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने सिर्फ काम किया और मुझे लगा कि ना, मैं हमेशा सोचती हूँ कि ना तो होता ही है लेकिन हो सकता है कि हाँ भी हो जाए, तो ना तो मैं पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी होती हूँ तो हो सकता है कि हाँ हो जाए। तो उसके लिए उसी लिए मैंने उसको भेजा और 2 महीने बाद जब कॉल आता है तो मैं हैरान होती हूँ कि वो भारतीय ज्ञानपीठ की 11वीं नवलेखन प्रतियोगिता के लिए चयनित हो जाता है 2015 की। तो मैं हैरान थी कि मैं हमेशा किताबें पढ़ती रही, मैं पाठक रही, किताबों के साथ सोने से पहले किताबें पढ़ना, लिटरेचर ये सब पढ़ना मेरी हमेशा की आदतों में रहा और मैं उनसे बहुत प्रभावित रही। मेरी जिंदगी जो कुछ भी मैं बन पाई या मैं जो कुछ हो पाई या जो कुछ विचार मैं ले पाई जीवन के लिए वो सब पढ़ने की देन है। जितना मैंने पढ़ा उसी ने मुझे दिया, पढ़ने ने मुझे बहुत कुछ दिया और जो कुछ हूँ उस पढ़ने की वजह से हूँ। तो मुझे ये लगा कि मैं आज तक पढ़ती रही, अब लोग मेरी किताब पढ़ेंगे तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा, अब हो सकता है बहुत छोटा हो किसी के लिए लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि इस सपने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था और मेरी जिंदगी 360 डिग्री पर मुड़ जाती है इस हादसे के बाद में, जो खूबसूरत सा ऐसी घटना मेरे साथ जो घटी। तो भारतीय ज्ञानपीठ अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है, उसकी किताबें दूर तक पहुंचती हैं। उसी तरह से अचानक एक दिन मेरे पास कॉल आया कि मैम मैं भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी से बोल रही हूँ और आपके से मैं पीएचडी करना शुरू कर रही हूँ,
0: बताओ
1: आप। तो फिर मैं फिर हैरान थी, मैंने कहा अच्छा
0: बिल्कुल।
1: और एक जो आत्मसंचय है वो उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मैं चाहे आत्मसंचय को छोड़ना चाहूँ लेकिन आत्मसंचय ने मुझे नहीं छोड़ा, तो अच्छा है कि वो मेरी लगाम पकड़ के रखता है।
0: वो कभी
1: मुझे ये कहने नहीं देता कि मैंने बहुत अच्छा काम किया और अच्छा है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। ये लोग बताएंगे या अगर मैं लेखक हूँ तो पाठक बताएंगे कि वाकई में कुछ ठीक किया है या नहीं किया है। तो उस आत्मसंचय में थी कि क्या ये वाकई में पीएचडी हो रही है, मेरी किताब से पीएचडी हो रही है। प्रोड्यूसर का भी मुंबई से कॉल आया, हालांकि उनके बात नहीं बनी क्योंकि वो क्यों, मैं नई थी, मेरा पहला उपन्यास था। तो वहाँ लोग सोचते हैं कि सीरियल बनाएंगे और सिर्फ नाम दे देंगे, इतना ही काफी होता है। बट मैं इन सब चीजों के, मैंने जैसे कि कहा कि मैं राजनीतिक तौर पर बिल्कुल मेरी चेतना रही, तो ये भी उसी में आता है। तो मैंने अपने यहाँ भी मैं बिल्कुल मेरी चेतना के साथ मैंने उनको मना किया। मैं इस लालच में कभी नहीं आई कि मेरा नाम आएगा टीवी पे, मैंने उनको बिल्कुल मना किया। क्यों? क्योंकि वो ये पूरा एक प्रोफेशनल माइंडसेट होता है, तो बिल्कुल मैंने भी प्रोफेशनल माइंडसेट रखा। तो उनको नहीं पसंद आया कि आप तो पहली हो, आपको हम नाम दे रहे हैं,
0: इतना काफी होना चाहिए,
1: जितने आप प्रोफेशनल हो मैं उतनी प्रोफेशनल होकर ही आपको सहारी दे पाऊंगी, और आज तक मैंने नहीं दी।
0: बहुत ही
1: वो भी मेरे लिए हैरानी की बात थी कि उस उपन्यास के लिए मेरे पास फोन आ रहा है कि उस पे सीरियल बनाना चाह रहे हैं लोग, तो वो भी मेरे लिए बहुत हैरानी की। मैंने नहीं दिया वो, मैं अपने उसूलों पर रहती हूँ, मैंने नहीं दिया
0: बिल्कुल।
1: तो लेकिन वो भी मेरे लिए हैरानी की, तो एक के बाद एक हैरानी की बात वहां पर सामने आ रही थी, और बिल्कुल मैं संशय में थी, और आज भी मैं संशय में रहती हूँ। जैसे ही मेरा कोई नई किताब आती है मैं डरती हूँ।
0: वो बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं, वो पॉजिटिव स्ट्रेस।
1: आप समझे कि मैं कई महीनों तक डरती हूँ ये किस तरह से लिया जाएगा, जबकि लगातार लोगों के, हाल ही में मेरी नई किताब आई है बवालिस्तान, लगातार लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, हर तरफ उसकी चर्चा हो रही है, लोग समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको जैसे ही वो प्रकाशित हुई मेरे अंदर एक डर आता है, और ये डर हमेशा होना चाहिए, क्योंकि आप एक, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है इस समाज को सर्व करने की, तो आप क्या सर्व करने जा रहे हो?
0: बिल्कुल, और तो किस लेवल तक वो जाता है, स्पेशली एकेडमिक जब वो स्टडी का हिस्सा बनता है,
1: वो आपने लिखा है
0: वो आर्काइव्स में रहता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो एक रिपोजिटरी है आपके काम की।
1: जिम्मेदारी आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में बिल्कुल सब कुछ लगा देना चाहिए, लेकिन डरना भी चाहिए कि क्या आपने वो जिम्मेदारी पूरी की है या नहीं की है। तो बिल्कुल मैं, हालांकि बाकी चीजों से जो परंपराएं, लोग, समाज क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, ये तो मुझे बचपन में भी फर्क नहीं पड़ता था, और मैं चाहती हूँ कि किसी को भी ना पड़े, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लेकिन अपने जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, जीवन की एक दिशा होनी चाहिए। लोग ये कहते हैं कि जिंदगी एक बार ही मिलती है, उसमें मजे करो। नहीं, मैं ये कहती हूँ जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो कुछ काम करके जाएं हम इस दुनिया के लिए, समाज के लिए, चाहे अपने परिवार के लिए, गली के लिए, मोहल्ले के लिए, सभी के लिए जीना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सभी के लिए मतलब अपने आपके आसपास जितने लोग हैं उनको आपको वापस सर्व करना जरूरी है, तो आप धीरे धीरे देश के लिए, और फिर एक वैश्विक नागरिक होने के नाते, मैं खुद को वैश्विक नागरिक मानती हूँ, तो वैश्विक नागरिक होने के नाते हम इस विश्व में क्या कुछ जरा सा जर्रे बराबर क्या कर सकते हैं। तो मैं अपनी कहानियों के जरिए या अपने उपन्यासों के जरिए, अपने लेखन के जरिए, मैं वो सब कुछ सर्व करना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या गलत है, मुझे गलत को गलत कहना है, उसके बारे में मैं कभी नहीं डरती, मैं उसके लिए कभी नहीं सोचती। जहाँ मेरा प्रतिरोध है वहाँ मैं प्रतिरोध करती हूँ, और ये सारी चीजें मुझे बचपन से, जब मैं डिबेटर रही और डिबेट के दौरान जो आप पढ़ते हो, आप अच्छा डिबेट
0: तैयारी करते हो,
1: एक कल्चर होता है कि आप बीच बीच में जो है दुष्यंत जो
0: कभी
1: उनके लाइंस पढ़ते हो,
0: कोट करते हो,
1: कोट करते हो रामधारी सिंह, तुम रामधारी सिंह दिनकर को हम अक्सर कोट करते थे कि समर शेख है नहीं पाप का भागी केवल व्याज, जो तटस्थ है समर लिखेगा उसका भी अपराध। तो जब इन लाइनों को मैंने समझा,
0: जीवन में उतारा,
1: उस दिन से मैंने तटस्थ होना बंद कर दिया। जिस दिन मैंने इनको समझा उस दिन से मैंने तटस्थ होना बिल्कुल बंद कर दिया। आपका विचार हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आप पीड़ित की तरफ हो,
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: जो शोषक हैं उनकी ओर नहीं हो, आप शोषितों की तरफ हो। तो ये मैं हमेशा से क्लियर रही हूँ। तो बस यही रहता है कि एक प्रतिरोध हो जो कि गलत हो रहा है, उसके प्रति प्रतिरोध हमेशा आपकी बातों में, आपके करने में, सब में हो, क्योंकि प्रतिरोध के बाद ही आप दुनिया खूबसूरत बना सकते हैं, जहां वंचित, शोषित और शोषक हैं उन सबको एक बराबरी पर लाने का कम से कम हम सपना देख सकते हैं। तो बड़ी जो है वो जिम्मेदारियां आप पर होती है, और आपको बड़ा ही सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, हम ग्लोबल सिटीजन्स हैं और हमारी कुछ जिम्मेदारी है। अगर हम इस ह्यूमन योनी में ले आए हैं, जन्म लिया है, तो जीवन एक बार ही मिलता है, सच है। बट अगर उसको सुंदरता से जिए, उसमें कुछ लेगेसी छोड़ के जाए चेंज की, अपने थॉट्स की, अपने कलम की, या अपने किसी भी एक सोच की, अपने खुद के पर्सपेक्टिव की, कम से कम एक पर्सपेक्टिव खुद का तो हो, वो तो बनाएं, चाहे आप लेखन करें नहीं करें, बट एटलीस्ट एक साइड तो रखें अपने लिए, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह तो जिए। तो बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी जर्नी रही है मैम, और जैसे बोलते हैं कि लेखन में पर्सनल से शुरुआत होती है, आप अपने आसपास की चीजें देख के लिखना शुरू करते हैं, बट पर्सनल से इम्पर्सनल जाना और समाज से जुड़ना और फिर उसमें बदलाव लाने की कोशिश करना, उसको एकेडमिक्स तक लेके जाना, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और बहुत बड़ी एक अचीवमेंट भी है जो आपने बहुत खूबसूरती से निभाया है। अब आगे चलते हैं, मेरा नेक्स्ट सवाल जो मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मैं बहुत सोचती हूँ इस सवाल के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके इतने 2 दशकों का जो एक्सपीरियंस है लेखन का, पत्रकारिता का, तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो आज की अधपकी सभ्यता है जिसमें हम जी रहे हैं, जहां हम ना इधर हैं ना उधर हैं, जहां हम ना परंपरा में हैं ना पूरी तरह मॉडर्न हैं, तो आपके नजरिए से ये जो बीच की अवस्था है जिसमें हम फंसे हुए हैं, ये सबसे ज्यादा असर किस पर डाल रही है और इस दौर में साहित्य का क्या दायित्व है?
1: देखिए, साहित्य का तो बहुत बड़ा दायित्व हर युग में बनता है, उस युग को दर्ज करना और उसमें जो व्याधियां हैं, उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो हम ठीक कर सकते हैं या ठीक होना चाहिए, जिनके लिए हम लड़ सकते हैं, तो वो चीजें समाज के सामने ज्यों का त्यों रख देना साहित्य की जिम्मेदारियों में आता है, बड़ी जिम्मेदारी में आता है। और जो हम मॉडर्नाइजेशन के बारे में या परिक छवियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसे लेकर मुझे लगता है कि किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन जो है वो विज्ञान को अपनाता है। तो बिल्कुल बहुत सिंपली है कि कपड़ों से मॉडर्नाइजेशन नहीं आता, आपके घर से, आपके पैसे से, इन सब से मॉडर्नाइजेशन नहीं आता है। आप एक आपका एजुकेशन लेवल, आपका विचारों का लेवल कहाँ तक गया है, वो वैश्विक स्तर पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, या सिर्फ आप गली मोहल्ले की राजनीति में ही है, तो ये जो थॉट है, आपके विचार हैं, वो बताते हैं कि आप मॉडर्न हुए हो नहीं हुए हो। आपने जो पुरानी रीतियां, जो किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर वो दुखदायी है, अगर आपने उन चीजों को नहीं छोड़ा है, तो फिर आप मॉडर्न नहीं हो और आप परंपरावादी भी नहीं हो, क्योंकि परंपराएं जो है वो किसी को परेशान करने के लिए कभी भी नहीं थी। हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं, भारतीय परंपराओं की हम बात करते हैं, वहां तो हर जीव के लिए जगह है, हर जीव को का अस्तित्व माना गया है, हर जीव के लिए जो है वो अहिंसा जो है वो मानी गई है, चाहे हम बुद्ध की बात करें, महावीर की बात करें, हम उनकी धरती से आते हैं। तो जहां पर भी गलत है, जो मनुष्य को तीज करता है, मनुष्य को हिंसा, मनुष्य पे हिंसा करती हैं, जो रूढ़ियां, जो परंपराएं जो हमने खुद ही क्रिएट कर ली हैं, तो उनको मानना ना तो परंपरा है ना मॉडर्निटी है। तो गलत को छोड़ते जाना यही मॉडर्निटी है। तो हमें ये कंफ्यूजन कभी नहीं रखना चाहिए कि हम आधुनिक हैं या पारंपरिक हैं। हाँ, ये जरूर है कि हर देश का, हर राज्य का अपनी अपनी एक अलग कल्चर होता है, तो वो कल्चर तो हमारे साथ है, तो वो पुरानापन उसको मैं नहीं कहूंगी, उस कल्चर के साथ साथ चलना, हम भारतीय हैं, हम अगर दुनिया में मैं अमेरिका या यूरोप या मैं कहीं पे भी जाऊं तो मैं यही कहलाऊंगी मैं इंडियन हूं। तो इंडियन कल्चर अगर मैं साथ लेकर चलती हूँ, इंडियन कल्चर की खूबसूरती को मैं साथ लेकर चलती हूँ, तो वो कोई पुरानापन नहीं है या अधपकी चीज नहीं है, वो पूरी तरह से इंडिया को मैं जो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ वो सब कुछ है। और आधुनिकता जो है वो विज्ञान को अपनाना है और मेरी सोच को परिष्कृत करते जाना, मेरी मतलब अपनी आपकी मेरी सभी की सोच,
0: समाज की,
1: और जो पुरानी चीज हो चुकी है उनको पुराना पीछे छोड़ते जाएं हम। और हर एक को जीने का स्पेस दें, क्योंकि जियो और जीने दो जो है वो हमारी संस्कृति से उठा हुआ नारा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो जियो और जीने दो, हर एक व्यक्ति को जीने दो, हर और खुद भी खुलकर जियो, दूसरों को खुलकर, तो ये आधुनिकता है। बिल्कुल, हम मॉडर्नाइजेशन को हमेशा पश्चिमी सभ्यता से जोड़कर देखते हैं और फिर उसको हीन भावना से देखते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ लोग ऐसे देखते हैं, अरे तुम पश्चिमी सभ्यता को मतलब अपना रहे हो, नहीं, ये पश्चिमी सभ्यता को अपनाना नहीं है। और अगर किसी भी सभ्यता को अपनाकर आप अपने समाज से गलत चीजों को, जो कि महिला खास तौर से महिलाएं जिन रूढ़ियों को झेल रही हैं आज भी, अगर वो उससे आजाद होती है, तो मैं कहती हूँ कि वो पश्चिमी सभ्यता भी आनी चाहिए। अगर हम उससे आजाद, हिंसाओं से आजाद हो रहे हैं, चाहे वो मानसिक हिंसा हो, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो, वो किसी भी तरह की इमोशनल, जो आजकल तो इमोशनल हिंसा का भी एक रूप होने लगा है,
0: तो बहुत बड़ा रूप है इमोशनल हिंसा। जी जी,
1: तो भावनात्मक हिंसा जिसे हम कहते हैं, तो इन सब हिंसाओं से जो सभ्यता निजात दिलाती है, हम उसी को अपनाएं।
0: सच कहना,
1: उसमें कोई गलत नहीं है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर हम लेकिन मॉडर्नाइजेशन को सिर्फ कपड़ों तक अपना सीमित कर लेना, अच्छी चीज, अच्छा खाना, अच्छा हमारा घर अच्छा है, हमारा रहना सहना आपके आपके जीवन स्तर से नहीं है। मॉडर्नाइजेशन जो है आपके जीवन स्तर से कतई नहीं आता है। सबसे जो मैं बार बार कह रही हूँ कि सबसे बड़ा जो इसमें पॉइंट है वो है वैज्ञानिक सोच का। आपकी सोच कितनी वैज्ञानिक हुई है, आप वैज्ञानिक चेतना कितनी है। जैसे अभी हमने राजनीतिक चेतना की बात की, तो अब किसी के भी जीवन में जो सबसे जरूरी है वो वैज्ञानिक चेतना है। वैज्ञानिक चेतना जो है वो ईमानदार जीवन की तरफ हमारा कदम बढ़ाती है। तो बिल्कुल हम विज्ञान की तरह सोचें और उसी से हम आधुनिक कहलाएंगे। और विज्ञान की तरह सोचने से मेरा मतलब नहीं है हमें वैज्ञानिक बनना है, लेकिन साइंटिफिकली जो सोच है, वैज्ञानिक सोच पर कई संगठन जो है वो काम कर रहे हैं। कि आप रूढ़, जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को बुखार है और हम ही खबर लगाते हैं, मैं पत्रकार हूँ, मैं बहुत बड़े मीडिया हाउस से जुड़ी हुई हूँ, और हमें खबर लगाते हैं कि एक 5 साल के बच्चे को बुखार हुआ, उसको उसकी माँ जो है किसी बाबा के पास ले गई, उसने उसको पेट को दाग दिया, उस बच्चे की मौत हो जाती है, या ऐसा ही कुछ। तो वैज्ञानिक सोच वहाँ काम करती है,
0: बिल्कुल,
1: इन चीजों से नहीं। आपको अस्पताल लेके जाना है बच्चों को,
0: बिल्कुल,
1: आपको बच्चों को बाबाओं के पास नहीं ले जाना है। तो ये, मैं इस वैज्ञानिक सोच की बात करती हूँ, वो आधुनिकता की तरफ ले जाएगी हमें।
0: बिल्कुल, इसी साइंटिफिक टेम्पर को हम जिंदा रखें और हम परंपराओं को भी अपनाएं और साथ साथ जो समय के साथ मॉडर्न वेज है उन्हें भी अपनाएं, इसी बेबाक सोच और साथ ही साथ इसी जमीन से जुड़ी हुई सोच जो तस्नीम सिद्दीकी जी की है, उससे हम आगे चलते हैं, क्योंकि समय आगे चल रहा है और हमें समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हम चलते हैं हमारे अगले गीत की तरफ। सच को कहना आसान कभी नहीं होता, पर चुप रहना और भी मुश्किल हो जाता है। हम सुनेंगे सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है।

0: चीजें उसके अंदर है, वहीं राजनीतिक कहानियां भी है कि राजनीतिक चेतना से भरी कहानियां भी है, उनमें से एक बवालिस्तान भी है। तो इस दौर, जो मेरा दौर मैं कहूं, जिस उम्र में मैं जी रही हूं, तो मेरे दौर में क्या चीजें मैंने बदलते हुए देखी है, किस तरह से कुछ अच्छी चीजें थी वो भी हमारे बीच से छीन ली गई। जो बदलाव आया था हमारे पैदा होने के समय, उन बदलावों को फिर से रीति रिवाजों के नाम पर कैसे हमें वापस पीछे धकेला गया, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर हैं। उसके बाद में जो राजनीति ने हमारे रिश्तों पर असर डाला है, हमारे जो दिनों दिन के रिश्ते हैं, हर दिन के हैं, रोजमर्रा के हैं, और वो रिश्ते जो
1: सांझा चूल्हा की तरह
0: थे, पानी की तरह, बिल्कुल बहुत आम, बहुत आम, जैसे पानी पीना, हवा में सांस लेना,
1: चाय का कप पीना
0: जो है बहुत जरूरी है, लेकिन हम उसको कभी मेंशन नहीं करते कि मैं आज हवा में सांस ले रही हूँ।
1: जी जी,
0: तो उनको मेंशन करने की कभी जरूरत नहीं थी उन रिश्तों को, लेकिन अगर आज उनको मेंशन करने की जरूरत है तो उसका मतलब हमारे उन रिश्तों की जिंदगी जो है वो बहुत खतरे में है।
1: जी,
0: तो वो जो सुहाद्र है, जो जिसके लिए अकेला भारत है पूरे विश्व में,
1: जो पहचाना
0: वो जाना जाता है, जहाँ पर कई तरह के लोग रहते हैं, कई सारी पहचानों के लोग रहते हैं, वसुधैव
1: जो हमारा संविधान हमें देता है, जी,
0: जो संविधान ने अधिकार दिए और संविधान ने एक किया बहुत सारे अलग अलग जो पहचान के लोग हैं उनको एक किया, और वसुधैव कुटुम्बकम का नारा जो हम बिल्कुल जोर शोर से दुनिया के सामने लगाते हैं, तो वो कमजोर ना पड़ जाए।
1: बिल्कुल, कोई फेवरेट कहानी इसमें से, कोई बवालिस्तान में से कोई आपका फेवरेट एक स्टोरी जिसके बारे में, या जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें?
0: इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, जो वो सभी मेरी फेवरेट है, 15 कहानियों में से मैं किसे बताऊं, लेकिन अच्छा मैं इस कहानी के बारे में इसलिए बताऊंगी क्योंकि वो राजस्थान से रिलेटेड है, और वो ढीणे रख दे रे ढोला, तो वो ये राजस्थान, ये मारवाड़ी शब्द है ढीणे रखना, यानी बकरियां जब जानवर होते हैं, जो बकरा बकरी वगैरह, क्योंकि मैं एक कस्बे से आती हूँ, हमने बकरा बकरी वहां पर ये पशुपालन का ही ट्रेंड जो है वो वहां पर देखा।

0: चंद्रकाल में
1: बिल्कुल
0: आपका प्रेम बदलता है,
1: आप बदलते हैं तो प्रेम बदलता है,
2: बिल्कुल बदलता है,
1: पेड़ नहीं है।
2: तो उन घुमंतों के जरिए ये कहानी मैंने कही है कि उनको कितनी आजादी है प्रेम की, और खास तौर से महिलाओं की,
1: बिल्कुल
2: कि वो बिल्कुल अपने प्रेम को जो है वो इस तरह से बयान कर सकती हैं जो कि आज भी बुरा माना जाता है हमारे सो कॉल्ड मिडिल क्लास के अंदर, जो कि बहुत सभ्य या संभ्रांत सभ्य कहे हम उसको, कथित तौर पे सभ्य जो हम कहते हैं, तो वहां पर घुमंतुओं को देखिए, कि आप वहां की महिलाओं को देखिए कि उनको कितनी आजादी है, वो आजादी चाहिए, जिस आजादी की बात हम कर रहे हैं वो तो उन घुमंतुओं के पास है पहले से, जिन्हें हम आदिम प्रजातियों को राजस्थान के आदिम प्रजाति में गिने जाते हैं सारे जो घुमंतु है, कि जो सबसे आदिम है वही है, वही उन्हीं का वंश चल रहा है, तो वो जो आदिम प्रजातियां हैं वो मॉडर्न है, अगर मैं उसको आधुनिकता के तराजू में तोलूं तो वो ज्यादा मॉडर्न है हम लोगों की बजाय, और जहां पर किसी तरह की मुश्किल, वहां पर बच्चे जो होते हैं वो टोलियों के बच्चे होते हैं,
1: बिल्कुल
2: जैसे एक कपल के बच्चे नहीं कहलाते कि ये फला फला के बच्चे हैं, वो टोलियों के बच्चे कहलाते हैं, तो इतना मान सम्मान के साथ, तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो उसी पर ये कहानी है धीणे रख दे रे ढोला, कि वो किस तरह से एक महिला जो है घुमंतु, वो किस तरह से एक चरवाहे के साथ अपने प्रेम को किस तरह से कहती है, और उसमें राजस्थानी गीतों को भी मेंशन मैंने किया है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है,
1: कुछ गुनगुना सकते हैं हमारे लिए अगर आप गाते हैं तो, छोटा सा कुछ
2: से, हाँ उसी में से दो लाइनें सिर्फ
1: जी जी
2: गाऊंगी, हीर रांझ जेड़ा यार कठे, लीला मजनू जेड़ा प्यार कठे, हीर रांझ जेड़ा यार कठे, लीला मजनू जेड़ा प्यार कठे, ओ थारी मोहब्बत डीर घायल करेगी रे, ओ थारी मोहब्बत डीर घायल करेगी रे, तो
0: बहुत ही ऐसे ही गीतों की दो दो तीन तीन पंक्तियां जो है वहां पर है,
2: और बड़ी ही प्यारी सी कहानी जो भाई साहब मुझे बड़े पसंद, बहुत पसंद है, वो कहानी मेरी जीवन से बिल्कुल जुड़ी हुई कहानी है, कि उसमें जो दो दोस्त हैं अलग अलग अलग अलग धर्म से आते हैं, उन दोस्तों को आप कभी अलग नहीं कर सकते,
1: बिल्कुल
2: सोच भी नहीं सकते हैं, उनकी जिंदगी की खूबसूरती क्या है वो आप कहानी में पढ़ सकते हैं, कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप इसको कैसे तोड़ोगे, इसको कैसे अलग करोगे, और ये अलग करके आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसको, कि इमेजिन करें कि हम कि इसको कैसे हम इस कहानी में इन पात्रों को कैसे हम अलग करें, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते।
1: इससे मेरे जहन में जो हाल ही में मूवी रिलीज हुई है और बहुत इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में गई है हमारी फिल्म होम बाउंड, उसकी याद आती है।
2: बस हमारे रिश्ते बहुत बहुत खूबसूरती के साथ, मैंने जैसे कि कहा कि ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं सांस ले रही हूँ हवा में, बिल्कुल ही उतने खूबसूरत रिश्ते रहे हैं और आज भी जी रहे हैं, हल्का जो इस संस्कृति, क्योंकि बहुत ये बहु संस्कृति है, बहुआयामी संस्कृति है, तो हाँ कोई कोई सा दौर ऐसा आता है जब ये इसके ऊपर कुछ हल्के आप ये सोचिए कि बादल मंडराए या हमें लगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ये फिर उठ खड़ी होने वाली संस्कृति है।
1: सही कहा,
2: इसको खत्म नहीं किया जा सकता या इसको तोड़ा
1: नहीं जा सकता। सही कहा,
2: तो ये संस्कृति फिर उठ खड़ी होने वाली है, तो जहाँ बहुआयाम होते हैं, बहुरंग होते हैं, वहाँ कभी कभार हमें लगता है कि कुछ खिंचाव हो रहा है, लेकिन खिंचाव के बाद फिर से वो रिश्ते वैसे ही चलने लगते हैं, और मैं ये बात कहते हुए आह्लादित हूँ, मतलब खुश हूँ कि मैं कितने अच्छे रिश्तों में जी रही हूँ, और उस देश में हूँ जहाँ पे बहुत सारे रंग मैंने जिए हैं, बहुत सारे रंग में जी रही हूँ और आगे भी जीती रहूंगी, तो ये बहुत यही चीज है जो दुनिया में हमें भारतीयों को हमें अलग करती है, हम ज्यादा सौहार्दपूर्ण हैं, हम ज्यादा लिबरल हैं,
1: बिल्कुल
2: हम ज्यादा मुलायम हैं, तो ये जो मुलायम होने की जो खासियत है ये बड़ी मुझे पसंद है, और मैं चाहती हूँ कि ये हमारी चेतना में रहे, हमारी चेतना में रहे।

0: और हमारी जो चेतना है वो इसे बनाए रखे।
1: बहुत ही खूबसूरत मैम। सच में जब आवाज दिल से निकलती है, दिल के भीतर से निकलती है, दिल की गहराइयों से निकलती है, तो उसे दबाना मुश्किल हो जाता है और उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक सतरंगी जीवन को जन्म देती है। जिस तरह की बातचीत आज तस्नीम जी से हो रही है, मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहती हूँ ये बातचीत चलती रहे, बट जैसे मैंने कहा कि समय आगे चलता है और हमें समय के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, ए जिंदगी गले लगा ले।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक तस्नीम जी। हम बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल की तरफ, जो बहुत ही एक जिम्मेदारी भरा, एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि आज लिखने वाले तो बहुत हैं, पर चर्चा करने वाले और डायलॉग करने वाले लोग खत्म होते जा रहे हैं, और उसी का कहीं ना कहीं इफेक्ट और इम्पैक्ट मैं देख रही हूं कि लिखने पर भी आ रहा है। तो आज के जो यंग लिसनर्स हैं, हमारे श्रोतागण हैं, जो लिखना चाहते हैं, जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं डर है, दबाव है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस है, राजनीतिक हवा है, समाज का डर है, हर कुछ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कंफ्यूज्ड हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि आप क्या मानती हैं आपके जीवन से कलम ने आपको कितनी ताकत दी है, और कलम कितनी ताकत दे सकता है समाज को बदलने में, इसको और खूबसूरत बनाने में, और कैसे आज के यंग लेखक अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं?
1: देखिए, ये जो है, सबसे पहले तो हमें डर निकालना पड़ेगा वो समाज के लिए, क्योंकि हम उसका हिस्सा हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हम वहां से होते हैं। तो जो लोग क्या कहेंगे वाली लाइन को सबसे पहले डिलीट करना पड़ेगा। और वैसे भी अब AI जनरेशन है, जेन जी के बाद अल्फा बीटा सभी आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो ये जो लोग क्या कहेंगे वाली लाइन जो है वो डिलीट हो जाए हमारी जिंदगियों से। जब हम कुछ सबसे पहले हमें तय करना है कि हमें क्या करना है, और जब आपने तय कर लिया तो आप वो कीजिए। आपको क्यों डर होना चाहिए किसी का भी? देखिए, डर जो है वो आपको बहुत सारी जो अच्छी चीजें हैं वो नहीं करने देता है। हम जब अखबार में काम करते हैं, हमारे पास कई सारी लड़कियों के खास तौर से सवाल आते हैं कि समाज के लोग क्या कहेंगे, इस डर से मैं घर के बाहर नहीं निकलती, मैं नीचे गर्दन करके स्कूल से आती हूँ जाती हूँ, मैं क्या करूँ, फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा। इस तरह के सवाल आज भी अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि अभी तो हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। तो इस समाज को सबसे पहले आप हर मनुष्य के लिए, हम सभी मिलकर हर मनुष्य के लिए एक आसान बनाएं, इसको एक सुरक्षित समाज बनाएं कि यहाँ पर जब हम हंसें, खेलें, तेज आवाज में बात करें तो ऐसा हो कि कोई कुछ नहीं कहेगा, सभी को हमारी हंसी अच्छी लगती है, सभी को हमारा चलना अच्छा लगता है, सभी को हमारा बाहर घूमना अच्छा लगता है। तो बिल्कुल, तो सपने देखे और उनको पूरा करने के लिए कभी नहीं डरे। और लेखन ने मुझे जो निडर होना सिखाया वो लेखन ने सिखाया, और इससे पहले पढ़ने ने सिखाया। और इसमें भी ये इम्पैक्ट होता है कि आपके विचार जब परिष्कृत होते जाते हैं, आपकी सोच जब क्लियर होती जाती है, तो आप डरना छोड़ देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आपको, आपके पास में सॉल्यूशन होते हैं। जिन लोगों के पास सॉल्यूशन, देखो समस्याएं हमेशा होती है, हर एक की जिंदगी में होती है। अगर किसी को लगता है कि सिर्फ उसी के पास समस्याएं हैं तो ये उसकी गलत फहमी है, लेकिन समाधान क्या है? जिसके पास समाधान है आज वही सबसे ज्यादा खुश है।
0: बिल्कुल,
1: तो समाधान, हम समस्याओं पर बात करने की बजाय या समस्याओं पर को बताते रहने की बजाय सॉल्यूशन पे बात करें। देखिए, हम उसी दोस्त के पास जाते हैं जिसके पास सॉल्यूशन होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो हमारे पास हमारी जिंदगी के हर मसले के लिए सॉल्यूशन होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो। तो पढ़ाई, करियर, नौकरी, ये इसको मैं हमेशा प्राथमिकता से देखती हूँ, तो ये प्राथमिक हो। और लेखन का जहाँ तक है, जब आपको विचार आपके क्लियर हो जाते हैं और जब आप कुछ बदलना चाहते हो तो लिखना भी आसान हो जाता है। और विषय कुछ ऐसे हो जो जमीन से जुड़े हो, जो लोगों की पीड़ाओं से जुड़े हो, उन पीड़ाओं से जो ठीक की जा सकती हैं लेकिन लोग ठीक नहीं होने दे रहे हैं, तो उन पीड़ाओं को हम उठाएं, उनको ठीक करने का सॉल्यूशन हम ना रख सके तो कम से कम लोगों को बताएं कि ये पीड़ा है। कई लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो एक गलत
0: शोषण है, हो रहा है,
1: शोषण हो रहा है उनका, वो शोषित है, उनको पता भी नहीं होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो कम से कम हम लिखकर ये बताएं कि ये गलत है, ये शोषण है, इससे हमें खुद को आवाज उठानी चाहिए कि आप किसी के शोषण का हम शिकार ना बने।
0: बिल्कुल,
1: और लेखन के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप जो, आपका कमिटमेंट क्या है इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए, आपके आसपास के लिए, इन सब के लिए आपका कमिटमेंट क्या है, है ना? जो आपको सच दिख रहा है, जो आपको गलत दिख रहा है, गलत को गलत कहना, सच को सच कहना, ये लेखन का बेसिक है और बहुत जरूरी है। तो और जो सबसे बड़ी बात है वो कथा होनी चाहिए कि आप उसमें थोड़ा सा गल्प डाल सके, जो कहने के हम किसी से हर बात हर कोई कहता है तो अपना अलग तरीका होता है, तो कहानी कहें, एक तो निबंध होता है, एक कहानी कहना होता है, तो कहानी कहना सीखना होता है, उसके लिए एक बहुत छोटा सा काम है वो मैं बताऊंगी, वो पढ़ना होता
0: है। तो जी
1: बिल्कुल, हम अपना जो भी करियर हम बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो जब हम लेखन की ओर जाते हैं तो इसमें पढ़ने को इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो बुक्स लें, उसको पढ़ें, किसी भी जॉनर की हो सकती है वो बुक्स, किसी भी तरह की हो सकती है वो बुक, कोई एक पर्टिकुलर नहीं, तो पढ़ने को इन्वेस्टमेंट करें, पढ़ने और उसके बाद लेखन की ओर जाएं, और ये बहुत ही अच्छी जगह है जहां पर आप अपना सब कुछ कह सकते हैं, सब कुछ वहां पर जो आपने जिया या दूसरों की जिंदगी में देख रहे हैं सब कुछ कह सकते हैं, यहाँ पर कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई आपको जज नहीं करेगा।
0: बिल्कुल तस्नीम जी, बहुत ही खूबसूरत बातचीत आपसे आज रही, सिर्फ साहित्य की नहीं थी बल्कि ये समय के साथ साथ जो हमारा समाज है उसमें एक झांकने के, एक झरोके की तरह एक बातचीत थी कि हमने थोड़ा झांका हम किस समाज में रह रहे हैं, किस समय में हैं और क्या उस समय की यू नो रियलिटीज हैं, उसकी वास्तविकता है और उसका क्या वो क्या चाह रहा है हमसे कि हम किस तरह से अपने जीवन को बदलाव की तरफ लेके जाएं, कुछ समाज को दें, कुछ समाज से लें। तो बहुत ही एक सुंदर जीवन आपने जिया है जैसे कि मैंने आपसे बातचीत में समझा है, और बहुत ही खूबसूरत बातचीत रही है आपसे, और सच है कि समाज में सॉल्यूशंस ढूंढें, आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ तो नहीं बदल सकते, सब कुछ नहीं बदलेगा पर कुछ जरूर बदलेगा, तो उस कुछ को बदलने के लिए जो आप कर सकते हैं वो करें, और पढ़ना जैसे कि तस्नीम जी ने कहा कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो वो रीडिंग है, बिकॉज दोज हु रीड दे लीड। तो इसको समझें और इसको अपने जीवन में उतारें। थैंक यू सो मच तस्नीम जी आज हमारे साथ
1: के रंग
0: गीतों के संग में आने के लिए
1: जी, और आपने गीत भी मेरी पसंद के सारे यहाँ पर सुनाए, बहुत शुक्रिया उसके लिए भी।
0: जी जी, थैंक यू सो मच तस्नीम जी। तो दोस्तों, कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो समाज को समझती भी हैं, समझाती भी हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग गीतों के संग। सोचिए, पढ़िए और फिर लिखिए, क्योंकि कलम अभी भी जिंदा है।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: गई।
1: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: मैं आपका दोस्त आलोक कुलश्रेष्ठ आज एक नया प्रोग्राम लेकर आपसे मुखातिब हूं। प्रोग्राम का नाम है आलोक के साथ रूबरू। इस प्रोग्राम में हम हमारे समाज के उन लोगों से बातचीत करेंगे जिनके पास भले ही अकूत धन संपदा ना हो, लेकिन जिन्होंने अपना जीवन अपनी शर्तों पर जिया, जिन लोगों के पास भले ही सेलिब्रिटी का स्टेटस ना हो, लेकिन अपनी सोच से समाज के लिए कुछ नया करने की कोशिश की है। इन लोगों ने भीड़ के साथ चलने की बजाय अपना रास्ता अलग से बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, आज जिन मेहमान से हम रूबरू होने वाले हैं, उनको बुलाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हमारा देश जहां एक ओर विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, वही दूसरी ओर आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में हमारे समाज का ताना बाना कुछ कुछ उलझ सा गया है। इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है परिवार के सदस्यों के आपसी रिश्तों पर। जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस बदलाव से सबसे अधिक कौन प्रभावित हो रहा है? जी हाँ, हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य या हमारे बुजुर्ग। उनकी देखभाल करने के लिए आज परिवार के किसी सदस्य के पास समय नहीं है। हम सब जानते हैं बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के चलते लॉन्गेविटी बढ़ रही है, यानी कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनके साथ बात करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए परिवार में किसी के पास समय नहीं है। अधिकतर संतानें या तो विदेश में सेटल हैं या महानगरों में अपना कैरियर बनाने में व्यस्त हैं। दोस्तों, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सरकार के पास हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है, उन्होंने इस समस्या को हल करने का बीड़ा उठाया है। मेरे साथ हैं डॉक्टर पी सी जैन, जो कि टाइम बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर चेयरमैन हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यह एक बैंक के चेयरमैन हैं, लेकिन उस बैंक में पैसा या रुपए जमा नहीं होते, बल्कि समय या टाइम जमा होता है। है ना कुछ दिलचस्प, कुछ नया और यूनिक सा? डॉक्टर जैन, नमस्कार, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आलोक जी, नमस्कार।
0: चलिए जैन साहब, आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि टाइम बैंक है क्या और ऐसा क्या हुआ या वो कौन सा ट्रिगर था जिसने आपको इस कार्य करने की प्रेरणा दी?
1: आलोक जी, आपने ब्लड बैंक का नाम सुना होगा, आपने आई बैंक का नाम सुना होगा। तो बैंक से हमारे मस्तिष्क में ये आता है कि ऐसी कोई भी संस्था जहां हम कुछ जमा करते हैं। ब्लड बैंक में रक्त जमा होता है, आई बैंक में कॉर्निया जमा होता है, और जो फाइनेंशियल बैंक है उसमें धन जमा होता है
0: जी।
1: तो इसी प्रकार से ये एक बैंक है जिसमें ना तो धन जमा होता है, ना रक्त जमा होता है, ना कॉर्निया जमा होता है। इसमें वो चीज जमा होती है जिसके लिए हम कहते हैं कि उसे पकड़ के नहीं रखा जा सकता, अर्थात समय जो बहता चला जाता है उसे हमने थामने की कोशिश की है, तो हम इसमें समय को जमा करते हैं।
0: और बहुत अच्छा, और क्या हुआ ऐसा जिसने आपको ये प्रेरणा दी?
1: आपने देखा होगा कि आज सबसे ज्यादा कमी है तो समय की है, बावजूद इसके कि सबके पास पर्याप्त समय है। समय की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी समय नहीं है
0: जी। जी जी,
1: आप किसी को फोन कर लें तो वो छूटते पूछता है कि बताइए क्या काम है। अर्थात सामान्य अगर हम बात करना चाहें, मित्र से बात करना चाहें कि चलो यार थोड़ा मन हल्का करते हैं, दो घड़ी बात करते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि किसी काम से फोन किया होगा और ये स्थिति आपने देखी होगी कि कोरोना जब आया था, कोविड-19 आया था, आइसोलेशन में लोग थे जिनको कोरोना हुआ। शुरुआत का जो दौर था बड़ा डरावना था, उस समय डॉक्टर भी पूरा पीपीई किट पहन के आते थे और अलग से उनको रखा जाता था, किसी दुनिया से संपर्क नहीं रहता था, यहाँ तक कि मोबाइल भी उनके हाथ में नहीं दिए जाते थे, बाद में तो मोबाइल भी देने लग गए। लेकिन वो जो पीरियड उनका रिकवरी का पीरियड था, उसमें चूंकि वो पूरे संसार से कटे हुए थे, तो इतने त्रस्त थे, इतना भयावह स्थिति थी उनकी कि कोई मिले बात करने को। और आपने देखा होगा कि जैसे कोविड खत्म हुआ तो मेल मिलाप का दौर चल पड़ा, यानी कि बेसिकली मनुष्य मनुष्य को चाहता है, हमें

सामाजिक प्राणी है, हम अपने संग साथ के बगैर नहीं रह सकते। उनके साथ में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जो अब समाज में मूवमेंट नहीं कर सकते, जिनका आना जाना बंद हो गया। हम आप जो अभी इस स्थिति में है, शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक है, हम इतने वृद्ध भी नहीं हुए कि हम अकेले नहीं जा सके, तो हम कहीं भी फंक्शन होता है, समाज में कोई एक्टिविटी होती है, दोस्तों के यहाँ जाना है, हम चले जाते हैं। लेकिन उन बुजुर्गों का क्या जो आज ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वे घर से अकेले निकल नहीं पाते। अब वो हमेशा इस बात का प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कोई दो घड़ी उनके पास में आए, बैठे, बतियाए, उनका मन लगे इस बहाने, लेकिन किसी के पास इस चीज के लिए समय नहीं है। तो ये ऐसा पॉइंट था जिसने ये मुझे सोचने को मजबूर किया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। मेरी माता जी भी जो उस समय लगभग 92 ईयर्स की थी, 92 साल की थी, और शारीरिक रूप से इतनी समर्थ नहीं थे कि वो अकेले कहीं जा आ सके, तो उन्हें हमेशा ये रहता था कि कहीं जाना है तो बेटा तू घुमाला, चल कार में बिठा के एक चक्कर ही लगाया बाजार का, फलानी मेरी सहेली से मिला ला, या उन्होंने अपना कुछ ग्रुप बना लिया था, जो महिलाएं आती थी वो सत्संग करती थी, भजन कीर्तन करती थी।

0: लेकिन आप सोच के देखिए, ये स्थिति समाज की हमारी धीरे धीरे ऐसी होती जा रही है कि अकेलापन बढ़ता चला जा रहा है। महानगरों में बड़ी समस्या है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आपको फर्स्ट डोर नेबर के बारे में नहीं पता होता। जहां
1: जी
0: पहले हम
1: बिल्कुल।
0: कभी भी ऐसे ही घंटी बजा के चले जाते थे बिना अपॉइंटमेंट के, आज फोन करके अपॉइंटमेंट लिए बगैर अपने घनिष्ठ मित्र के पास भी जाने में संकोच होता है। और ऐसा एक समाचार एक आया, जो हमारी विश्व की नई यूनिवर्सिटी है, जिसे हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिसमें दुनिया भर का ज्ञान होता है। तो सामान्यतः इसमें इतने मैसेजेस होते हैं कि हमें डिलीट ही करने पड़ते हैं, पर कभी कभी कोई ऐसे मैसेज होते हैं या ईश्वरीय कोई कृपा होती है कि आपका ध्यान वहां अटक जाता है। ऐसा ही एक संदेश टाइम बैंक के बारे में आया था। स्विट्जरलैंड की एक स्टोरी किसी बच्चे ने साझा की थी कि वहां पे ऐसे समय बैंक चलता है, और मेरी लैंड लेडी थी, वो जाती थी, समय जमा करती थी, फिर वो एक दिन गिर गई, अकेली थी, तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उसकी हड्डी वड्डी टूट गई। तो उसने कहा कि आप कौन संभालेगा? तो उस लैंड लेडी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैंने अपने समय बैंक में समय जमा कर रखा है, और अब वो लोग आएंगे और मुझे समय देंगे। तो मैं जो दिन में जाती थी, तो मैं किसी काम पे नहीं जाती थी, बल्कि किसी बुजुर्ग की सेवा करने जाती थी, और उसकी सेवा के बदले में मैं समय जमा कर रही थी। इसने मुझे सोचने को मजबूर किया कि क्या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई संदेश है, या वास्तव में ऐसा कुछ है भी। मैंने नेट पे सर्च करना शुरू किया, देखा तो ये वाकई स्विट्जरलैंड में सरकार की ओर से ये योजना चलती है, और बकायदा वहां जमा खर्च होता है समय का। और फिर मैंने और सर्च किया, तो मैंने देखा कि और भी कई देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, ये टाइम बैंक की अवधारणा प्रचलित है। कहीं पे ये एनजीओ के माध्यम से चल रही है, कहीं सरकार के माध्यम से चल रही है। फिर यहाँ भारत में मैंने इसको ढूंढने का प्रयास किया, तो मुझे भारत में कहीं पे भी टाइम बैंक नहीं मिला। अब आप तो जानते हैं आलोक जी, बैंक से रिटायर हुए हैं, ऐसा कोई समाज सेवा का कोई अनुभव नहीं था कि संस्था कैसे बनती है, कैसे चलाई जाती है। तो मन में विचित्र सी स्थिति थी कि यदि हम इसे शुरू करेंगे तो इसमें क्या क्या कठिनाई आएगी, क्या परेशानी आएगी, तो इस पे क्या करें। एक ये भी दिमाग में होता था कि एनजीओ के का मतलब, एक दिमाग में प्रश्न घूमता है कि एनजीओ बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके लिए फिर वो पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, उगाते हैं, मेंबरशिप फीस रहती है, फिर उसका क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं पता नहीं। कई बार संस्थाओं में इसी बात को लेकर झगड़े होते हैं, फंड को लेकर झगड़े होते हैं। तो एक ये मन में था कि संस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें पैसे का कोई लेन देन ना हो,
1: चलिए चलिए,
0: ऐसा करें कि
1: अच्छा।
0: जिसमें मतलब मिनिमम पैसे से काम हमारा चल सके। लेकिन
1: तो
0: आगे कैसे बढ़े? हाँ, आप कुछ कह रहे थे।
1: हाँ, तब इसका मतलब है कि यहां पैसे की बजाय टाइम जमा होता है, और जो अपना टाइम देता है वो उसके खाते में क्रेडिट हो जाता है।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्रेडिट हो जाता है। तो
1: हाँ।
0: इसको शुरू करने के लिए मैंने सोचा कि कुछ बुजुर्गों से बात की जाए। मुझे ध्यान है कि एक बार एक केंद्रीय विद्यालय के पेंशनर्स का कोई सम्मेलन हो रहा था, अखबार में खबर आई कि आज फलानी जगह ये सम्मेलन होगा। तो मैंने कहा कि यार चलते हैं, यहाँ बात करके देखते हैं। मैं किसी को जानता नहीं, लेकिन वहां चला गया। उनको जाके मैंने आयोजकों को कहा चलती मीटिंग में कि साहब ऐसा ऐसा एक कंसेप्ट है कि बुजुर्गों की देखभाल करनी हो तो समय दे के हम आपस में एक दूसरे की देखभाल करें, इस बारे में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं, अगर अनुमति दें तो। मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कहीं पे भी आप जानते हैं कि कोई सभा चल रही होती है तो उनका पूरा शेड्यूल होता है, और किसी भी अनजान व्यक्ति को बोलने की अनुमति होती नहीं, क्योंकि उनका सारा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। लेकिन उन्होंने मुझे सहर्ष अनुमति दे दी कि बोले आप ठीक है, अपनी 5 मिनट में अपनी बात आप रख सकते हैं, 5 मिनट का हम समय देते हैं। तो मैंने 5 मिनट में अपनी बात वहां पे कही, और कह के मैंने कहा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इससे जुड़ना चाहते हैं या इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर लें, मैं अपना मोबाइल नंबर आपके आयोजकों के पास छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरा 5 मिनट का टाइम हो गया था।
1: ठीक।
0: तो मैंने उनको कहा कि सर आपके पास मेरा नंबर है, अगर किसी को जरूरत हो तो आप दे दीजिए। वहां मीटिंग में बैठे हुए कुछ लोगों ने वहीं से आवाज लगाई कि साहब आप तो बोल दो, यहीं से बोल दो, हम नोट कर लेंगे। तो
1: अच्छा
0: मैंने कहा देखिए, मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं इसका अतिक्रमण नहीं करना चाहता, तो आप यहां से ले लें। तो वो आयोजक ही खुद बोले कि साहब कोई बात नहीं, आप तो बोलो और ये नंबर नोट कर लेंगे।
1: ठीक।
0: और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बच्चों की तरह उन्होंने अपने मोबाइल में या नोट पैड पे मेरे नंबर नोट करने शुरू कर दिए।
1: अच्छा।
0: और जहाँ अटक रहे थे वहां रिपीट करने शुरू कर दिए।
1: अच्छा अच्छा।
0: इसके बाद में मैं और कई लोगों से मिला, प्रबुद्ध लोगों से मिला, मैंने चर्चाएं की कि भाई ये एक ऐसा अवधारणा मुझे शुरू करनी है, तो आप बताइए इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो लोगों ने सुन के पूरा पूरा मैंने कंसेप्ट समझाया, उसके बाद पहला ही सवाल लोगों के दिमाग में आया कि साहब सीनियर सिटीजन एक सॉफ्ट टारगेट है, इनके साथ में कुछ हो गया, आपने कहा कि वो उनके घर जाएंगे, उनका अकेला पर दूर करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, बतियाएंगे, उनको लेके जाएंगे, है ना, हॉस्पिटलाइजेशन है तो वहां पे देखभाल करेंगे, लेकिन अगर घर पे जाते हैं तो अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा उसका। अब इसका जवाब मुझे आसानी से मिल नहीं रहा था, क्योंकि अगर तो सही बात है सरकार के स्तर पे कुछ हो रहा है तो सरकार देखेगी, एनजीओ के स्तर पे कुछ हो रहा है तो बड़ी मुश्किल होगी जी।

0: चल, तो ये अपन आगे चर्चा जारी रखते हैं। थोड़ा मेरे को इसकी ये बात बताइए कि अभी टाइमिंग क्या आपका एक दो शहरों तक ही सीमित है या कई शहरों में इसकी उपस्थिति है?
1: आलोक जी, अब तो ये बहुत शहरों में हो गया है, काफी विस्तार ले चुका है। लगभग यूं कहें कि देश के जो हमारे बड़े बड़े शहर होते हैं, प्रमुख शहर होते हैं, सब
0: हाँ
1: जगह इसकी उपस्थिति इसकी दर्ज हो चुकी है और
0: हाँ तो अभी
1: अच्छा चल रहा
0: कितने
1: है। फिलहाल
0: मेंबर्स हैं इसके अभी फिलहाल?
1: हमारे इसमें तकरीबन 9,000 मेंबर हैं, हाँ,
0: अच्छा।
1: देश भर की
0: और
1: शाखाओं में,
0: कई स्टेट्स में हैं।
1: कई स्टेट्स में है।
0: अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि बैंक के सदस्य किस प्रकार की सहायता दूसरे सदस्यों को देते हैं, जैसे किन किन मेडिकल कंडीशंस में उनकी मदद करते हैं?
1: इसमें सबसे पहला तो हमारा ये है कि जो घर पर अकेले हैं, जिनके पास में कोई बैठता नहीं है, उनके पास आप बैठे हैं ताकि उनका एक तरह से देखभाल भी हो सके और उनका मन भी लगा रह सके। मैं आपको शेयर करूं कि एक एशियन पेंट्स का एक सीरीज आई थी, हर घर कुछ कहता है, उसमें
0: अच्छा
1: उन्होंने धर्मेंद्र का इंटरव्यू लिया था
0: अच्छा
1: और कई एपिसोड में था उसका ये इंटरव्यू, जिसमें उसके पूरे
0: जी
1: जीवन के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। उसमें से
0: जी
1: एक क्लिपिंग मुझे मिली, जिस क्लिपिंग में वो पूछते हैं कि जब आप बॉम्बे आए थे और आपके परिवार भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे तो आपको कैसा महसूस होता था, तो
0: हाँ
1: बोले कि वो मैंने बाबूजी और माता जी को पता नहीं क्या कहते थे, तो वो लोग
0: हाँ
1: वहां पे आ गए और ये बड़े प्रसिद्ध हो गए थे। पैसा था, कोठी थी, नौकर चाकर बंगला सब कुछ था। तो वो तो शूटिंग से लौटते थे, कई बार कई कई दिन होते थे, महीनों लग जाते थे, घर आते थे, माता जी के पास बैठते थे, उससे पूछते थे कि आपको कोई दिक्कत है, कुछ काम है। वो ऐसे ही बैठी रहती थी, उदासी थी। बोले, नहीं बेटा, सब कुछ तो है, क्या कमी है, तेरे तो सब कुछ कर रखा है ना, किसी तरह की दिक्कत तो है नहीं, तो कोई बात नहीं। फिर वो बाबूजी के पास जाते थे तो वो ऐसे हाथ से एक्टिंग करके कह रहे थे कि वो ठुड्डी पे हाथ रख के बाबूजी बैठे होते थे। मैं पूछता था कि बाबूजी क्या चाहिए, बोले, बेटा कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो तूने दे रखा है, गाड़ी है, नौकर चाकर बंगला है। बड़े मायूस से होके कहते हैं कि लेकिन बेटा तू थोड़ा जल्दी आ जाया कर। उनका अभिप्राय था कि मतलब बेटा उनके पास में बैठे थोड़ी देर के लिए, इतने नौकर चाकर की भीड़ में भी वो अकेले हैं,
0: सबसे बड़ी समस्या अकेलेपन की है
1: अकेलेपन की समस्या।
0: आजकल समस्या।
1: तो पहला काम तो हमारा यही कि उनका अकेलापन दूर हो, जिनके पास में कोई आने जाने वाला नहीं है। दूसरा काम हमारा होता है कि ऐसे बुजुर्ग जो सक्षम नहीं है, उन्हें छोटे छोटे काम के लिए लोगों का मोहताज होना पड़ता है। चश्मे की डंडी टूट गई है, अब कोई मिलेगा तो वो जाके बनवा के ला पाएंगे, अन्यथा वो बैठे हुए हैं ऐसे। उनको
0: जी।
1: डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, फिजियोथेरेपी के लिए जाना है, यहाँ तक कि मंदिर जाना है या सुबह घूमने जाना है ना। आपने
0: हाँ
1: देखा होगा जो काफी बुजुर्ग होते हैं, उनका पोता या कोई सर्वेंट या कोई उनका बेटा, वो हाथ पकड़ के
0: हाँ
1: साथ साथ लेके आता है, पैदल चल रहे हैं लेकिन वो अकेले नहीं जा पाते, उनको डर लगता है गिरने का, कुछ हो जाने का, तो
0: जी
1: साथ
0: जी
1: जाते हैं। तो ऐसे में उनको
0: हाँ
1: साथ ले जाना ले
0: चाहिए
1: आना, उनके
0: चाहिए
1: काम करा के घर छोड़ दे। और
0: जी।
1: तीसरा काम है हमारा कि जब अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं
0: हाँ
1: तो वहां पे अटेंडेंट के तौर पे आपको व्यक्ति नहीं मिलता।
0: जी।
1: आपने
0: आजकल ये
1: देखा
0: बात
1: होगा,
0: है
1: हम और आप सब इससे गुजरे हैं कि हमारे
0: जी।
1: कोई मित्र अस्पताल में भर्ती हो गए तो हम देखते थे कि विजिटिंग आवर्स क्या है, उस समय जाते हैं, 5-7 मिनट बैठते हैं और वापस आ जाते
0: हाँ, फॉर्मेलिटी
1: हैं,
0: से
1: लेकिन
0: निभाते
1: फॉर्मेलिटी
0: हैं एक।
1: से निभाते हैं। वो भी इसलिए कि वो ठीक होने के बाद ये नहीं कहे यार तू तो
0: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही
1: देखने
0: बात
1: भी नहीं आया। और कई बार तो हम अनजाने में उसका नुकसान और कर जाते हैं।
0: जी।
1: वो ऐसे कि वहां बैठते हैं, हम सबके सब तो डॉक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े है ना, तो अच्छा,
0: सब
1: अरे तू यहाँ कहाँ यार, हॉस्पिटल में आ गया, ये हॉस्पिटल तो बड़ा बदनाम है ना, लूटता है,
0: हाँ
1: तेरे को उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अच्छा,
0: बिल्कुल
1: किस
0: सही
1: डॉक्टर से
0: बात।
1: इलाज चल रहा है, इस डॉक्टर से, अरे यार ये
0: अच्छा,
1: डॉक्टर अच्छा नहीं है, इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, वो
0: दूसरे
1: फलाना
0: लेना है।
1: डॉक्टर।
0: हाँ बिल्कुल
1: कोई
0: बिल्कुल सही
1: कहेगा
0: बात।
1: हल्दी में मिला के ये खा लेना, कोई कहेगा फिट करके गरारे कर लेना, तो वो बेचारा
0: हाँ
1: जो उसका विश्वास है उस डॉक्टर पे और हॉस्पिटल पे, उसको शेक करके और आ जाता।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि यार मेरे पास यहाँ पे कोई है नहीं, तुम क्या दिन भर छुट्टी लेके मेरे पास में या हॉस्पिटल में रुक सकते हो, तो वो
0: हाँ
1: दाएं बाएं हो जाएंगे,
0: दाएं
1: यार
0: बाएं
1: आज
0: बाएं
1: तो मेरे ये काम है, आज तो
0: जी
1: नहीं, मैं कल कल देखता हूँ, है ना। वो कल हो के आगे हो के वो
0: बिल्कुल
1: पूछेंगे भी नहीं कल कि भाई वो तेरी जरूरत थी, मैं आऊं या नहीं आऊं। तो
0: सही बात।
1: बहुत घनिष्ठ हमारे मित्र हैं, जिनको हम लंगोटिया यार कहते हैं, जो ये तकलीफ उठा के भी अपना काम धंधा छोड़ के हमारे पास आ सकते हैं, हमारे बच्चे हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं, केवल वही लोग
0: आते हैं
1: आपके पास आ सकते हैं, यहाँ टाइम खर्च करके आपके पास रुक सकते हैं, बाकी किसी के पास टाइम नहीं। तो टाइम बैंक वहां पे उनकी देखभाल
0: तो आराम से करता है।

0: डालोगे।
1: अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी सदस्य को मदद चाहिए तो वो किस प्रकार से रिक्वेस्ट करे, क्या कोई चार्जेस देने पड़ते हैं?
2: नहीं नहीं, इसमें चार्जेस तो मैंने बताया कि हमने कुछ रखा ही नहीं है, पैसे का तो कहीं कोई लेन देन है ही नहीं, ना इसकी सदस्यता के लिए कोई शुल्क है और ना ही उसको किसी सेवा के बदले में कोई पैसा देना है।
1: ओके,
2: और ना संस्था सेवा देने वाले को कोई पैसा देती है।
1: अच्छा, तो जो
2: सदस्यता के
1: जो सदस्य बनने के लिए भी कोई चार्जेस नहीं है?
2: ना ना, कोई चार्जेस नहीं, फ्री है मेंबरशिप।
1: ओके ओके, कोई एलिजिबिलिटी अगर मेंबरशिप लेने की क्या है, क्या जिसको पात्रता कहते हैं अपन?
2: हाँ, पात्रता जरूर है। पात्रता ये है कि हम एक टी कंसेप्ट कहते हैं कि चाय पीनी हो तो आप टाइम बैंक के सदस्य बन जाइए। और टी टी का टी ई ए का टी स्टैंड्स फॉर टाइम।
1: ओके,
2: अगर आपके पास टाइम है देने के लिए या लेने के लिए, आपको समय चाहिए दूसरों से या आप किसी को समय दे सकते हैं, तो आप सदस्य बनिए। दूसरा है ई, ई फॉर एनरोलमेंट, अगर आपके पास टाइम है तो आप एनरोल कीजिए, सदस्य बनिए। और तीसरा है ए, ए मीन्स एटीट्यूड, आप में सेवा का जज्बा है, अगर ये तीन चीजें हैं तो आप सदस्य बन जाइए। सेवा का जज्बा होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, एनरोल करना है, आपको देने के लिए या लेने के लिए समय होना चाहिए। बस इतना सा है कि चूंकि किसी भी संस्था में जुड़ने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं, उसको एक्सेप्ट करना होता है टर्म्स एंड कंडीशन को, तो एक तरह से ये एग्रीमेंट जैसी चीज है। तो हमने रखा कि 18 साल से कम की उम्र के बच्चे इसमें सदस्य नहीं होंगे। 18 साल से ऊपर का किसी भी उम्र का हो, हमारे यहाँ पे 98-99 के भी सदस्य रहेंगे।
1: अच्छा, तो इसका मतलब है सीनियर सिटीजन के अलावा जो यंग लोग जिनमें जज्बा है वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं?
2: हाँ, बिल्कुल, कोई भी बन सकता है, किसी भी सर्विस क्लास का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, प्रोफेशन का हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो, आईएएस हो, प्लंबर हो, मैकेनिक हो, रिक्शा चलाने वाला हो, कोई भी हो सकता है। हमारे ट्रक ड्राइवर भी मेंबर बने हुए हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, अभी हाल ही में 1 अक्टूबर को देश में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया गया। आपके अधिकांश मेंबर्स वरिष्ठ नागरिक है, इनकी सहायता करते समय इनकी सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित करते हैं?
2: हाँ, ये आपने बहुत उचित सवाल पूछा, क्योंकि यही सबसे ज्वलंत समस्या है। जब भी कभी हम कहीं जाते हैं तो यही बात सामने आती है, जो खासतौर पर सरकारी अधिकारी होते हैं तो वो भी पूछते हैं। तो हमने इसकी सुरक्षा के लिए कई सारे लेयर्स लगाए, जैसे जैसे हमें समझ आती गई, बातचीत करते हुए लोगों ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा
1: जी।
2: तो हमने ये देखा कि जब कभी भी हमें मदद की जरूरत होती है, मान लीजिए कि आप ही को हॉस्पिटल जाना है और कोई ले जाने वाला नहीं है, आप अकेले नहीं जा सकते, आपको कोई साथी चाहिए, ठीक है ना, तो पहले आप अपने बच्चों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को ढूंढेंगे, ठीक है ना, जो पास में हो आपके
1: जी।
2: और अगर वो नहीं होंगे तो आप अपने पड़ोसी को कहेंगे, अपने किसी मित्र को कहेंगे। तो जाने अनजाने हम जिसको भी ढूंढते हैं, जिसको भी मदद के लिए पुकारते हैं, उसमें हम तीन क्वालिटी देखते हैं
1: जी।
2: पहली क्वालिटी देखते हैं कि वो हमारा जानकार हो, विश्वसनीय हो
1: जी।
2: दूसरी क्वालिटी देखते हैं कि वो हमारे पास में हो, नजदीक हो, बहुत दूर नहीं हो, क्योंकि बहुत दूर होगा तो वो हमारे लिए इतना काम का नहीं होता। तीसरी चीज हम देखते हैं कि वो उपलब्ध भी हो, ठीक है ना। उपलब्ध से मेरा मतलब है कि जैसे आप आपके पड़ोस में ही कोई रहता है और आपका मित्र भी है, आपका विश्वसनीय है, सब कुछ है, लेकिन वो उस दिन शहर से बाहर गया हुआ, तो वो उपलब्ध नहीं है,
1: नेचुरली
2: है ना। पहली दो क्वालिटी पूरी होने पे भी तीसरी क्वालिटी उस पैरामीटर में खरा नहीं उतरता। तो ये तीन चीजें हैं जिसके ऊपर हमने काम किया। अब इसमें जो आपने सुरक्षा की बात की, उसमें हमने कई सारे लेयर्स लगाए।
1: अच्छा,
2: पहला लेयर तो ये है कि जो रजिस्टर करेगा, ऑनलाइन मेंबरशिप है, वेबसाइट पे जाके कोई भी मेंबर बन सकता है, timebankofindia.com हमारी वेबसाइट है। तो जब वो रजिस्टर करता है तो उसमें जो डाटा है वो किसी को भी उपलब्ध नहीं होता है, कोई मेंबर हो या नॉन मेंबर हो, कोई भी ये नहीं देख सकता कि इसमें कौन कौन मेंबर हैं, उनके नाम पते क्या हैं, उनके मोबाइल नंबर क्या हैं, उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट का क्या हाल है, किसी को कुछ नहीं पता होता, सिर्फ अपनी डिटेल देख सकता और किसी की नहीं देख सकता। पहली लेयर हमने ये लगाई। दूसरी लेयर लगाई हमने केवाईसी की, कि जो मेंबर बनेगा वो अपनी फोटो भी डालेगा, अपनी केवाईसी का डॉक्यूमेंट भी डालेगा, अपनी डिटेल भी पूरी भरेगा, एड्रेस भी पूरा भरेगा, सारी चीजें कंप्लीट करते हैं उसमें, और रजिस्ट्रेशन भी ओटीपी के माध्यम से हम करते हैं, ताकि कोई फेक नंबर से कोई रजिस्ट्रेशन ना करे।
1: ठीक है।
2: इसके बाद अगली हमने रखी है जो लेयर कि जो मेंबर ऑनलाइन रजिस्टर करता है वो बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव होता है।
1: ओके।
2: उसे अप्रूव करते हैं तो फिर वो एक्टिव मेंबर कन्वर्ट होता है।
1: जी,
2: तो हमारे यहाँ एक्टिव इनएक्टिव की कैटेगरी है, तो बाय डिफॉल्ट जो भी रजिस्टर होगा वो पेंडिंग फॉर अप्रूवल की कैटेगरी में जाता है। और हमारा जो यूनिट्स है, जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है, पोस्टल पिन कोड या और भी छोटी यूनिट्स होती है, उनके संचालन के लिए एडमिन होते हैं, जो वॉलंटियर्स में से ही हमारे मेंबर्स में से ही कोई होते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसका वेरिफिकेशन करे। वो उसके घर जाकर, उससे वीडियो कॉल करके, उससे फोन करके, मीटिंग के दौरान उसकी संतुष्टि होनी चाहिए कि जिनैन व्यक्ति है, तो वो उसे अप्रूव करता है। तो जो हमारा अप्रूव सदस्य है सेवा लेने में या देने में वही भाग ले सकता है, ना तो अनअप्रूव्ड मेंबर सेवा लेने के लिए अनुरोध कर सकता है, ना सेवा पूरी करने के लिए वो उसको एलिजिबिलिटी होती है, तो अप्रूव होना जरूरी है। यहां तक हमने सब कर लिया। फिर किसी ने कहा कि साहब आप आई कार्ड और इश्यू कर दो इनको। तो हमने कहा कि भाई आई कार्ड इश्यू तो कर दें, लेकिन अब मुझे आप बताइए कि जिस देश में पैन कार्ड और पासपोर्ट और आधार डुप्लीकेट बन जाते हैं, तो आई कार्ड का क्या होगा? तो बात यह आई कि विश्वसनीयता या मित्रता बनती तब है जब हम लगातार मिलते जुलते हैं,
1: मिलते रहते हैं।
2: हालांकि मैं बैंक में नौकरी करता रहा हूं, है ना, जहां ट्रांसफरेबल जॉब है, नए शहर में जाते हैं, ना तो स्टाफ जानकार होता था, ना कोई और पड़ोसी जानकार होता था। तो वहां हम अपने स्टाफ में तो चलो ज्वाइन करते थे तो जान जाते थे कि भाई ये मैनेजर साहब आए हैं, ठीक है। फिर हम उनके माध्यम से या ब्रोकर्स के माध्यम से मकान लेते हैं, जिस मोहल्ले में मकान लेते हैं जानते हैं आपके वहां पे, फिर हमें कोई भी जानकार नहीं होता, लोग दरवाजे से झांक के देखते हैं कि कोई नया मुर्गा इस मोहल्ले में आया है है ना, कि कौन आया है, थोड़ा सा वो देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है। छोटा शहर होता है तो अड़ोस पड़ोस वाले आ जाते हैं कि साहब आप नए आए हो क्या, आपको कुछ चीज चाहिए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, लेकिन बड़े शहरों में कोई नहीं पूछता।

0: चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपकी संस्था ने इतने समय में इतनी प्रगति कर ली है, क्या सरकार से आपको कोई सपोर्ट या सहायता मिलती है?
1: सरकार से सपोर्ट और सहायता की बात करते हैं आप, ऐसा अगर ये कोई हम कहें कि कोई कोलैबोरेशन हुआ है तो वो यहाँ तो राजस्थान में नहीं हुआ, आंध्र प्रदेश सरकार से जरूर हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि हमारा इसमें हमने ये शुरू से ध्येय रखा है कि पैसे का लेन देन इसमें नहीं होगा, इसलिए हमारी संस्था टेक्नोलॉजी पे काम करती है, वेबसाइट के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से काम करती है। पूरे देश में हमारे कोई ऑफिस नहीं है और कोई कर्मचारी नहीं है, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगभग जीरो सी है। तो सरकार के पास भी हम जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए। अब यहाँ हम राजस्थान सरकार के पास जब जब गए तो उनके साथ में यही एक समस्या थी कि उन्हें ये बात समझ में नहीं आती थी कि इनकी मदद कैसे करें, क्योंकि जो संस्था उनके पास जाती है वो या तो अनुदान मांगती है, है ना,
0: या जमीन, या जमीन,
1: जमीन मांगती है, इसके अलावा उनके पास में और कुछ है नहीं। और वो कहते हैं साहब आप बताइए आपको जमीन चाहिए या कुछ और चाहिए, तो हमें ना तो जमीन चाहिए ना आपका पैसा चाहिए
0: जी।
1: हमें तो आपसे प्रचार में मदद चाहिए, क्योंकि हमारे पास में प्रचार के लिए पैसा नहीं, हम पैसा इकट्ठा करते ही नहीं है, तो हमारे पास में प्रचार करने के लिए एडवर्टाइज करने के लिए खर्चा नहीं है, तो आप वो कर दीजिए। अब वो उनके बात समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमने एक तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है,
0: अच्छा पुलिस डिपार्टमेंट,
1: पुलिस डिपार्टमेंट है तो हर पुलिस के थानों में अलग अलग बीट बनी हुई होती है। बीट का मतलब होता है कि एक थाने में ऐसा एक क्षेत्र जिसका एक प्रभारी एक पुलिस कांस्टेबल होता है, उस एरिया की जो भी क्रिमिनल गतिविधियां होती है उसकी सूचना देना, सुराग देना, इंफॉर्मेशन रखना, वो उस बीट कांस्टेबल का काम होता है
0: जी।
1: और यहाँ राजस्थान में उनकी ड्यूटी में एक ड्यूटी ये भी शामिल है कि उस बीट के जो बुजुर्ग हैं, अकेले बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान रखें, उनसे बीच बीच में जाके मिले, उनका हालचाल पूछे, ये उनकी ऑफिशियल ड्यूटी में है।
0: ऑफिशियल, ठीक है।
1: हाँ, हमें किसी ने बताया तो हमने देखा कि भाई ये तो कभी तो देखा नहीं हमने किसी बुजुर्ग के पास इनको बीट कांस्टेबल को आते आते, तो हम पुलिस डिपार्टमेंट के पास गए, उनसे हमने कहा कि साहब ऐसा ऐसा है, आपकी जो बीट कांस्टेबल है उनके पास ऐसी ड्यूटी होती है, लेकिन चूंकि आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करनी है, ये आपकी सेकेंडरी ड्यूटी है, तो वो इतना कर नहीं पाते, हमें इतना कर दीजिए कि ऐसे बुजुर्गों को बीट कांस्टेबल के माध्यम से हमारे साथ जोड़ दीजिए, देखभाल का काम हम कर लेंगे।
0: ओके।
1: तो उन्हें हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने लिखित में सारे थानों को ये आदेश जारी किया कि वे अपने बीट कांस्टेबल्स को टाइम बैंक के साथ में कनेक्ट करें। तो एक तो ये सरकार के साथ हमारा कनेक्ट है ना, क्योंकि पुलिस की डिपार्टमेंट आसानी से ऐसे पत्र देती नहीं,
0: ठीक है, सही,
1: विश्वसनीयता देख के ही उन्होंने ऐसा पत्र जारी किया।
0: जी जी जी जी।
1: दूसरा जो है, जब हम यहाँ एक जो समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय होता है जो इस तरह के समाज कल्याण से संबंधित कामों को देखता है, उनके पास गए, उन्हें हमने कहा ये, तो ये बात तो उनको समझ में आई नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कर दिया कि जो भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ सीनियर सिटीजन से संबंधित काम होते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, अपना जो देवस्थान विभाग है जहाँ वरिष्ठ नागरिकों के तीर्थ यात्रा योजना होती है, नगर निगम है तो वहां पे ऐसी जरूरत पड़ती है, तो ऐसे सारे डिपार्टमेंट से उन्होंने एक चिट्ठी भेज दी कि साहब जो भी टाइम बैंक से संबंधित आवश्यकता हो आप इनकी यथासंभव मदद करें।
0: चलिए,
1: तो उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार का हमारे साथ में बड़ा अच्छा तालमेल हुआ।
0: नहीं, पुलिस से अगर ये मदद मिल जाए, कम से कम सरकार ने ऐसा सर्कुलर इश्यू तो किया है, यही बहुत बड़ी बात है।
1: हाँ हाँ हाँ।

0: नाम है।
1: अच्छा ये बताइए कि आंध्र प्रदेश सरकार से आपके टाइम में का क्या जुड़ाव हुआ है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए मुझे।
2: हाँ, उसमें क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश सरकार को स्वयं ये विचार आया कि अपने बुजुर्गों के लिए, क्योंकि साउथ में बुजुर्ग ज्यादा हैं नॉर्थ के कंपेरेटिवली, है ना, जहाँ पे भी, हाँ जहाँ पे भी अपने शैक्षणिक स्तर जहाँ अच्छा है वहां पे बर्थ कंट्रोल भी अच्छा है और वहां पे फिर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। तो आंध्र प्रदेश सरकार को ये विचार आया कि ऐसा कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि बुजुर्गों की देखभाल हो सके। तो उन्होंने अपने स्टाफ को लगाया इस काम के लिए, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम डायरेक्ट,
1: अच्छा,
2: उनके थ्रू ये काम चला। उन्होंने अपने स्टाफ को लगाया कि पता करो साहब यहाँ पे ऐसा क्या हो सकता है। उन्होंने जब काफी रिसर्च की तो देखा कि एक टाइम बैंक ऑफ इंडिया देश में ऐसा काम कर रहा है।

0: तो मैं एक प्रोटोकॉल की तरह मिल जाए कि मैं हमें कम से कम रहने का खर्चा तो नहीं हो, ट्रेवल का खर्चा हम कर लेंगे, रहने का और ट्रांसपोर्ट का खर्चा हमारा बच जाए, प्लस
1: हाँ
0: हमारी जो मीटिंग्स होती है उन मीटिंग्स के लिए आपके पास बहुत सारी जगह है,
1: हाँ तो
0: डे केयर सेंटर्स होते हैं, वो हमें आप दे दीजिए, उसमें आपका कोई पैसा लगना नहीं है। तो वो इसके लिए तैयार हो गए, उन्होंने एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन भेज दिया वहां पर, बोले आप कैसे शुरू करेंगे, हमने कहा कि एक आप पायलट प्रोजेक्ट कर लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट का, उससे आपको भी तसल्ली होगी हमें भी तसल्ली होगी, एक साथ पूरे प्रदेश में लागू करने के बजाय हम ऐसे चले तो ज्यादा बेहतर है। उन्हें ये विचार अच्छा लगा और उन्होंने हमसे ही चुनने के लिए कहा, हमने विशाखापट्टनम को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना और 18 मार्च 2025 को सरकारी स्तर पर आयोजित समारोह में, जहां पे विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के सभी लगभग अधिकारी उपस्थित थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, कलेक्टर के हाथों से इसका उद्घाटन करके हम पायलट प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम में शुरू करके आ चुके हैं और वहां पे हमने अपने एडमिन मनोनीत कर दिया और वहां पे अब काम हमारा चल रहा है।
1: चलिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आपके कई राज्यों में उपस्थिति हो गई है टाइम बैंक की। आप मुझे ये बताइए कि श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टाइम बैंक ऑफ इंडिया अगर आप गूगल करेंगे तो आप इसकी वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे और इसके बारे में सारी जानकारी आपको टाइम बैंक के बारे में मिल जाएगी। और जैसे कि अभी अभी बीच में जैन साहब ने भी बताया था इसके बारे में।

0: चलिए, अब टाइम बैंक का ये सफर बहुत लंबा रहा है आपका। इस दौरान कोई ऐसी घटना हुई हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, जो आपसे हमसे हमसे शेयर करना चाहें, जिसे आप भूल नहीं पाते हो, ऐसी कोई बात हो तो बताइए।
1: हाँ, ऐसी बात है सर।

0: बीच में कुछ अखबार में खबरें आई थी, कभी कभी अभी भी आ जाती है, कि
1: जी
0: बुजुर्ग दंपति घर में अकेले थे, नौकर आता था काम करके चला जाता था, चांस की बात है कि नौकर छुट्टी पे था
1: जी
0: और उस बुजुर्ग दंपति की डेथ हो गई, क्योंकि वो इतने बुजुर्ग थे कि घर से आना जाना संभव नहीं था। अच्छे
1: जी
0: पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे नौकरी से रिटायर हुए थे, जिनके बच्चे भी अच्छे सेटल हैं, शहर से बाहर हैं, दूर हैं, और पड़ोसियों ने खबर करके ये पुलिस को बताया कि साहब इस घर से बदबू आ रही है, और
1: ओहो
0: तब जाकर ये पता लगा कि उनकी
1: हाँ
0: तो मृत्यु हो चुकी है। तो
1: ओहो
0: ये बड़ी पीड़ादायक, मुझे इसने बड़ा झकझोर दिया कि देखिए क्या स्थिति है आज हमारे समाज की, कि जहां पर हम इतने निष्ठुर हो गए हैं कि किसी को ऐसे उससे गुजरना पड़े और कोई भी ना हो। तो ये बड़ा एक
1: बिल्कुल
0: मेरे को दुखित
1: सही
0: किया।
1: बात नहीं, ऐसी
0: एक
1: घटनाएं।
0: हाँ,
1: जी जी हाँ
0: एक इंसिडेंस और मैं शेयर करना चाहूंगा, कि
1: जी
0: मतलब हम ये तो नहीं कहते कि सारी पीढ़ी ही ऐसी है, लेकिन
1: जी
0: फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो परिवार का ध्यान नहीं रखते, अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते हैं, और सरकार ने
1: हाँ
0: भी इसके लिए वृद्ध जन भरण पोषण अधिनियम बनाया है, जहां जो ध्यान नहीं रखते उनको पाबंद किया जाता है, उनके ऊपर केस भी किया जा सकता है। कुछ लोग हैं ऐसे, ज्यादातर तो बच्चे दुखी होते हैं कि वो अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाते, पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि मजबूर हैं, दूर हैं,
1: जी
0: विदेश में हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो यहाँ होते हुए भी, साथ रहते हुए भी उनकी कदर नहीं करते। तो ऐसा
1: जी
0: एक वाकया मेरे साथ आया था, हमें किसी ने
1: हाँ
0: फोन करके बताया, उन्हें कहीं से पता लगा हुआ टाइम बैंक के बारे में, तो उन्होंने फोन करके बताया कि साहब ऐसे एक अकेली लेडी रहती है, उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है और वो बीमार हो गई है, हम तो उनके पड़ोसी हैं, हमने उनको SMS हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है, लेकिन हम तो नौकरी करते हैं और हम इतना टाइम दे नहीं सकते, हमने तो ये मानवीय आधार पे कर दिया है, आप जाकर जो है ना उनकी अगर कर सकते हैं तो देखभाल कर लें। तो वो हमारे मेंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलिए मानवीय आधार पे ऐसी स्थिति है तो हमें संभालना चाहिए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो संभालने के लिए होना भी जरूरी है, प्राइवेट
1: जी
0: हॉस्पिटल में तो फिर भी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है।
1: जी
0: वहां पे हमने अपने मेंबर से कहा, हमारी महिलाएं जो थी वो महिला विंग वहां पर जाके उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला, रात को भी उनके साथ में रुकते थे और पूरा देखभाल उनका चलता रहा। जब
1: चलता
0: वो
1: रहा।
0: थोड़ा सा ठीक हुई और थोड़ा सा बातचीत करने लायक हुई, तब उनसे हमने पूछा कि भाई आपका खर्चा कैसे चलता है, कैसे होता है, कौन है कौन नहीं, आपको भर्ती करा के गए थे, वो दोबारा आए भी नहीं कभी भी, क्योंकि अगर एक बार भर्ती कराया तो दिन भर नहीं रुक सकते, पर कभी कभी तो हाल पूछने आ ही सकते हैं पड़ोसी। तब
1: ना, सही बात है।
0: हमें पता लगा कि वो उनके रिश्तेदारी थी, भतीजी और उसके दामाद थे, पड़ोस में ही
1: हाँ
0: रहते थे, लेकिन वो इससे बचने के लिए वहां पे भर्ती कराकर और पास
1: चले गए।
0: चले गए। तो बताइए मतलब कितनी दुखद स्थिति है। तो
1: हाँ ये तो कल
0: समाज में ऐसी
1: स्थिति
0: स्थिति
1: हो
0: होनी चाहिए कि कम से कम
1: रहा
0: इनकी देखभाल हो सके। ये
1: बिल्कुल।
0: कुछ घटनाएं थी जिन्होंने बड़ा झकझोर दिया मुझे।
1: यही बात है बिल्कुल। नहीं, बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसी बहुत घटनाएं होती हैं, जो पुरानी रिटायर्ड हीरोइंस हैं या हीरोज हैं, उनकी कई बार डेथ हो गई है और बाद में खबर नहीं आई है, ऐसी बहुत होती
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परवीन बॉबी का काफी सुनने में आया
1: हाँ,
0: था।
1: परवीन बॉबी का एक और शुभा कोटे या दुर्गा कोटे, उसका भी ऐसे बहुत। जी
0: हाँ, ये मतलब ऐसे
1: अच्छा
0: भी देखे हमने जिनके पीछे लवाजमा होता था, जिनके पीछे लोग
1: हाँ
0: बाग आगे पीछे
1: या
0: घूमते थे,
1: सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी
0: हाँ
1: होती थी बिल्कुल।
0: सेलिब्रिटीज होते थे, और
1: जी
0: इस अंतिम घड़ी में उनके साथ वो
1: कोई
0: बड़ा
1: नहीं, तो कोई
0: चलो।

0: बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जैन साहब आप। चलिए आप ये थोड़ा सा बदलते हैं इसको, आपके कोई खास शौक हो, कोई आपका फेवरेट गाना हो या कोई ऐसी चीज हो तो आप बताएं हमें, क्या क्या शौक है जैन साहब के, एक व्यक्ति के रूप में आपके क्या शौक है?
1: शौक तो ये है कि मतलब कभी कभी गाने गा लेते हैं, पहले तो हम प्ले वगैरह भी करते थे,
0: जी जी जी जी,
1: सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते थे, डिबेट विबेट का शौक रहा है,
0: जी जी,
1: अभी भी कभी कभी गुनगुना लेते हैं गाने वाले।
0: अरे वाह,
1: और तो कुछ गाने ऐसे हैं, आप भी गानों का शौक रखते हैं, मुझे पता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे गाने बने हैं कि आप किसी भी मौके के लिए ढूंढ लीजिए, आपको गाना मिल जाएगा। लड़की विदा हो रही है तो बाबुल की दुआएं लेती जा, है ना, बारात दरवाजे पर आई तो आज मेरे यार की शादी है, तो बच्चे का जन्मदिन है तो हम भी अगर बच्चे होते हैप्पी बर्थडे टू, तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं। तो जब हम सेवा की बात करते हैं तो राज कपूर साहब की फिल्म का एक गाना, अनाड़ी फिल्म का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें वो लाइन आती है, माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, है ना। तो वो जो गीत है ये मुझे बड़ा प्रिय लगता है।
0: चलिए, मुकेश का गाना है ये, मुकेश जी का गाया हुआ है, बहुत बड़ी और राज कपूर साहब पे फिल्म आया गया है, वाह बहुत ही बढ़िया गाना है, और आपके टाइम बैंक की थीम से भी ये बिल्कुल जुड़ता है।
1: किसी की मुस्कुराहट रुपए हो निसार,
0: किसी
1: का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते में हो तेरे दिल में प्यार,
0: दिल में प्यार,
1: जीना इसी का नाम।
0: तो आप अपना समय दे रहे हैं, अपना लोग समय दे रहे हैं एक दूसरे के लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। तो चलिए, जैसा मैं अंत में आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अभी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर टाइम बैंक को राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है,
1: जी जी,
0: और आपके प्रयासों के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से भी अवार्ड दिया गया है, हमारी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से इस सम्मान के लिए बधाई स्वीकार कीजिए। आप इस मिशन को लेकर आगे बढ़ते रहें, ये हमारी कामना है। इस अवसर पर यदि कोई संदेश आप देना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: संदेश सीधा सा और साफ है कि जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं, वे पहला काम तो ये करें कि अगर उनके माता पिता हैं तो एक जो संयुक्त परिवार की हमारी प्रणाली थी, प्रथा थी, जिसमें हर एक का ध्यान रखा जाता था, तो वे उनका ध्यान रखें, उन वृक्षों का ध्यान रखें जिन्होंने जवानी में उनको फल दिए थे, छाया दी थी, आज उनके पास फल नहीं है, वो जर्जर हो गए हैं, उनकी देखभाल करें, उनका ध्यान रखें, पहला काम ये करें, ताकि हमारे देश में वृद्धाश्रमों की या किसी भी अकेले बुजुर्ग को किसी भी त्रासदी से ना गुजरना पड़े। लेकिन फिर भी यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, किन्हीं के बच्चे भी नहीं है ऐसे बुजुर्ग हैं, या आपके बुजुर्ग नहीं है आपके पास में, तो दूसरे बुजुर्गों का सहारा बने, उनका संबल बने, इस अभियान के लिए टाइम बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े, निशुल्क काम है, वेबसाइट है timebankofindia.com, उससे जुड़े, इसमें कोई समय की बंदिश आपके पास नहीं है, आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको हर हफ्ते कुछ करना है या हर दिन कुछ करना है या महीने में कुछ करना है, ये वैसा बैंक है जहां आपके पास जब समय हो तो जमा कीजिए। बैंक में भी आप जब पैसा होता है तो जमा करते हैं, नहीं होता तो नहीं करते हैं, जरूरत होती तो निकालते हैं, इसमें भी जब आपके पास समय होगा और कोई अनुरोध हेल्प का आएगा, आप कर सके तो आप यस कीजिए, जो साथी कहते हैं कि मैं तैयार हूं, हम उन्हीं को ये रिक्वेस्ट असाइन करते हैं, तो जुड़ जाइए, कोई नुकसान नहीं है इसमें जुड़ने में, ये संदेश हम देना चाहेंगे।
0: अब एक और, चूंकि हमारे इस रेडियो स्टेशन की ऑल इंडिया रीच है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपकी उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में भी कोई प्रेजेंस है टाइम बैंक ऑफ इंडिया की?
1: जी हाँ, उत्तराखंड में देहरादून में हमारी यूनिट बन चुकी है, उत्तर प्रदेश में तो कई जगह है, कानपुर है, आगरा है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, कुछ शहर और भी है, एकदम मुझे याद नहीं आ रहे, उत्तराखंड में अभी हमारा देहरादून में है।
0: अच्छा,
1: हाँ, हिमाचल में शिमला में है।
0: तो उससे रिलेटेड सवाल यह है कि अगर अपने शहर में कोई एक टाइम बैंक की उपस्थिति चाहता है या उसकी शाखा चाहता है तो वो क्या करना चाहिए, उसको किस तरह से आगे बढ़े वो?
1: देखिए, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे मित्रता के लिए मिलना जरूरी है, ठीक है ना, और मेल मिलाप करने के लिए कुछ सदस्यों का होना जरूरी है। तो अगर कोई भी शुरू करना चाहता है वो थोड़ा सा इसका प्रचार करे और कुछ सदस्य बनाए। अगर आपके पिन कोड के क्षेत्र में, आपके आसपास के क्षेत्र में 10 मेंबर भी हो जाते हैं,
0: अच्छा,
1: ठीक है ना, तो हम आपका एक यूनिट अलग से बना देंगे, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उसमें हम आपको एडमिन मनोनीत कर देंगे जिनका काम सदस्यों को वेरीफाई करना है और मंथली मीटिंग आयोजित करना है। और तीसरा काम होता है उनका कि जब कभी कोई हेल्प रिक्वेस्ट आ जाए तो उसको बाकी मेंबर्स को चैनलाइज करना है, वेबसाइट पे उसकी प्रविष्टि करनी है। और इन सब कामों के लिए किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है, किसी ऑफिस की आवश्यकता नहीं है। आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप आपका ऑफिस है, आप कहीं से भी इसको संचालित कर सकते हैं। आप छुट्टियों पे घूमने गए हुए हैं नैनीताल और आप लखनऊ में हैं तो भी आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं। सिवाय फिजिकल मीटिंग के और या फिजिकल हेल्प देने के आपकी फिजिकल प्रेजेंस की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो भी करना चाहें वो आगे बढ़ें, आए जुड़े और हमें बताएं, हम उनको एडमिन की पावर्स दे देते हैं। जिनको पावर्स होती है उनको वो मेंबर्स का डाटा उपलब्ध होता है ताकि वे उनको देख सके और उनको वेरीफाई कर सके।
0: जी जी जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो अगर आपको चाहते हैं कि टाइम वर्क ऑफ इंडिया की प्रेजेंस आपके शहर में हो तो आप जैन साहब से या संपर्क कर सकते हैं या इसकी वेबसाइट पर जाकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरह से आगे बढ़ना है।
1: तो हमारे नंबर दिए हुए हैं, एक जानकारी और दे दूं श्रोताओं को कि जो हमारी वेबसाइट है उसमें एक सेक्शन हमने दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति संपर्क करना चाहे अपने एरिया में अपने क्षेत्र में, तो वहां पर हमने अपने सारे एडमिन की डिटेल, हमारी गवर्निंग काउंसिल की डिटेल वेबसाइट पे डाली हुई है। वहां आप जाइए, आवर टीम इस नाम से एक सेक्शन मिलेगा आपको, बिना मेंबर बने हुए भी वो सेक्शन मिलता है। आवर टीम में जाएंगे, वहां पे हमारे ऑल इंडिया में जो जो एडमिन हैं उनके नाम मोबाइल नंबर उपलब्ध है। आप किसी शहर से हैं और वहां पे एडमिन है कोई हमारा तो उनसे संपर्क कर लें, नहीं तो हमारे नंबर है हमसे संपर्क कर लें। हमारी मेल आईडी है timebankofindia@gmail.com, आप मेल कीजिए उससे भी हो जाएगा। वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट अस का एक सेक्शन बना हुआ है, वहां आप अपना संदेश लिखिए उससे भी हम आपको कॉन्टेक्ट कर लेते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। तो डॉक्टर जैन, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना अमूल्य समय दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके इस मिशन की सफलता के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, यही हमें हमारी आवश्यकता है क्योंकि हम विज्ञापन नहीं देते हैं, तो जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से या दृश्य श्रव्य माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से अपनी बात हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं हम उसी का प्रयास करते हैं। इसमें आपने योगदान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया,
0: थैंक यू।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं ये प्रसिद्ध जोड़ी आनंद मिलिंद की। आनंद मिलिंद हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी है। प्रतिभाशाली संगीतकार चित्रगुप्त के ये दोनों बेटे आनंद चित्रगुप्त और मिलिंद चित्रगुप्त अपने शुरुआती दौर में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सहायक रहे।

0: मुझे प्यार।
1: अपने पिता के सहायक के तौर पर भी उन्होंने कई हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में संगीत दिया। आइए सुनते हैं उनकी बनाई हुई तर्ज पर ये गीत।

उनकी पहली सफल हिंदी फिल्म कयामत से कयामत तक थी। बस इस फिल्म ने सफलता के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये फिल्म आमिर खान की भी पहली फिल्म थी। इस फिल्म का गीत पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा उदित नारायण जी ने गाया था। इस फिल्म के संगीत के लिए आनंद मिलिंद को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। चलिए सुनते हैं यही गीत।

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

दोस्तों, हिंदी सिनेमा में अगर 60 का दशक म्यूजिक के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है, तो 80 और 90 के दशक को अब भी इसकी सुरीली धुनों के लिए याद किया जाता है। इस जोड़ी ने अब तक 200 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दे दिया है।

उनकी सबसे पहली फिल्म थी 1982 में अब आएगा मजा। ये कॉमेडी फिल्म थी जिसमें फारूक शेख और अनीता राज ने काम किया था। इसके कई गाने लता मंगेशकर जी ने गाए थे। जैसे ही लोगों को पता चला कि इस फिल्म के संगीतकार आनंद मिलन हैं, बस लता जी के आशीर्वाद से इनकी डिमांड बढ़ती चली गई।

उदित नारायण की आवाज इन्हें शुरू से ही पसंद थी, तो इसलिए इनके ज्यादातर गाने उदित नारायण जी ने ही गाए। और दूसरी गायिका थी अलका याग्निक। अलका याग्निक भी इनके संगीत पर बराबरी से गाती रहीं। चलिए सुनते हैं इन्हीं का एक और गीत।

गोविंदा की दूल्हे राजा और कुली नंबर वन जैसी फिल्मों के गाने सुनने में बड़े हल्के फुल्के से लगते हैं, लेकिन ऐसे गाने संगीतबद्ध करना बहुत ही मुश्किल होता है।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

70 और 80 के दशक में जब LP कहा जाता था तो उसे लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स के साथ साथ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल भी समझा जाता था। इसका एक सीधा मतलब यह भी है कि उस दौर में ज्यादातर फिल्मों के जो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स निकलते थे उनमें से बहुतायत LP पर बतौर संगीतकार मौजूद होते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत कोड़ालकर और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा ने मिलकर संगीत के जिस अति लोकप्रिय युग का सृजन किया वो हिंदी फिल्मों के लिए आज धरोहर जैसा है। आइए दोस्तों सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ ये गीत।

अब इस बारे में तो कोई शक ही नहीं किया जा सकता कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी शायद अकेली ऐसी जोड़ी रही है जिसने लोकप्रियता के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जहां अपने आरंभिक दिनों में शंकर जयकिशन की धुनों से प्रभावित थे, वहीं उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में कार्य करने से पहले कुछ दिनों तक कल्याण जी आनंद जी के सहायक के तौर पर काम किया। स्वतंत्र रूप से संगीतकार बनने से पहले दोनों फनकार दूसरे बड़े संगीत निर्माताओं के लिए साज बजाया करते थे। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।

लक्ष्मीकांत एक बेहतरीन मैंडोलिन वादक थे, जबकि प्यारे लाल जुबिन मेहता से बुरी तरह से प्रेरित होकर वियना जाकर एक वायलिन वादक का करियर चुनने का मन बना चुके थे। हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में बनी नागिन के गीत जादूगर सैया छोड़ मेरी बैया और सचिन देव बर्मन की लाजवंती के कोई आया धड़कन कहती है मैं लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन बजाया था। आइए सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत।

कहा जाता है कि प्यारे लाल से अच्छा म्यूजिक अरेंजर फिल्म इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं। गौरतलब बात है कि प्यारे लाल के पिता राम प्रसाद एक बेहतरीन वायलिन कलाकार थे, जिनसे कल्याण जी, राजेश रोशन और हृदयनाथ मंगेशकर भी वायलिन और वेस्टर्न म्यूजिक के नोटेशंस सीखने जाते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि वाद्यों को सजाने की सर्वाधिक रचनात्मक शैली LP की बनाई धुनों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। आइए सुनते हैं उनका बनाया ये गीत।

0: कहा जाता है कि जब सारे दिग्गज संगीत निर्माता 60 के दशक के बाद में बेहद सफल तरीके से रुपहले पर्दे पर सक्रिय थे, तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को शुरुआती काम दिलाने और स्वतंत्र संगीतकार के रूप में स्थापित करने में मदद करने के लिए लता मंगेशकर ने अहम भूमिका निभाई। चलिए सुनते हैं उनका ये गीत।
1: अब नौ

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया, जैसे आसरा, आए दिन बहार के, प्यार किए जा, अनीता, फर्ज, मिलन, पत्थर के सनम, शागिर्द, नाइट इन लंदन, बहारों की मंजिल और बहुत सारी दूसरी फिल्में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

पियानो, एकॉर्डियन, मैंडोलिन, ऑर्गन, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, हारमोनियम, कॉन्गो, बोंगो, वायलिन, गिटार के साथ साथ सितार, सारंगी, सरोद, तबला, ढोलक, नाल, इन सभी का सफलतापूर्वक निर्वाह करते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपनी तर्जों को सजाने में लगे रहते। सैकड़ों फिल्मों के अत्यंत मनोग्राही संगीत से अलग उनको कुछ नया रचने में बहुत मजा आता था। आइए दोस्तों, सुनते हैं उनका ये गीत।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर, बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम आज के कलाकार में।
1: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना,

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूं आपकी अपनी ही दोस्त और इस खूबसूरत सफर की हम सफर आरती रॉय। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ बातें जुबान नहीं कह पाती, पर शायरी उन्हें बड़े सलीके से बयां कर देती है। और जब उन एहसासों को एक सुरीली आवाज का साथ मिल जाए तो वो गजल बनकर हमारी रूह में उतर जाती है। तो आज से मैं लेकर आ रही हूँ एक नया सिलसिला जिसका नाम है अल्फाज से एहसास तक। यहाँ हम एक खूबसूरत शेर से दिल के दरवाजे खोलेंगे और फिर उसी एहसास को गजल में ढलते हुए सुनेंगे। तो बस, थक कर लौटे हो या सुकून की तलाश में हो, अपनी सीट बेल्ट को धीमे से बांध लीजिए, क्योंकि जज्बातों का ये काफिला सफर को तैयार है। दोस्तों, इस प्रोग्राम का आगाज हम इश्क और गजल के बेताज बादशाह गालिब की गजलों और उनके कलाम से कर रहे हैं। गालिब का पूरा नाम मिर्जा असदुल्ला बेग खां था। उनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था। बाद में वो आकर दिल्ली में बस गए थे। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए इश्क, दर्द और जिंदगी की गहराइयों को इस तरह बयान किया कि उनके अल्फाज आज भी हर दिल में जिंदा हैं। उनका हर शेर एक जिंदा दिल आशिक की तरह इश्क की हर एक रस्म निभाता है। बकौल गालिब, उनको देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, उनको देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। और दोस्तों, गालिब के कलाम को चार चांद लगा दिए जगजीत सिंह जी की मखमली आवाज ने। मिलकर जैसे हो गया, क्या कहते हैं उसे, सोने पे सुहागा। लीजिए, आप भी लुत्फ उठाइए इस खूबसूरत शाहकार का। दर्द को लेकर दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गजल सुनिए, उनको देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। जगजीत सिंह की आवाज में।

दोस्तों, जिंदगी का फलसफा गालिब की जुबान से कुछ ऐसे बयां हुआ कि दिल का हाल दर्द से बेहाल हो जैसे। वो कहते हैं, कैदे हयात ओ बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। ये खूबसूरत गजल सुनिए हमारे जगजीत सिंह की सुनहरी आवाज में। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों।

दोस्तों, कुछ जख्म पूरी तरह से नहीं भरते और शायद सबसे ज्यादा दर्द वही देते हैं। गालिब साहब का अंदाजे बयां देखिए, फरमाते हैं, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खालिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तीरे नीम कश यानी आधा खिंचा हुआ तीर जो मेरे जिगर में फंस गया है और दर्द हो रहा है। यहाँ महबूब की नजर को तीर कहा गया है। जब वो पूरी तरह से नहीं मिलती तो अधूरापन और तड़प छोड़ देती है, बड़ी जानलेवा होती है। पूरी तरह से ना मिलने का दर्द पूरी तरह से मिलने से ज्यादा गहरा होता है। ये शेर बेपनाह मोहब्बत की उस हालत को बयां करता है जहां दर्द में भी एक लज्जत होती है, मजा होता है। चित्रा सिंह की आवाज में ये मशहूर गजल सुने, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता।

वालिब कहते हैं, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। ये आह जब फरिश्ता ऊपर लेकर जाएगा और कब वापस लाएगा। मोहब्बत में बड़ा वक्त लगता है मंजिल तक पहुंचने में, और ये भी जरूरी नहीं कि आह अर्श तक पहुंच ही जाए। ये गजल इंतजार और सबर की दास्तान है। मोहब्बत में जो भी बेचैनी होती है और वक्त का जो सिलसिला है, गालिब ने उसे बड़े हसीन ढंग से पिरोया है। कहते हैं, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मेरे साथ आप सुने वो एहसास जहाँ शिकवा भी है और उम्मीद भी। गालिब कहते हैं, हमें पता है आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, मगर डर ये है कि जब तक आपको हमारी कदर होगी कहीं बहुत देर ना हो जाए। ये खूबसूरत सी गजल सुने जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।

वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शबो रोज माह साल कहाँ। थी वो एक शख्स के तसव्वुर से, अब वो राना ये ख्याल कहाँ। ऐसा आसान नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ। इस गज़ल में गालिब पुराने वक्त को याद करते हैं, जब उनके पास फुर्सत थी, महबूब का साथ और दिल में जज्बात की हलचल थी। कहते हैं, इफ्रते कतरा है दरिया में फना हो जाना। गालिब यहाँ कह रहे हैं कि कतरे की सबसे बड़ी खुशी दरिया में फना हो जाने की है, और यही उसकी मंजिल भी है। और जब इंसान अपनी मैं या ईगो को मिटा देता है, तभी वो भी खुदा की सच्ची मोहब्बत को पाता है। फिर कहते हैं, मुश्किलों का हल भी यही है, जब मुश्किलें हद से बढ़ जाती हैं तो वो आदत बन जाती हैं और फिर तकलीफ देना बंद कर देती हैं। आगे गालिब कहते हैं कि रंज से खूंगर हुआ, रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। दोस्तों, गालिब हमें सिखा रहे हैं कि हौसला वो नहीं जो मुश्किलों से डरे, बल्कि हौसला वो है जो दुखों को इतना सहले कि दुख दर्द अपना दम तोड़ दें। सुनिए ये खूबसूरत कलाम जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में। वो फिराक वो विसाल कहाँ, वो शबो रोज़ माहो साल कहाँ।

दोस्तों, जब गालिब ने बहुत सुंदर एक शेर कहा है, था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, उड़ने से पहले भी मेरा रंग जर्द था। और फिर ये भी, हम भी तो दुश्मन, हम भी तो दुश्मन नहीं हैं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही। चित्रा सिंह की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सी गजल है, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। दोस्तों, ये आखिरी गजल सुनिए चित्रा सिंह की आवाज़ में।

दोस्तों, मिर्जा गालिब ने कहा था, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और आज की महफिल में हमने उन्हीं के अंदाजे बयां को महसूस करने की कोशिश की। गालिब के अल्फाज सिर्फ पुराने वक्त की दास्तान नहीं है, बल्कि आज भी हमारे हर एहसास की तर्जुमाई करते हैं। उम्मीद है कि उनकी शायरी की ये मिठास आपके दिलों में देर तक ताज़ा रहेगी। अब वक्त हो चला है आपसे रुख्सत लेने का। फिर मिलेंगे कुछ नए पुरअसरार अल्फाज और गहरे एहसासों के साथ। तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त आरती रॉय SN रेडियोज और रेडियो तांतिया भील से आपसे इजाजत चाहती हूँ। सुनते रहिए अल्फाज से एहसास तक। शब खैर, शुभ रात्रि।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टाइम भी रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: हूँ से आरजे भावना आपण हंगला भाइयों नु घरु घरु स्वागत करिए से आपरा झाबुआ ना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8

0: আমরা ঝাবুয়ানা সামুদায়িক রেডিও স্টেশন রেডিও 10.8 FM ঝাবুয়ানি আওয়াজ পর।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और हमारे किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि हम और आप देख रहे हैं गर्मी इतनी ज्यादा भीषण पड़ रही है। ऐसे में हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान साथी जिनका मन नहीं मानता है और वो सोचते हैं कि हम तो खेती में ही हमें पूरा समय व्यतीत करना है, और चाहे वो गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, या फिर बरसात का मौसम हो, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, सोचते रहते हैं कुछ नयापन करने के लिए। और बहुत सारे किसान साथी ऐसा करते भी हैं और कर भी रहे हैं। तो ऐसे में किसान साथी थोड़ा अपना भी ख्याल अवश्य रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने से हमारे किसान साथी यदि बीमार पड़ जाएंगे तो आगामी फसल कैसे करेंगे। हाँ, हमें आशा है कि किसान साथी हमारी बात को समझ रहे होंगे। और किसान साथी, इस बार चूंकि आपके जिले झाबुआ में पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन खुल गया है, तो नई नई जानकारी तो आप सुन ही रहे होंगे, और आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों की ये जो जानकारी है वो बहुत पसंद आ रही होगी। हम कोशिश करेंगे कि वो छोटी सी छोटी जानकारी हमारे किसान साथियों तक पहुंचाई जाए, जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो। अब हमारे किसान साथी चूंकि पथरीला इलाका है झाबुआ जिले का, और हमारे किसान साथी कम सीमित उनके पास खेती भी है, और जिनके पास ज्यादा खेती है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन जिनके पास कम खेती है वो क्या करते हैं कि खेती बस दो सीजन की खेती लेते हैं, ये बरसात के बाद जो खरीफ वाली है या रबी वाली फसल, दोनों फसलें लेते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है, ऐसे में किसान साथी संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी से परामर्श लेकर, आपके पास में केबीके है यानी कृषि विज्ञान केंद्र भी है, वहां पर जो संबंधित वैज्ञानिक बैठे रहते हैं वो आपके लिए तत्पर तैयार रहते हैं। और साथियों, आपके पास कम्युनिटी रेडियो है जिस पर आप जानकारी अपनी आदान प्रदान कर सकते हैं, साझा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसान की आय किस तरीके से दोगुनी हो, क्योंकि दुगनी तभी होगी हमारे किसान साथियों की आय जब हम वैज्ञानिक पद्धति की ओर मूव करेंगे, जब हम वैज्ञानिक खेती करना स्टार्ट करेंगे, नई नई पद्धति, नई नई वैरायटी के बीज, और स्प्रिंकलर से खेती करना या फिर ड्रिप इरिगेशन से खेती करना, तो विभिन्न प्रकार की संभावनाएं खेती में, और इसमें लागत भी कम आती है और मुनाफा अधिक होता है। तो हमारे किसान साथी समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हमें आशा है कि समझ गए होंगे, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। और अभी से चूंकि बरसात का मौसम जैसे ही आएगा तो हमारे किसान साथी क्या करेंगे, अभी से तैयारी करें, क्योंकि मनरेगा में बहुत सारा पैसा रहता है, मेड़ बंधान कर सकते हैं हमारे किसान साथी, जो ढालू उबड़ खाबड़ जमीन है उसको एक समतलीकरण उसका कर सकते हैं, जो हमारे किसान साथियों के लिए समतली जमीन है उन पर वो बागवानी लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं, तमाम प्रकार की संभावनाएं खेती में करें। तो किसान साथी करने के लिए यदि तत्पर हैं तो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी भी तत्पर हैं और हमारे वैज्ञानिक भी तत्पर रहते हैं आपके सहयोग करने के लिए। आपको बस उनके पास जाना है, समझना है, सोचना है, और हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना है। आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज हम एक नई पद्धति की खेती के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, वो है कि किस तरीके से जो हमारे किसान साथियों के पास छोटी छोटी जमीनें हैं वहां पर पॉली हाउस, चूंकि पॉली हाउस सरकार द्वारा अनुदान भी इसमें दिया जाता है, पॉली हाउस में टमाटर की खेती किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर की खेती यानी टमाटर सीजनेबल होता है और आपको पता है कि अहम खेती में से एक मानी जाती है टमाटर की खेती। तो ऐसे में किसान साथी, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कैसे संभालें, तो पॉली हाउस में किस तरीके से खेती कर सकते हैं टमाटर की, उस पर हम आज एक नजर डालेंगे। साथ साथ में एक सफल किसान की कहानी भी हम सुनाएंगे, साथ साथ में आधुनिक जमाने में हम किसान साथियों को किस तरीके से खेती कर सकते हैं, कौन सी योजना का लाभ लेकर हमारे किसान साथी खेती करते हैं कर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो तीन चार सेगमेंट होंगे। आज हम साथ साथ में मौसम आधारित जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन साथियों जानकारी उपलब्ध कराने से पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से वीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप लोग रेडियो अपनी बातें।

आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया बिल 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से भीली गीत को सुना, आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अब जानते हैं मौसम क्या कहता है, क्योंकि जब तक हम मौसम आधारित खेती नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा क्या कहता है मौसम। तो आने वाले 5 दिनों के दौरान तेज हवा, आंधी, तूफान चलने की संभावना देखते हुए हमारे किसान साथी, जिन किसान साथियों के पास कच्चे छत वाले पशुशालाओं हैं तो उनका गिरने का डर बना रहता है, इसलिए कच्चे पशुशालाओं की मरम्मत का कार्य अति शीघ्र शुरू कर दे। साथ साथ में कच्चे छत वाले पशुशालाओं के पशु सुरक्षित रहें। आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना बताई जा रही है। आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना भी बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 45 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना बताई जा रही है। रात का न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना बताई जा रही है। हवा की औसत गति 11 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें? आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना बताई जा रही है। साथ साथ में गर्म लू चलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई जिन्होंने सब्जी बोई है, उड़द मूंग भी की फसल उन्होंने बोई है, फलों के बगीचे उन्होंने लगाए हैं, तो हल्की हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर करते रहें। साथ साथ में मूंग में सफेद मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई फसल का निरीक्षण करें। नियंत्रण हेतु मिथाइल डेमोटोन और डाई मैथो एट दवा 2.0

0: FM, આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं. और अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं पॉली हाउस में हमारे किसान साथी किस तरीके से टमाटर की खेती कर सकते हैं. आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को. बने रहिए आपके आरजे मरीज के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम. आपका रेडियो अपनी बात है.
2: टमाटर की फसल बहुत ही नाजुक होती है, मौसम की मार इस पर बहुत ज्यादा पड़ती है, प्रभावित हो जाती है इसकी उपज. ऐसे में जरूरी है कि हम कोई विकल्प ढूंढें. विकल्प है पॉली हाउस. जी हाँ, टमाटर की खेती हम पॉली हाउस में कर सकते हैं, बेहतर उत्पादन हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है. किस तरह से ये संभव हो सकता है, आइए जानते हैं हमारे इस सेगमेंट के जरिए.
3: हमारे देश में टमाटर की मांग साल भर बनी रहती है. प्रधानमंत्री से टॉप फसलों में शुमार कर चुके हैं और ये केंद्र सरकार की ओर से चलाए जाने वाले ऑपरेशन ग्रीन्स का भी हिस्सा है. ज्यादा मांग की वजह से ही इसकी खेती आर्थिक रूप से काफी सुरक्षित मानी जाती है, यानी टमाटर कमाई वाली फसल है. लेकिन ज्यादा धूप, तेज हवा, अत्यधिक बारिश, ओले या मौसम दूसरे हमले इस फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसके अलावा टमाटर में कीटों और बीमारियों का भी खतरा बना रहता है. इसकी वजह से किसानों को फसल में कीटनाशकों और दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ जाता है. इससे न सिर्फ लागत बढ़ जाती है बल्कि गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है. पॉली हाउस लोहे और पॉलीथिन से बना छाया घर है, जो महंगी फसलों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं और उन्हें मौसम की मार से बचाता है. इन घरों में जलवायु को नियंत्रित करके बेमौसमी फसलें भी उगाई जा सकती है. बेमौसम फसलें हमेशा से ही ज्यादा मुनाफा देती है. पॉली हाउस में बोने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कई किस्में तैयार की हैं. पूसा रक्षित, पूसा टमाटर, संरक्षित ए, चेरी टमाटर, हिम शिखर, नवीन, हिम सोना, अभिलाष, शहनशाह, अर्का रक्षक और अर्का सम्राट. ये ऐसी किस्में हैं जो उन्नत भी है और लंबे समय तक फल देती है. टमाटर की खेती के लिए हल्की बलोई या बलोई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है. मिट्टी पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होनी चाहिए और पीएच मान 6 से 7. पॉली हाउस के अंदर खेत तैयार करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती. मिनी रोटावेटर या कल्टीवेटर से 2-3 जुताई काफी है. पहली जुताई के समय गोबर की खाद जरूर डाल दें. टमाटर उथली जड़ वाली फसल है और फल आने के बाद शाखाओं के लटक जाने या टूट जाने का खतरा रहता है, इसलिए समय समय पर पौधों को रस्सी से बांधकर सहारा देना चाहिए. बसंत और गर्मियों के दिनों में 4 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी है. आम मौसम में हर 10 दिन पर पानी दे सकते हैं. वैसे बेहतर होगा कि पॉली हाउस में टपक सिंचाई का इंतजाम करें. इससे न सिर्फ पानी की बचत होगी बल्कि लागत भी कम आएगी. पॉली हाउस चूंकि बंद संरचना है, इसलिए बारिश होने पर जल भराव की समस्या नहीं आती. टमाटर में रुपाई के पहले 4 हफ्तों के दौरान निराई गुड़ाई की जरूरत होती है. फसल में तापमान और नमी बनाए रखने के लिए फोगर सिंचाई भी कर सकते हैं. पॉली हाउस में चूंकि वातावरण नियंत्रित होता है, इसलिए पैदावार भी खुले खेत के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है. इसके अलावा आप साल भर टमाटर की फसल ले सकते हैं. कई विशेषज्ञों का मानना है कि पॉली हाउस सामान्य खेती के मुकाबले 4 गुना ज्यादा मुनाफा दिला सकता है.
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम. आपनो रेडियो आपड़ी बातें. रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं. और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी. और अभी आपने सुना पॉली हाउस में किस तरीके से टमाटर की खेती कर सकते हैं. अगला सेगमेंट है कि बागवानी में किस तरीके से हमारे किसान साथी आगे बढ़ सकते हैं. और साथ में सुनेंगे सफल कहानी हमारे एक किसान की. बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम. आपका रेडियो अपनी बात है. इसी बीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं इस प्यारे से वीली गीत को.

0: देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
1: खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा।
0: इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती है। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
2: किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी में कई ऐसी मिसालें हैं जो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। आज एक ऐसे ही किसान अमरनाथ से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कैसे उन्होंने कामयाबी का ये सफर तय किया है।
3: अमरनाथ का जन्म गांव खेड़ा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा में हुआ था। इन्होंने खेतीहर परिवार में जन्म लिया था, इसलिए जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे उनकी रुचि खेती से जुड़ती जा रही थी। उनके पिता ने उनका दाखिला स्कूल में कराया तो था, लेकिन पेड़ों की छांव में पढ़ते समय भी अमरनाथ के दिमाग में खेती ही गूंजती रहती थी। पुराने दिन की वे यादें आज भी वे भूले नहीं है। अमरनाथ बचपन से ही अपने पिता के साथ खेतों पर जाते थे। उन्होंने देखा कि किसान किस तरह खेतों में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जितनी मेहनत वो करता है उसके मुकाबले किसानों को मजदूरी तक नसीब नहीं होती है। इसी कारण अमरनाथ ने कई जगह नौकरी भी की, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ खास तरक्की नहीं मिली। आखिरकार अमरनाथ ने खेती को चुना और इसमें लगातार मेहनत करने लगे। वो दिन रात खेतों पर काम करते, बुआई बिजाई से लेकर कटाई तक सारे काम वे खुद ही करते हैं। काम करने की लगन और हमेशा कुछ नया करने की जिद ने अमरनाथ के लिए नए रास्ते बनाने शुरू कर दिए। उन्हें कहीं से पता चला कि सरकार किसानों के लिए अनेक सुविधाएं और ऋण मुहैया कराती है, तो बस फिर क्या था, अमरनाथ ने सरकार से खेती करने के लिए ऋण लेकर अपने काम को आगे बढ़ाया। उन पैसों से ट्रैक्टर खरीदा, धान काटने की मशीन खरीदी। सरकार की तरफ से मिली इन सुविधाओं से खेती से काफी मदद मिली। इन सभी मिली सुविधाओं से अमरनाथ की समझ भी बढ़ी। उन्हें ये समझ आने लगा कि परंपरागत खेती को छोड़ नई तकनीकों को अपनाकर ही किसान खेती में सफलता हासिल कर सकता है। लिहाजा वे नई तकनीकों के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने लगे। अमरनाथ ने अनेक राज्यों के सेमिनारों में शिरकत की और वहाँ अपने फसलों का प्रदर्शन किया और उसके लिए अमरनाथ को इनाम भी मिला। अमरनाथ खेती से जुड़ी बारीकियों और नई तकनीकों को जानने के लिए शहरों के चक्कर भी लगाते थे। इसी बीच उनका नासिक जाना हुआ था। वहां जाकर उन्होंने उन्नत किस्म के प्याज की उपज के विषय में विस्तार से जानकारी इकट्ठी की। उन्होंने प्याज की खेती करनी शुरू कर दी और उसमें उन्हें अपार सफलता भी मिली। सेमिनारों में उनके प्याज को खूब सराहा गया और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। अमरनाथ ने फसल चक्र को अपनाया। उन्होंने एक साथ कई फसलें लेनी शुरू की, प्याज के साथ गन्ना और चना भी लगाया, जिससे उनकी आय में भारी इजाफा हुआ और प्रगति के नए रास्ते भी खुलते गए। गरीबी के साए में पले बढ़े अमरनाथ आज अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बलबूते आज सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं।
0: ये पूरा प्राकृतिक है। अधिक जानकारी के लिए
2: बता दें आपको कि हमारी जो सरकार है वो आपकी उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, कई अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम है कृषि अवसंरचना कोष। इस कोष का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, हमारे किसानों को यानी कि आप लोगों को इससे किस तरह का लाभ मिल सकता है, जानने के लिए आइए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट पर।
4: लेकिन साथियों, उनकी बातचीत को सुनने से पहले सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपना रेडियो आपनी।

कृषि अवसंरचना कोष केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बनाई गई एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद कृषि अवसंरचना प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए माध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना, उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन उपलब्ध करना, लिए गए ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारित तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनिटिक मानदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 यानी 10 वर्ष तक निर्धारित की गई है।

0: योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स पात्र हैं। ये ऋण 4 वर्षों में वितरित करने का लक्ष्य है। कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म सभी योग्य संस्थाओं को ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन से पहले अलग अलग बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऋण दरों के बीच तुलना करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं।
1: किसान भाइयों बहनों, अथर्ववेद में लिखा है कि ये धरती हमारी माँ है और हम सभी इसके पुत्र हैं। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, वैसे ही ये धरती भी हम इन

0: 93.8 FM આપણું રેડિયો આપણી વાતે
1: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और महत्वपूर्ण योजनाएं साथ साथ में हमारे सफल किसान की कहानी और साथ साथ में पॉली हाउस में किस तरीके से हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं उसके बारे में हमने जाना समझा और सोचा। साथियों हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अब समझ गए होंगे कि आपके लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है और साथ साथ में योजना पर भी काम कर रहे हैं। और साथियों यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए हो तो केवीके अपना झाबुआ में बना हुआ है, वहां पर संबंधित जो वैज्ञानिक रहते हैं उनसे परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि पॉली हाउस की योजना में भी अनुदान दिया जाता है, तो किस तरीके से लाभ लेना है उससे संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में नई पद्धति से नए बीजों का चयन और किस तरीके से जैविक पद्धति से हम खेती करना चाहते हैं, किस तरीके से बागवानी लगाना चाहते हैं, तो आप संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। कि हमें आशा है कि हमारे किसान साथी इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और हम कोशिश करते रहेंगे कि किसान साथियों को वो सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी है। एक बार फिर से आपको हम बता देना चाहते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, अपना ख्याल रखें, पशुओं का भी विशेष तौर पर ख्याल रखें क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ऐसे में पशुओं को बार बार पानी पिलाएं, साथ में उनको शरीर पर ठंडक बनाए रखें, नहलाएं उनको, नदी यदि आसपास है तो वहां पर नदी में भी नहला सकते हैं, साथ साथ में मेड़ बंधान पर विशेष तौर पर ध्यान दे सकते हैं हमारे किसान साथी। और साथ साथ में एक हम उम्मीद करेंगे कि इन कार्यक्रमों को सुनकर हम हमारे किसान साथी अपने जीवन में अपनी खेती में जरूर बदलाव करेंगे। और साथ साथ में एक बातचीत और फिर से दोहराना चाहते हैं कि जिन किसान साथी जो खेत पर काम कर रहे हैं वो विशेष तौर पर अपना जरूर ख्याल रखें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बार बार पानी पीते रहें, साथ साथ में तौलिया या गमछा अपने सर पर डाल के रखें जिससे आपको धूप ना लगे, और ज्यादा मेहनत ना करें, समय समय पर रेस्ट लेते रहें और अपना काम करते रहें। तो ये जानकारी जो आपको उपलब्ध कराई जा रही है वो आपको बता देना चाहते हैं, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको दी जा रही है। साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का, तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। फोन नंबर है हमारा 94251 3603 यानी 9425413603, इस नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का, आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM आपनो रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM
2: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान पंच भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथी कैसे हैं आप, हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम का इंतजार भी कर रहे हैं, और तो इंतजार की घड़ी अब खत्म है क्योंकि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM जो झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो लेकर आ गया है आपका मन पसंदीदार कार्यक्रम खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और खास तौर पर हम छोटे छोटे बिंदुओं पर बातचीत करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम स्टार्टअप पर जरूर बात करेंगे क्योंकि स्टार्टअप हमारे देश की एक महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक है कि स्टार्टअप में किस तरीके से हमारे किसान साथी एक आधुनिक पद्धति से वैज्ञानिक पद्धति से और नई नई तकनीकी से किस तरीके से खेती कर सकते हैं उस पर एक नजर डालेंगे। साथ साथ में पशुजन जो चूंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों के इस मौसम में खासतौर पर दुधारू पशु जो दूध देने वाले रहते हैं उनका ख्याल हम किस तरीके से रख सकते हैं, क्या खान पान उसका उनका होना चाहिए, उस विषय पर भी हम बातचीत

0: करेंगे खात और साथ में हम तीसरी बात बताएंगे जो हमारे कैलेंडर रहता है मासिक कैलेंडर, यानी इस माह में हम किस तरीके से अपने पशुओं को क्या कुछ देना चाहिए उस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ में एक राजस्थान के उन्नतशील किसान जिन्होंने पानी कम पानी वाली फसलें यानी गेहूं की प्रजाति लगाकर अपने खेती में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, यानी खेती में उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने बनाया था कि हम कम पानी वाली फसलों करेंगे और खास तौर पर उन लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया और आज उनका नाम सभी की जुबान पर रहता है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोता साथियों खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। खासतौर पर ये देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है और इस गर्मियों के मौसम में चूंकि अभी हमारे झाबुआ जिले के हमारे साथी किसान साथी घर पर बैठे होंगे, क्या कुछ कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको इस रिपोर्ट को हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: आज के युवा स्टार्टअप्स के जरिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें आर्थिक सहायता देकर सरकार भी इनका साथ दे रही है, तो वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्टार्टअप्स के कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट।
3: भारत बदल रहा है, देश के युवा अब एक नई बागडोर संभालने को तैयार है जिसमें नौकरी तलाश करने की परिपाटी को छोड़ते हुए नौकरी देने पर फोकस किया जा रहा है। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए सरकार भी अपने अहम कदम उठा रही है जिसमें स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वो खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है। स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करता है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है।
4: हम लोग एग्री स्टार्टअप्स को यहाँ पे इंक्यूबेट करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं एग्री स्टार्टअप्स के लिए जो कि भारत सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत एनरोल्ड है। और उन स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे कि यदि आपके पास अपना कोई स्टार्टअप का विचार है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप एक अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जो कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है जहां पर आप आकर उस आइडिया को कॉन्सेप्ट नोट बनाने के लेवल तक जा सकते हैं। तो वो उस तरीके के प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं। देन फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है और आप एक बेसिक लेवल पर हैं लेकिन आपको उसको फाइनल प्रोटोटाइप के लेवल तक नहीं ले जा पा रहे, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर फंडिंग्स भी एसोसिएटेड हैं। जो भी फंडिंग भी ग्रांट इन एड की तर्ज के ऊपर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तीसरे तरह के प्रोग्राम्स वो हैं जिनके अंदर आपका अगर एक प्रोटोटाइप रेडी है और आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 25 लाख तक का फंड हम प्रोवाइड करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम के तहत हम उसके अंदर फंड्स दे रहे हैं। उसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए भी हम वुमेन क्वेक करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसके अंदर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं कि वो कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे ले जा सके। तो कुछ प्रोग्राम्स और हैं जो हम किसान भाइयों के लिए करना चाहते हैं जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम अपने स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं जहां पे एफपीओस को जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को हमारे स्टार्टअप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की पहलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
3: कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही हैं। पूसा मेले में ऐसे ही कई इनोवेटिव आइडियाज दिखाई दिए जो कृषि को और बेहतर बना सकते हैं।
5: हमारे स्टार्टअप का नाम रावटेक लैब्स है और हम क्वालिटी एनालिसिस सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं ये एप्पल को स्कैन करने की मशीन बनाई है हमने, तो इसमें नॉन इन्वेसिवली बिना कट करे बिना जूस करे हम आपको बता सकते हैं कि इसकी मिठास कितनी है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कि ये कितने दिनों बाद सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और ये इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितनी है। सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने बनाई है, एक ग्रेन एनालाइजर भी बनाई है जिसमें गेहूं जैसे ग्रेन्स की आप प्रोटीन कंटेंट, ग्लूटेन कंटेंट नॉन इन्वेसिवली चेक करके देख सकते हैं।
3: हमने पूसा मेले में लगे एक स्टॉल में मिनी ड्रोन देखा। ये ड्रोन खेतों की रखवाली करने और सूचनाएं देने में सक्षम है। महज 8 से 10 हजार कीमत का ये ड्रोन किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है।
4: ये हमारा ड्रोन है, ये ड्रोन इनोवेशन के साथ हमने एसोसिएट करके ये चीज बनाया है। तो ये बेसिकली काम ये करता है, ये आपका सर्वेलेंस का काम करता है। जैसे आप इसको, ये आपके खेत में जाता है और आपके खेत में कोई भी मोशन होता है, कोई भी हलचल होती है, तो ये उस चीज को डिटेक्ट करता है और आपके फोन में इसकी फोटोज भेजता है। और इसमें स्पीकर भी लगा है, तो कोई एनिमल वगैरह आता है, जैसे अगर एक गाय आई है तो वो उसमें एनिमल किसी लायन का साउंड करेगा, तो लायन का साउंड करेगा तो उससे क्या होगा कि मतलब जो गाय है वो वहां से भाग जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो ये आपको कुछ 10,000 का पड़ेगा, एंड ये सब अलग अलग प्राइजेस है। ये आपको 6,500 का पड़ेगा, एंड बाकी सब ये 4,500 का आपको पड़ेगा। एंड या दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट। एंड किसानों को कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा वेबसाइट है www.fifarm.com, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। वहां पर आप लाइक साइट में जाके आप देख सकते हैं, काफी सारे सामान है हमारे वहां पे, तो आप वहां पे जाके गो आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
3: अब पढ़े लिखे युवा नए नए आइडियाज के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। युवा इनका लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
0: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना। कार्यक्रम में बहुत सारी बातचीत, अब बहुत सारे सेगमेंट हैं जो आपको बताने हैं। सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम, अपना रेडियो अपनी बातें।
3: गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं, अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। जब बात देश के उन हिस्सों की हो जहां अभी से तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे इलाकों में जरूरी हो जाता है कि पशु की हर तरह से समुचित सुरक्षा की जाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए पशुपालकों और किसानों को चाहिए कि वो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। कौन से हैं वो पहलू, इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने।
6: किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में हमें अपने दुधारू पशुओं का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम आ गया है और आगे तापमान में वृद्धि होने वाली है, तो ऐसे में हमें हमारे दुधारू पशुओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
7: देखिए, अभी सर्दी का मौसम गया है और अब गर्मी पूरे उत्तर भारत में शुरू हो गई है, बल्कि पूरे देश में ही गर्मी शुरू हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से सर्दी में हमें कुछ विशेष प्रकार के ध्यान रखने होते हैं इस अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके से इस गर्मी के मौसम में भी हमें कुछ बदलाव करने होंगे। जिस तरह हम खुद भी जाड़े के मौसम में सूट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरीके से पशुओं के लिए भी कुछ हमें बदलाव करने पड़ते हैं। तो अगर इसमें बात की जाए सबसे पहले, तो जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला में वातावरण कूल होना चाहिए, ठंडा वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस समय अब गर्मी बहुत अधिक हो जाएगी तो बहुत अधिक गर्मी के कारण से पशुओं में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। तो पशुओं में हीट स्ट्रोक ना हो उसको कैसे बचाना है, जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला के ऊपर आप कुछ इस तरीके की चीजें डाल दें, कुछ उसके ऊपर बोरे फट्टे इत्यादि बिछा दें कि जिससे उसकी जो छत है वो अधिक गर्म ना हो। अगर आपकी पशुशाला में बिजली की व्यवस्था है, पंखा चल सकता है, तो कोशिश करें कि आप वहां पर पंखा भी चला दें जिससे कि गर्मी को, तापमान को कम किया जा सके। दूसरा क्या है, जो पशुशाला के खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल के रखें जिससे कि हवा का पूरा आदान प्रदान होता रहे और बाहर से फ्रेश हवा पशुशाला के अंदर आए और अंदर की गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती रहे। और आपने अगर बोरी फट्टे कुछ टांग के रखे होंगे खिड़कियों के ऊपर तो उनको भी हटा दें। तीसरा क्या है, जो दिन का बहुत अधिक गर्म समय होता है तो उस समय पे पशुओं को बाहर धूप में ना निकालें, या तो सुबह के मौसम में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस समय, या शाम के मौसम में ही बाहर निकालें, धूप में ना निकालें, अधिकतर पशुओं को अपने छाई में रखें।
3: इसके अलावा गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखें, जिससे पशु के शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे और वो बीमारी के शिकार ना हो पाए। साथ ही आहार में क्या तब्दीलियां करें, आइए जानते हैं।
7: गर्मी के मौसम में हम उन्हें थोड़ा सा इस तरीके का आहार देते हैं कि जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला आहार हो, जिससे शरीर को थोड़ी गर्मी प्राप्त हो और जिससे कि वो ठंड के साथ में पशु लड़ सके। तो अब गर्मी के मौसम में उसको उतनी ज्यादा जो है उस तरीके के गर्मी पैदा करने वाले अनाज की आवश्यकता नहीं है या उतनी ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उसको हरा चारा दें, उसके साथ में थोड़ा भूसा खिलाएं और जो दलिया या खली देते हैं उसकी मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं अगर बहुत अधिक गर्मी है तो। और तीसरा बिंदु है इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वो पानी का। जो पानी है वो गर्म पानी पशु को ना पिलाएं, क्योंकि एक तो मौसम का वातावरण जो है पहले ही गर्म है, ऊपर से आप उसको गर्म पानी पिलाएंगे तो वो और अपने आप में समस्या बढ़ाएगा। तो कोशिश करें कि पशु को ताजा ठंडा पानी ही हमेशा पिलाएं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि पशु आपका हीट स्ट्रोक में आ रहा है, गर्मी की वजह से वो चारा उसने खाना थोड़ा कम कर दिया है, तो पशु को दिन में एक दो बार ठंडे पानी से नहलाएं, तो उससे भी पशु की जो हीट स्ट्रोक है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा आप जैसे बरसात का मौसम फिर आगे शुरू हो जाएगा तो उसमें कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, ब्लैक क्वार्टर है, एंथ्रेक्स है, ये सारी बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आवश्यक है इस मौसम में आप अपने पशुओं को नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलकर जो टीके लगवाए जाते हैं बीमारियों के, वो टीके भी लगवा लें, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी आगे बहुत अधिक हो जाती है, टेम्परेचर होता है, तो सभी प्रकार के बीमारियों के कीटाणुओं को पनपने के एक बहुत ही भरपूर वातावरण मिलता है और बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं। तो उनमें जो भी टीकाकरण है इस मौसम में लगने वाले, जो मैंने आपको नाम बताए, उनके टीके आप अवश्य लगवा लें और खान पान का विशेष ध्यान रखें, पशु को गर्मी से हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना है उसका ध्यान रखें। और इसके अलावा यदि कोई उसमें पार्टिकुलर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलें और उसका इलाज कराएं। हाँ, एक बिंदु और है, पशुओं में इस मौसम में एक्टोपैरासाइट्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, बाह्य परजीवी, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे टिक्स किलनी वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक से मिलकर और उसके बाह्य परजीवियों के लिए जो दवाई आती है साइपरमेथ्रिन वगैरह, उसका 2% घोल जो है वो ऊपर से लगाया जाता है, तो बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उसका प्रयोग करें। और पेट के कीड़े हो जाते हैं तो पेट के कीड़ों के लिए 3-4 महीने पे एक बार दवा दे देनी चाहिए, और इस समय गर्मी के मौसम में और अधिक बरसात आएगी तो संभावना रहती है पेट में कीड़े होने की, तो उसके लिए भी आप उसको डिवर्मिंग टैबलेट्स जो हैं वो खिला दें।
3: इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पशुपालक न सिर्फ पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगे बल्कि उनसे बेहतर दूध उत्पादन भी लेते रहेंगे।
8: पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक क्वार्टर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें।
2: ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जिसमें आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो गेहूं की अलग अलग विधि से बुआई करके गेहूं की अच्छी पैदावार ले रहे हैं और इसके साथ ही पानी की बचत भी कर रहे हैं। कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के जिला करौली।
3: हमारे देश में रबी की प्रमुख फसल है। इसकी बेहतर उपज लेने के लिए किसान अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे उतनी ही भूमि में बढ़िया पैदावार ली जा सके। हम गेहूं उगाने के कई तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं वो एक अलग ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है वो विधि, आइए जानते हैं। गेहूं की बाली को छू कर देख रहे ये है किसान शिवचरण मीणा, जो इस साल अपनी गेहूं की फसल को देख कर काफी खुश है। वजह भी साफ है, सीमित जगह, सीमित संसाधन और कम पानी में बढ़िया पैदावार, ऐसे में किसान का खुश होना लाजमी है। लेकिन शिवचरण ने ऐसा क्या किया जो उनकी पैदावार अपने इलाके में सबसे अच्छी हुई, जबकि राजस्थान की मिट्टी में खेती करना सामान्य खेती की तुलना में काफी कठिन है। लेकिन शिवचरण जी ने पहले समस्या को समझा और फिर समाधान निकाला। सबसे पहले जानते हैं उनकी मिट्टी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
9: मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खेत है बहुत क्षारीय था और इस क्षारीयता को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए हम बहुत सोच विचार किया। फिर किसान डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमें मालूम चला कि खेती को कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ कृषि अधिकारियों से हमने सहायता ली तो हमने देखा कि जमीन का सबसे पहले वाटर लेवल होना जरूरी है। तो हमने अपने जॉन डियर का वाटर लेवलर मशीन को खरीदा, उससे खरीदने के बाद इस खेत को वाटर लेवल किया और वाटर लेवल करने के बाद में हमने इसमें देसी खाद और सरसों का डीकम्पोज करके उसका जो डंठल थे उसको इसमें मिलाया। उसके बाद हमने इसमें करीब 18 इंची गहरी एमबी प्लाऊ से जोत निकाली। उससे जमीन की जो सख्त मिट्टी है नीचे 6 इंची के नीचे, जिसको कभी किसान जोतता नहीं है, उसको तोड़ने के बाद में और मिट्टी पलट होने से इसमें पानी सोर्सिंग के लिए जमीन को बहुत अच्छा हो गया, जिससे ये अच्छे से पानी सोख सकती थी और उसमें फसल का गड़ना ये खत्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें रोटावेटर लगाया और रोटावेटर लगाने के बाद जमीन एकदम भुरभुरा करके गेहूं के लिए हमने इसको तैयार किया। जो भी खाद हमने इसमें मिलाना था वो हमने मिट्टी में पहले ही मिला लिया था रोटावेटर से पहले।
3: शिवचरण जी ने इस तरह से तो खेत को उपजाऊ बना लिया, लेकिन समस्याएं अभी भी दस्तक दे रही थी और वो थी पानी की कमी। इसके लिए उन्होंने गेहूं की खेती की नई तकनीक का इस्तेमाल किया और वो थी बेड बनाकर गेहूं की बुआई करना। ये देखने और सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके परिणाम काफी सुखद रहे। तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में।
9: हमने बेड प्लांटर मशीन से इसमें 1 बीघा में 7 किलो बीज डाला है और उस 7 किलो बीज शुरू में तो बहुत कम लगा, लेकिन उसके बाद जब हमने इसमें दूसरा पानी 20 दिन बाद दिया तब वो अपना रिजल्ट दिखाने लगा, जिसके बाद हमने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट पर बीघा में 1 थैली 5 किलो की और गंधक 5 किलो इसमें डाला। उसके बाद खेत में कोई पौधे को एकदम विकास बहुत शानदार रहा, क्योंकि बेड पर होने के कारण इसमें क्या होता है कि पानी जड़ें जो पानी की तरफ ज्यादा जाती हैं, क्योंकि पानी इसके जड़ों में रहता है नीचे लाइन में और पेड़ ऊपर रहता है, तो पानी हमेशा पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ दौड़ती हैं। तो पानी हम इसमें नीचे दे रहे हैं तो इसकी वजह से जड़ों का विकास ज्यादा रहा और उससे पौधे का सर्वांगीय विकास हुआ।
3: आइए अब जान लेते हैं इस तकनीक से होने वाले फायदों के बारे में।
9: हमने 33 किलो बीज की बचत करी। उसके बाद पानी इसमें आधे से भी कम लगता है, क्योंकि 80% जमीन पे तो बेड बन जाते हैं, अब 20% नालियां रहती हैं, तो 20% नालियों में ही पानी देना है, जिससे अपन को सिर्फ उसमें नमी ही मिलती है पौधे के लिए और पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, पौधे को सिर्फ नमी की जरूरत होती है। और इस पौधे की ये खासियत और है कि ये बेड पर होने के कारण ये गेहूं कभी प्रकृति प्रकोप या हवा से गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो अपन को इसकी पूरी फसल मिलेगी। अगर पौधे अपन गेहूं तो अच्छे पैदा भी कर लेते हैं लोग नॉर्मल भी किसान, लेकिन प्रकृति प्रकोप और हवा से उसको बचाया नहीं जा सकता अच्छा गेहूं, और गिरने के बाद गेहूं का प्रोडक्शन 50% से कम रह जाता है। तो सरकार भी यही बताती है कि पानी बचाना चाहिए खेती में, और पानी बचाएंगे तो वाटर लेवल है जमीन का वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और खेती अपन कम पानी से ड्रिप्स के द्वारा या फवारे के द्वारा या बेड प्लांटर मशीन के द्वारा बहुत कम पानी में अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें हमने कोई क्यारी नहीं बनाई, ये वाटर लेवल होने के कारण इसको हमने कतारों में लाइनों में बांट दिया खेत को, तीन चार लाइनों में, जिससे हम दो दो घंटे में पानी का स्रोत बदल देते हैं। बाकी इसमें रात भर हमें खड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसान रात में भी मोड़ता है पानी, दिन में भी मोड़ता है,

0: तो उसको रात में बड़ी समस्या होती है सर्दियों में। तो इस विधि से करने से हम बहुत संतुष्ट रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन बाकी गेहूं से 20-25% ज्यादा रहेगा। इससे हमें साहब कम से कम आधा खर्चा आया है नॉर्मल पद्धति से गेहूं में और पानी में, और प्रोडक्शन हमारा 25% ज्यादा रहा है। यानी इसमें गेहूं 20 से 22 क्विंटल के लगभग बैठेगा और नॉर्मल पद्धति से 12 से 15 क्विंटल से ज्यादा नहीं बैठ सकता।
1: विशेषज्ञों से ली गई सलाह से शिवचरण जी के खेतों की तस्वीर बदल रही है। उनकी इस कामयाबी के साक्षी बने बाकी किसान भी अब इसे अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।
2: अब तक देखा होगा कि बुवाई की पद्धति अलग अलग होती है। एक किसान छिड़कने वाली विधि से बुवाई करता है, दूसरा सीड ड्रिल से बुवाई करता है, लेकिन एक ये जो पद्धति है अभी अपनाई है, ये नई टेक्नोलॉजी और अच्छी जो उन्नत किसान है वो इस पद्धति को अपना रहे हैं। इसको कहते हैं बेड कल्टीवेशन। बेड कल्टीवेशन में हमें काफी फायदा है। इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, पानी की मात्रा हमें बहुत कम उपयोग में लेनी पड़ती है और फसल बहुत ही अच्छी इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर फसल उपजाऊ होती है। मैं किसान साथियों से ये निवेदन करता हूं कि पुरानी टेक्निक से हटके और ये टेक्निक अपनाएं। ये जो फसल की है, ये शिवचरण मीना जी ने अपने खेत में नई टेक्नोलॉजी से ये फसल का उत्पादन किया है। मैं इससे प्रभावित होकर सब किसानों को ये बताना चाहता हूं कि एक बार देखें और ये ही तरीका आप अपनी खेती में अपनाएं, जिससे कि आपको पैसे की, खाद की, पानी की और बीज की सारी बचत हो और उपज इसमें अच्छी आप प्राप्त करें।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: जब भी बात आती है कृषि के क्षेत्र की तो इसमें बदलाव के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि हमारे पर्यावरण को स्वस्थ बनाया जा सके, देश की मिट्टी को भी मजबूत बनाया जा सके और साथ ही साथ हमारे किसानों की उन्नति हो सके, हमारे किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके। बता दें इसी दिशा में एक प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसे नाम दिया गया है अक्षय कृषि। जी हाँ, अक्षय कृषि परिवार द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई है जिससे आप जान सकते हैं कि हमारे देश की मिट्टी को हम स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो हमें अच्छी गुणवत्ता वाली उपज भी मिलेगी, लागत में भी कमी आएगी। तो क्या है ये अक्षय कृषि, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
1: ऋग्वेद में कहा गया है, कृषि मित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्य मानः, अर्थात कृषि करो और सम्मान के साथ धन अर्जित करो। ये शब्द किसानों के लिए कितने सुखद हैं। कृषि शुरू से ही हमारी सभ्यता की समृद्धि का प्रतीक रही है जिससे धरती का, मानव जीवन का और धरा पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का पोषण होता आया है। लेकिन खेती की कुछ बदलती तकनीकों ने प्राकृतिक खेती को हाशिए पर ला दिया है। एक बार फिर हमें जागरूक होने की जरूरत है, प्राकृतिक खेती के महत्व को समझने की जरूरत है और इसके लिए सबसे पहला कदम है लोगों में जन चेतना लाना। इन्हीं उद्देश्यों को पाने के लिए अक्षय कृषि अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत 2 मई को उपराष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में अपने निवास पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा भूमि सुपोषण और संरक्षण पर चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विषयों से संबंधित प्रकाशनों का अनुवाद हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए जिससे आम किसान उनसे लाभान्वित हो सके। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि देश के एक बड़े भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्कन के क्षेत्र में मिट्टी के सूख कर रेतीली बनना गंभीर चिंता व्यक्त का विषय है। एक अनुमान के अनुसार हर साल प्रति हेक्टेयर 15 टन मिट्टी नष्ट हो रही है। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे फिर से स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अधिक प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है और उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। देश के अधिकांश राज्यों में ज्यादातर भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है। भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की नमी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहे हैं। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। ऐसे में मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है बल्कि भूमि की जैविक संरचना को बचाया जा सकता है।
2: विगत वर्ष 2021 में भूमि के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया आपका यह अभियान सर्वदा अभिनंदनीय है। मुझे यह जानकर विशेष संतोष है कि आपके इस अभियान में 33 राष्ट्रीय संगठन भी जुड़े, अपने देश के 20 राज्यों में लगभग 18,000 स्थानों तक पहुंचकर वह इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता पैदा की। राष्ट्र हित में आपके प्रयास सफल हो, मेरे हार्दिक शुभकामना। देश के एक बड़ा भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र में मिट्टी सूख कर रेतली बन रही है। फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है, भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की समी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहा है। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों का कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। कृषि में रसायनों का प्रयोग से भूमि पर दुष्प्रभाव एक वैश्विक समस्या है, इट ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में अगले 20 वर्षों में अनाज की पैदावार 40% कम हो चुकी होगी और आबादी लगभग 10 मिलियन तक बढ़ चुकी होगी। भारत भी इस आपदा से अछूता ना रहेगा। दिस इज ए रियल वार्निंग टू ऑल ऑफ अस। इसलिए आवश्यक है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे पुनः स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के नगन प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है, उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गोमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है, बल्कि भूमि के जैविक संरचना को बचाई जा सकते हैं।
1: इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आग्रह किया कि कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक जैविक खेती को शामिल किया जाए।
2: हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार सभी सदियों तक कृषि केंद्रित रहा है। भारतीय शास्त्र में कहा गया है, जीव जीवनम कृषि, अर्थात जीव का जीवन ही कृषि पर आधारित है। कृषि हमारा संस्कृति प्रकृति से अलग नहीं हो सकती। भारतीय परंपरा में कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे पराशर कृति कृषि पराशर, पराशर तंत्र, सुरपाल कृत वृक्षायुर्वेद, मलयालम में परशुराम कृत कृषि गीता, सारंग धरकीरी की उपवन विनोद आदि। मैं अपेक्षा करता हूं कि कृषि शोध संस्थान प्राकृत कृषि के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करेंगे और किसानों को हमारी प्राचीन पद्धतियों से परिचित कराएंगे। कृषि विश्वविद्यालय जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करें और कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करें। सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक कृषि जरूरी है।
1: प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के सकारात्मक प्रयासों से जुड़े मनोज सोलंकी जी का कहना है कि हम अपने इस प्रयास और पुस्तक के माध्यम से ज्यादा किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे धरती को बड़े पैमाने पर संभालने की जिम्मेदारी उठाई जाए।
3: भारतीय कृषि का मूल जो चिंतन है, उस चिंतन को आधार को लेके जो प्राकृतिक कृषि पूरे देश में बढ़ोतरी हो, उसके लिए अक्षय कृषि परिवार जो कार्य कर रहा है, उसका एक भाग रूप आज भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान का ये एक विशेष सांग का जो विमोचन है वो आज हुआ है। और इस विशेष सांग में भारत का जो भूमि के प्रति जो समझ है वो, और किसानों की जो प्राकृतिक खेती की जो समझ है वो, जो प्रकृति के आधार से है, उस सब को सम्मिलित करते हुए पूरा बुक का लेखन हुआ है। और लेखन के आधार से ये बुक है, ये विषय को पूरे भारत में प्रारंभ होगा। और ये बुक का जो कंटेंट है वो कई लोगों के इस कार्य को आगे ले जाने के लिए कार्य आएगा, काम में आएगा। और जो कृषक जो इस कृषि करना चाहते हैं उसको भी इसमें से काफी मार्गदर्शन मिलेगा। और आने वाले समय में प्राकृतिक कृषि आगे ले जाने के लिए जो कई साइंटिस्ट, कृषक साइंटिस्ट सब लगे हैं, उसको एक बल मिलेगा और ये विषय धीरे धीरे आगे बढ़े, उसके लिए ये भूमि, ये जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है वो काफी प्रभावशाली रहेगा।
4: अक्षय कृषि परिवार की ओर से भूमि सुपोषण विशेषांक का विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री वेंकैया नायडू जी के करकमलों द्वारा यहाँ पर किया गया है। उपराष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आदरणीय कृषि मंत्री जी, पूज्य स्वामी काड़ सिद्धेश्वर जी, मनोज भाई सोलंकी और माननीय भागैया जी उपस्थित थे। यह विशेषांक की कल्पना गत 5 वर्ष से चल रहे प्रयासों की फलस्वरूप यह विशेषांक की निर्मिति हुई है। सर्वप्रथम अक्षय कृषि परिवार ने विभिन्न लोगों के, मुख्यतः किसानों के, जो प्राकृतिक कृषि के साथ कार्य कर रहे हैं, ऐसे किसानों के अनुभवों के प्रलेखन का कार्य प्रारंभ किया। साथ साथ में प्राकृतिक कृषि से जुड़े वैज्ञानिक, सामाजिक संस्थाएं, शोधकर्ता, ऐसे सभी लोगों के साथ भारत में वार्तालाप किया। इस वार्तालाप में जो ध्यान में आया कि भारत में कृषि भूमि का क्षरण अत्यंत तेज गति से हो रहा है। इसको ध्यान में रखकर भूमि सुपोषण एवं संरक्षण जन अभियान किया गया और उस जन अभियान के अगला चरण यह भूमि सुपोषण का विशेषांक निर्मिति यह हुआ। इस विशेषांक में 17 आर्टिकल्स समाहित किए गए हैं। आज विद्यमान में भूमि को से लेकर जो एक सॉइल की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, हम लोग भूमि के एक समग्र संकल्पना को इस बार चर्चा में लाना प्रारंभ करना चाहते हैं। भूमि सुपोषण यह एक समग्र संकल्पना है। इसको हम लोगों ने भारत के अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चल रहे प्रयासों का सम्मेलन इसमें किया गया है। हमारा परंपरागत ज्ञान, हमारे कृषकों के पास जो मौखिक ज्ञान की परंपरा है, वो भारत के उत्सव और त्योहार, भारत के देशज बीज, भारत के बैल आधारित यंत्र, ऐसे समग्र लोगों समग्र विषयों को सम्मिलित करते हुए यह विशेषांक की निर्मिति की गई है।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरू रेडियो आपड़ी बातें।
1: पशुपालन शुरू से ही किसानों की समृद्धि का प्रतीक रहा है। पहले के समय में जिसके पास जितने ज्यादा पशु वो उतना बड़ा किसान या पशुपालक माना जाता था। हालांकि आज तस्वीर कुछ अलग है। आज समृद्धि का आकलन पशुओं की नस्ल से होता है। समय के साथ पशुपालन के तौर तरीके बदल रहे हैं। किसान कम पशुधन में भी बेहतर मुनाफा कमाने के तरीके आजमा रहे हैं। बेहतर उत्पादन के लिए पशु के आहार आवास से लेकर उन्हें सही चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि अब दुधारू पशु केवल दूध के लिए नहीं है बल्कि दूध से बने उत्पाद जैसे घी, मक्खन, दही, पनीर, खोया, मिल्क पाउडर बनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं।
6: पशुपालन क्षेत्र में अगर देखते हैं तो नॉर्मल हम जब बात करते हैं, आय की बात करते हैं, वो नॉर्मल उत्पाद जो होता है जैसे दूध होता है, जैसे अंडे होते हैं, अगर मुर्गी रखते हैं तो अंडे होते हैं, और मुर्गियों से भी मांस का उत्पादन हो सकता है और भेड़ बकरियों से भी मांस का उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, ये तो नॉर्मल आपका इनकम पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वैल्यू एडिशन का भी एक चीज होता है। जैसे हम नॉर्मल दूध बेचते हैं वो अगर 40 या 50 रुपए में बेच रहे हैं, पर अगर उस दूध से हम पनीर बना लेते हैं या घी बना लेते हैं या खोआ बना लेते हैं या इवन दही बना लेते हैं या श्रीखंड बना लेते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा इनकम बढ़ जाती है, जो कि भारत सरकार की कुछ योजनाएं के तहत इसका भी जिक्र किया गया है। जैसे हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक स्कीम भारत सरकार चला रही है जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये स्कीम है। तो उसमें ये दिया जाता है, कोई अगर फार्मर हो या फार्मर इंडिविजुअल फार्मर हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से हो, SHG से हो या ग्रुप 8 के कंपनीज हो, तो ये सारे चीजें हैं, अगर इन कैटेगरीज में आते हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, जैसे वो खोआ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं या उसके साथ दही या और डेयरी प्रोसेसिंग आइसक्रीम बना सकते हैं।
1: साथ ही इनके गोबर और मूत्र से जैविक खाद और कीटनाशक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई संस्थाएं गोबर का इस्तेमाल कई तरह की सजावटी चीजें बनाने में कर रही हैं, जिसने मुनाफे को कई गुना कर दिया है। वहीं अन्य पशुओं जैसे भेड़ बकरी को, जिन्हें मांस के लिए पाला जाता था, इनसे मिलने वाले मांस को प्रोसेस करके भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इस तरह के कदम में सरकार भी सहयोग कर रही है।
6: मीट एंड मीट प्रोसेसिंग की बात करें, जैसे हम नॉर्मल मांस खाते हैं, मांस के साथ अगर वो कुछ एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे सॉसेज हो गया, नगेट्स हो गए, अगर ये सब बना सकते हैं उसके लिए, वो प्रोसेसिंग के लिए भी इस स्कीम के तहत प्रोविजन रखा गया है। कोई भी अगर उद्यमी इससे इस स्कीम के जरिए जुड़ता है तो उसको जो भी लोन कंपोनेंट है वो लोन कंपोनेंट पे हम भारत सरकार की तरफ से 3% की छूट देते हैं।
1: इस तरह किसान पशुपालन में संभावनाओं को पहचान कर सही दिशा में प्रयास करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं।
0: किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे पशुपालक कैलेंडर पर। तो वर्तमान समय में किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं जिससे आपके पशु स्वस्थ रह सके, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर।
1: अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दे या पानी में मिलाकर दे। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
0: खेती किसानी के क्षेत्र में किसान भाइयों बहनों प्रतिदिन कुछ नया हो रहा है, हमारे किसान कुछ अलग कर रहे हैं, युवा भी खेती किसानी की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और अपनी कड़ी मेहनत से बता दें आपको सफल भी हो रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर।
1: कुछ उत्पाद उस स्थान की पहचान बन जाते हैं जहाँ वो पैदा किए जाते हैं और उनमें मौजूद पोषक तत्व उन्हें हमारे आहार का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन देश के हर कोने में

0: फसल के बारे में जानकारी। अमल फार्म की इस पहल से हम उन किसानों को भी जान पाएंगे जो खेत में पसीना बहाकर उन फसलों को बनाए रख रहे हैं जो खास पहचान बन चुके हैं। आज का युवा डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने उत्पाद को सुलभ बाजार उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऐसे में अमल फार्म से प्रेरणा लेकर किसान और युवा वर्ग दोनों लाभ ले सकते हैं।
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से जो बातचीत हुई उसको सुना और जाना किस तरीके से हमारे जो सफल किसान थे उन्होंने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, किस तरीके से गेहूं की नई नई तकनीकी से हम अपनी खेती को कर सकते हैं। चूंकि हम अगर झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ जिले में पथरीला इलाका है, हम एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस पर अपनी कृषि विस्तार अधिकारी से सलाह ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

0: दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी के रंग आपकी सेहत के संग के प्रोग्राम में। आज हमारे साथ डॉक्टर सुनीत लोकवानी साहब हैं, जो एक सीनियर कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट यानी कि रक्त रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर सुनीत लोकवानी HCG कैंसर सेंटर इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहां पर मरीजों का पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी की बातचीत हम डॉक्टर सुनीत से करेंगे। डॉक्टर सुनीत आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। आई वुड सिंसियरली लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना एक परिचय दें जिससे कि हमारे सुनने वाले आपको जान पाए पहचान पाए।
1: नमस्ते गोयल साहब, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपका दूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके रेडियो प्रोग्राम पे बात कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके इस आइडिया का पार्ट बन सका कि अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है। और मेरा काफी इंट्रोडक्शन तो आपने दे ही दिया है। मैं रक्त रोग एवं कर्क रोग विशेषज्ञ हूँ, HCG कैंसर सेंटर इंदौर में कार्यरत हूँ। और आई प्राइमरीली अटेंड या मैं ज्यादातर रक्त रोगों में, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैंसरस या नॉन कैंसरस, जैसे कि थैलेसीमिया या सिकल सेल, और कैंसरस जैसे कि ब्लड कैंसर होते हैं, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, माइलोमा। और इसके अलावा जितने भी कर्क रोग होते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी के, जिनमें पार्ट रहता है, जिनमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और ऐसी विद्याओं से इलाज होता है, उसमें मेरी डिग्री है और वही मैं प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अलावा मेरी विशेषज्ञता पेन पैलेटिव केयर और ICU एक्सपर्टीज भी है, और वही प्रैक्टिस मैं यहाँ HCG में कर रहा हूँ। अगर आप में से कभी किसी को मेरी सेवाओं की जरूरत पड़े तो प्लीज याद रखें।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना परिपक्व और इतना डिटेल्ड और इतना साफ सुथरा सा इंट्रोडक्शन हमारे सुनने वालों के लिए सचमुच बहुत काम का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस बातचीत को शुरू करते हुए एक बिल्कुल ले मैन के लिए, एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति के लिए हम अगर बात करें, मैं मानता हूं दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, डिजिटलाइज हो चुकी है, गूगल बाबा बहुत लोगों को बताते रहते हैं चीजें, लेकिन कैंसर के बारे में भ्रांतियां बहुत हैं। लोग आपस में बात करके बहुत समझदार बन जाते हैं, लेकिन दरअसल किसी विशेषज्ञ से बात करके ही सही जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले ही बात जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब की, क्योंकि आप हेमेटोलॉजिस्ट हैं, रक्त रोग विशेषज्ञ हैं, तो वहीं से शुरू करते हैं। पुराने जमाने से सब लोग फिल्मों में देखते आए कि साहब ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर मतलब खत्म, सब कुछ ओवर, मतलब बड़ा उसको मेलोड्रामेटिक बना के और बड़ा ही उसका इमोशनल करके रोना धोना शुरू हो जाता था। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि थोड़ा सा ब्लड कैंसर को समझाएं, क्योंकि मुझे ये पता है कि ब्लड कैंसर कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान बीमारी है जिसको बड़े आराम से ट्रीट किया जा सकता है।
1: बहुत सही, मैं ये कहने वाला था कि आपके प्रश्न से ही आपका उत्तर उठाते हैं। पुराने जमाने में जैसे कहते थे, तो उसको पुराने जमाने में ही रहने दीजिए, उसको वहां से नहीं।
0: बिल्कुल सही।
1: तो आज से 60-70 साल पहले ब्लड कैंसर लाइलाज होता था
0: जी।
1: आज के जमाने में मैं अगर आम भाषा में बात करूं तो कई प्रकार के ब्लड कैंसर हैं, ल्यूकेमिया, और सबसे कॉमन जो कहा जाता है वो ल्यूकेमिया होता है, WBCs का जो सेल्स का होता है
0: जी।
1: दूसरे जो होते हैं लिम्फोमा और माइलोमा, आम भाषा में उनको भी ब्लड कैंसर की संज्ञा दी जाती है, पर वो काफी हद तक मैनेजेबल है और इनफैक्ट क्योरेबल भी है
0: जी।
1: लेकिन जब ल्यूकेमिया की बात करें तो ल्यूकेमिया में चार कॉमन प्रकार होते हैं, जिसमें से दो को अक्यूट की संज्ञा दी गई है, दो को क्रॉनिक की संज्ञा दी गई है
0: जी।
1: जो क्रॉनिक ल्यूकेमियाज होते हैं उनमें एक में आपको सिर्फ एक दवाई लेनी है, बीपी, डायबिटीज जैसी, पूरी उम्र आपका इलाज होता रहेगा, कुछ नहीं करना।
0: अरे वाह।
1: दूसरा जो क्रॉनिक ब्लड कैंसर है उसमें कई बार तो हम दवा भी शुरू नहीं करते, सिर्फ आपको 2 महीने में 1 महीने में एक ब्लड टेस्ट करके हमें बताना होता, तो वो इतना अच्छे तरीके से मैनेज होता है।
0: बहुत बढ़िया।
1: दो जो अक्यूट ब्लड कैंसर हैं दो
0: जी,
1: उसमें से एक जो है वो थोड़ा जटिल होता है और उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है, और उसमें 50-50 चांसेस रहते हैं
0: जी।
1: जीवन मरण के, इलाज के बावजूद
0: जी।
1: और एक जो होता है ALL जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, वो अक्सर 15 साल से छोटे बच्चों में आता है, और अगर पूरा इलाज लिया जाए तो 80% बच्चे पूरी तरह ठीक होते हैं।
0: क्या बात,
1: इलाज
0: है?
1: लंबा चलता है उसका, तो 75% ऑफ ब्लड कैंसर जिनसे डर लगता था, टेक्निकली उनका इलाज काफी हद तक संभव है। इनफैक्ट कुछ तो पूरी तरह क्योरेबल की श्रेणी में आ चुके हैं।
0: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब,
1: आपका जो स्टेटमेंट था सर, आई रीआइटरेटेड, या मैं उसको दोबारा दोहराता हूँ, ब्लड कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है
0: जी। डॉक्टर साहब, जितना भी मुझे समझ में आया था, जितना कुछ मैंने पढ़ा, आपके जैसे ही प्रबुद्ध डॉक्टर से जब मेरी बातचीत हुई तो मुझे ये लगा शायद पूरे कैंसर ट्रीटमेंट में, चाहे हम सॉलिड ट्यूमर्स की बात कर लें, हेमेटोलॉजी की बात कर लें, मुझे लगता है हेमेटोलॉजी यानी कि ब्लड कैंसर फिर भी बहुत आराम से अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू सॉलिड ट्यूमर ट्रीटमेंट्स, वहां थोड़ी जल्द
1: करता है आपको हुआ कौन सा है
0: जी। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही कही आपने।
1: अच्छा, दूसरा मतलब मैं आपको सॉरी मैं आपकी बात
0: नहीं नहीं प्लीज प्लीज प्लीज,
1: जिस व्यक्ति पे बीतती है उसके लिए बुखार भी दुखदायी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा साहब।
1: अगर हम मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं तो मैं मानता हूं कि इन बीमारियों का इलाज पूरी तरह संभव है, नो डाउट अबाउट इट, बट कैंसर शब्द से जो आज भी हम कांपते और डरते हैं और उसको एक हवा मान के चलते हैं कि साहब ये किसी जमाने में जो कोड़ को संज्ञा दी जाती थी, आजकल कैंसर को संज्ञा दी जाती है, क्योंकि कुछ भी कर लें लोग इससे इसलिए डरते हैं क्योंकि ये जीवन को विराम लगाने की क्षमता रखता है अपने, तो वो एक डर जो है लोगों के मन से निकालना ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि आपने कहा, ब्लड कैंसर डेफिनेटली ट्रीट करना आसान है पर इसके इलाज लंबे चलते हैं।
0: बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आप इस बात पर गौर कीजिएगा डॉक्टर सुनीत क्या बता रहे हैं। आप चाहिए तो इस प्रोग्राम को बार बार सुनिए, समझिए इस बात को कि इसके ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर साहब ने बताया लंबे जरूर चलते हैं लेकिन ऑलमोस्ट क्योरेबल हैं, बहुत ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेस के साथ इसका इलाज किया जा सकता है। तो मैं करबद्ध आपसे प्रार्थना करूंगा कि प्लीज घबराना बंद कीजिए, कैंसर कोई हवा नहीं रह गया, अब कैंसर के बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रबुद्ध एक्सपर्ट्स डॉक्टर सुनीत जैसे अब हमारे पास हैं जो हमारी पूरी पूरी तरह से मदद कर सकते हैं। अगर कुछ भी ऐसा आपको लगता है तो आप उनके संपर्क में आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, कोई बिल्कुल अगेन साधारण व्यक्ति, भला वो कैसे पहचाने, उसे कैसे वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि शायद उसे ब्लड कैंसर या सॉलिड ट्यूमर कैंसर कुछ भी उसकी शुरुआत हो चुकी है, मतलब शुरुआती लक्षण क्या होते हैं?
1: ओके सर, कैंसर की आप ही की तरह किसी दिन एक मैं इंटरनेट के थ्रू एक रेडियो प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था
0: जी,
1: उन्होंने मुझसे एक बड़ी अच्छी सी बात खत्म करते करते पूछी थी कि साहब आप क्या चाहते हैं बदलाव कैंसर में क्या है। तो मेरे साथ मेरे ही शरीके एक मेरे मित्र डॉक्टर साहब थे, हम दोनों साथ में इंटरव्यू दे रहे थे, हमने साथ में एक ही सांस में एक बात कही कि हम चाहते हैं कि कैंसर दर्द के साथ आए।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि हम मानवीय लोग हमेशा दर्द को रिस्पॉन्ड करते हैं, बिना दर्द की किसी चीज को हम उतनी संज्ञा नहीं देते हैं, उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं।
0: जी जी जी जी।
1: और कैंसर के जितने भी सिम्टम्स या जितने भी इसके प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी इसके कारण आती हैं, वो बहुत टिमिड या छोटी होती हैं। और कई बार जैसे लंबे समय तक वजन का कम होते जाना बिना किसी कारण से, बहुत समय तक भूख न लगना किसी कारण से, बुखार का रोज छोटे छोटे दर में आना जिसका कोई कारण न मिलना, तो ये चीजें जो है ये बेसिकली कैंसर का सिम्टम होती है।
0: ओके।
1: पर इनको पकड़ पाना मुश्किल होता है। अच्छा, औसतन हम जो जिस तरह से हम भारतीय हैं, हम किसी भी चीज को जब तक कि वो 2 महीने की ना हो जाए उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उसको उतना जो जरूरत से देखना, जो सीरियसनेस से देखना चाहिए वैसे नहीं देखते। तो कोई भी आपको तकलीफ है, आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और वो कभी भी 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा तक जा रही है, तो आपको उसे गंभीरता से लेना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, सिंपल खांसी हो, वजन का घटना हो अपने आप, या भूख ना लगना हो अपने आप, कोई भी चीज जो लंबे समय में परिवर्तित होती जा रही है उस पर थोड़ा सा ध्यान देके उसको वर्कअप करें, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी कैंसर के सिम्टम को पकड़ने का
0: जी।
1: इसके अलावा जिस अंग में कैंसर होगा उसकी प्रॉब्लम्स तो आएंगी। मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर है तो यूरिन में कभी खून आ सकता है, कभी यूरिन निकलने में प्रॉब्लम आती है, वहां दर्द होता है जब यूरिन होती है, तो जिस अंग में आएगा वहां की प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही।
0: जी।
1: और जहां तक ब्लड कैंसर का सवाल है, जब ये आते हैं तो ये एक्सट्रीम वीकनेस कमजोरी के साथ आते हैं। सबसे बड़ा सिम्टम इनका इनकी कमजोरी रहती है कि शरीर को शिथिल कर देते हैं।
0: ओके,
1: इस बात को समझो।
0: बहुत बढ़िया दोस्तों, अगेन डॉक्टर साहब की कही हुई बात को मैं बहुत ही छोटे से मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर ब्लड कैंसर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कमजोरी आएगी, बहुत जबरदस्त कमजोरी आएगी, उसे बिल्कुल ना टालें। तुरंत तुरंत या तो अपने जनरल फिजिशियन से जिनसे आप मिल रहे हैं उनसे मिले, या फिर आप डॉक्टर सुनीत को भी मिल सकते हैं जाके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने बतलाई कि कोई भी परेशानी जैसे वजन कम होना, भूख लगना, बुखार का आना, खांसी होना, अगर 2 महीने या 15-20 दिन से भी ऊपर जा रहा है तो उसे सीरियसली तुरंत ले और तुरंत चले जाए, क्योंकि अगर वहीं पर उसको रोक दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब ने पूरा विश्वास दिलाया है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। आजकल, बिल्कुल आजकल के वक्त में ये हो रहा है और ये पूरे चारों तरफ हो रहा है, पूरी इंडिया में हो रहा है कि वायरल चल रहा है क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है, लेकिन इस बार का जो वायरस है वो कुछ ज्यादा ही बदतमीज साबित हो रहा है। 2 से 3 बार रिलैप्स हो रहा है, मुझे भी हो चुका है, 2 बार तो रिलैप्स हो चुका है, और खांसी जो है वो 15-15 दिन से ऊपर जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही, वो रिलैप्स हो रही है। तो क्या हम इसे भी इस तरीके के लक्षणों में गिनना चाहिए हमें?
1: देखिए, वायरस जब हम पढ़ते हैं तो शुरुआती दौर में जब हमें वायरस पढ़ने मिलता है, सेकेंड ईयर में जब हम माइक्रोबायोलॉजी की किताबों में वायरस की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज बताई जाती है जिसे कहा जाता है पैराडाइम शिफ्ट एंड पैराडाइम ड्रिफ्ट। अंग्रेजी के 2 शब्द हैं
0: जी।
1: शिफ्ट मतलब किसी वायरस ने अपना एंटीजन जल्दी जल्दी बदला, उसे शिफ्ट कहा गया। साल भर, भाई 1 साल पहले H1N1 का वेरियंट ऐसा था, 1 साल बाद H1N1 का वेरियंट थोड़ा बदल गया है। और दूसरा होता है पैराडाइम ड्रिफ्ट, जो कि हर डिकेड में एक वायरस अपने आप को पूरी तरह परिवर्तित कर लेता है और आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, जो उस पहले वाले को पहचानती थी, नए वाले को नहीं पहचानती। और नया वाला जब आता है, इन्फेक्ट करता है, तो इट स्टेज फॉर लॉन्ग एंड वी डोंट हैव एनीथिंग फॉर इट। और कोविड के बाद से जितने भी वायरस आप देखेंगे वो थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस
0: लेकर आए हैं,
1: क्या कहेंगे इसे, मैं मतलब हिंदी में उसका एक शब्द,
0: प्रतिरोधक क्षमता, मतलब ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता लेके आए,
1: ज्यादा प्रतिरोध के साथ आ रहे हैं, ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता के साथ या ज्यादा उग्र तरीके से आ रहे हैं, जैसे भी उसको आप समझे। तो उसके कारण उसके सिम्टम्स भी लंबे चल रहे हैं।
0: ओके,
1: तो ये एक पैराडाइम ड्रिफ्ट का पैराडाइम शिफ्ट फिनोमिनाज हैं जो हर वायरस में होते हैं और वो समय अनुसार होते हैं, और फिर उसके बाद उनको समझा जाता है और पढ़ा जाता है और फिर हम उन पर महारत हासिल करते हैं।
0: तो इस लक्षण को जो नॉर्मल रूटीन आज चल रहा है कि खांसी बड़ी लंबी लंबी जा रही है, कभी वो डाउन हो जाती है फिर आ जाती है, तो क्या इसे भी हम सीरियसली लें जैसा मैंने आपसे पूछा था?
1: सर, लेना तो बीमारी शरीर में हर किसी चीज को सीरियसली चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसे आपको सीरियसली नहीं लेना चाहिए।
0: तो इसके लिए डॉक्टर साहब क्या टेस्ट करा लें, एक मिनट जस्ट इन केस,
1: अगर आपको खांसी है तो आप चेस्ट का एक्सरे कराएं, लोकल फिजिशियन को दिखाएं, वो एक बार एग्जामिन भी करेंगे आपको। अगर आपको खांसी ना हो के सर्दी है लंबे समय तक, तो भी आप लोकल फिजिशियन को दिखाएं, वो भी उसके लिए एक एक्सरे कराएंगे, या सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है उन्हें तो वो कराएंगे, नेजल एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ती है तो वो कराएंगे। तो वो फिजिशियन अपने हिसाब से आपको एग्जामिन करके फिर एक डिसीजन लेंगे कि क्या बेस्ट है आपके लिए। तो जो बेस्ट होगा आपके लिए उस हिसाब से उसकी जांच की जाएगी और फिर उसे पकड़ा जाएगा कि वो क्या है एग्जैक्टली।
0: ओके, तो मेरे सुनने वाले दोस्तों इस बात पे गौर कीजिएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा डरावना नहीं है, आसान है। अपने जनरल फिजिशियन के पास जाइए, सिंपल एक चेस्ट एक्सरे, या अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो सीटी स्कैन, उससे काफी हद तक मालूम पड़ जाएगा कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो तुरंत प्रभाव से आप डॉक्टर सुनीत से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम इस प्रोग्राम के बाद डॉक्टर साहब की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहां छोड़ देंगे, उनकी वेबसाइट, उनका मेल आईडी, आप उन पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। इसी क्वेश्चन से कनेक्टेड अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जानकारी के लिए।
1: बिल्कुल सर,
0: ऐसा कुछ भी हो रहा हो तो, वैसे यूं आपने जनरलाइज्ड आंसर दे दिया है, फिर भी किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास, कैंसर विशेषज्ञ के पास जाने से पहले हम क्या क्या जांचें करा लें, क्या क्या तैयारियां करके पहुंचे तो आपका काम आसान हो जाए थोड़ा बहुत?
1: आप किसी भी मेडिसिन फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो एक बेसिक सेट ऑफ जांचें आपसे कराएंगे ही कराएंगे। अगर उनमें कुछ निकल के आ रहा है फिर आप उनके थ्रू हमारे पास आएंगे, या फिर उनमें कुछ तकलीफ होगी तो फिजिशियन आपको गाइड करेंगे कि आप कैंसर के किसी फिजिशियन से या सर्जन से मिलिए। तो बेसिकली जब भी फिजिशियन के पास जाएंगे, जिस भी जगह की प्रॉब्लम होगी या ज्यादा कुछ निकल रहा होगा, तो बेसिक आपकी जांचें कराएंगे, जिस पैनल में ब्लड टेस्ट होंगे, सोनोग्राफी होगी, एक्सरे होंगे, जरूरत पड़ी तो सीटी स्कैन या एमआरआई भी होंगे। तो उसके बाद जब कुछ निकल के आएगा तो आपका एक रेफरल टुवर्ड्स द सुपर स्पेशलिटी ऑफ ऑन्कोलॉजी या सुपर स्पेशलिटी ऑफ कैंसर की तरफ होगा।
0: Okay.
1: पर अगर आपको मन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साहब नहीं मुझे डर लग रहा है, कैंसर की तकलीफ लग रही है, तो आप डायरेक्टली भी किसी कैंसर फिजिशियन से मिल सकते हैं, अपने मन की शंका निकाल सकते हैं, मिटा सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया,
1: ऐसी कोई बात नहीं है कि आप डायरेक्टली नहीं मिल सकते।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात कही डॉक्टर साहब। जस्ट टू कीप दिस एंटायर कन्वर्सेशन अलाइव, मैं यहाँ पर मेरा ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। आज से 3 साल पहले मुझे मैं यहाँ भीमताल में था, मैं आज पर जयपुर से आया था, तो मुझे जाहिर से बात है यहाँ की फंगल इन्फेक्शन या यहाँ की ठंड के लिए मैं एक्लेमेटाइज नहीं था, मतलब यहाँ पर मैं बैठा नहीं था, तो मुझे चेस्ट कंजेशन होना शुरू हुआ, मुझे ऐसा लगा चेस्ट में दबाव हो रहा है। 2-3 महीने गुजरे, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, मैंने एक्सरे वगैरह भी करा लिए, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट वगैरह जो भी मेरे थोड़े बहुत जानकार थे उन लोगों को शेयर किया, लेकिन कुछ आ नहीं रहा था, सारे टेस्ट करा लिए। इवेंचुअली एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा इतना भी डरने की, अब आई वाज स्केयर्ड डॉक्टर साहब, मैं बहुत डरा हुआ था कि मेरे को लंग्स का कुछ इश्यू हो गया है, तो उन्होंने कहा कि अब देखो जो भी है वो एक बार क्लैरिटी तो लेनी पड़ेगी, आप इसे बचते हुए घूम नहीं सकते सर पकड़े हुए, तो बेहतर है जाइए एक सीटी स्कैन करा लीजिए, चेस्ट सीटी करा लीजिए, जो भी होगा सामने आ जाएगा।
1: जी साहब बिल्कुल।
0: और ठीक है साहब, थर थर कांपते हुए डरते हुए मैंने जाके वो सीटी स्कैन करा लिया और कुछ नहीं आया, नथिंग। तो दोस्तों उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा उन डॉक्टर साहब के प्रति भी, मैं बहुत धन्यवाद पेश करता रहा कि डॉक्टर साहब आपने मुझे हिम्मत बंधाई कि कम से कम मैं जाऊं तो सही। मुझे ऐसा लगता है साधारण व्यक्ति बस यहीं डर कर आगे बढ़कर टेस्ट नहीं कराता और वहीं प्रॉब्लम हो जाती है।
1: मैं गोयल साहब इसमें 2 चीजें जोड़ूंगा आपकी,
0: प्लीज प्लीज
1: स्टोरी से मैं 2 शिक्षा लूंगा। पहली बात तो चीज उतनी सीरियस होती नहीं है जितनी हम उसे मन में मान लेते हैं।
0: करेक्ट।
1: ओवर थिंकिंग बेसिकली लीड्स टू नथिंग। दूसरा ये अच्छी बात है कि कुछ निकल के नहीं आया, कुछ निकल के अगर आता भी, गुड गॉड फॉरबिड, आता भी तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो उसका कुछ ना कुछ निदान तो निकालते हैं।
0: एब्सोल्युटली।
1: और तीसरा ये कि किसी भी चीज की, किसी भी सिम्टम को आने के बाद डर बहुत स्वाभाविक सी चीज है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर देखेंगे क्या होता है वाले एटीट्यूड के साथ आना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है सर, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हुए अब जब हम लोग ने थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करने की हिम्मत बांध ली, तो किस किस तरीके के इलाज अब हमारे पास मौजूद है?
1: प्राइमरीली देखा जाए मूलतः 3 प्रकार के कैंसर के इलाज होते हैं। एक होता है कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी की तरफ से इलाज देना। कीमोथेरेपी कुछ नहीं है, कैंसर को मारने के लिए ब्लड में मिलाकर, सलाइन में मिलाकर ब्लड में दी जाने वाली दवाओं को कीमोथेरेपी कहा जाता है। इनका एक ब्लैंकेट टर्म है क्योंकि इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं और वो नॉर्मल दवाओं से थोड़ी अलग होती हैं, बस कुछ नहीं। दूसरा है इम्यूनोथेरेपी जो कि इसी का एक एडवांस्ड वर्जन होता है, वो सिर्फ रिसेप्टर्स पे या पर्टिकुलर सेल्स पे एक्ट करते हैं
0: जी।
1: तो ये मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अंडर आते हैं और हेमेटोलॉजी में भी इनका प्रैक्टिस किया जाता है। दूसरा तरीका होता है सर्जरी, मतलब काट के निकालना या ऑपरेशन करना, वो एक बहुत ही सरल तरीका होता है बट जटिलता से निकालना पड़ता है क्योंकि कैंसर जैसी गठाने अपने आप में कहीं से भी अदरक सरी की ग्रो होती है, किधर भी जाती है, किधर भी एक्सटेंड कर सकती है, तो इट इज अ टफ साइंस टू ऑपरेट ऑन अ कैंसर पेशेंट। थर्ड इज रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। रेडिएशन जिस तरह से लोग समझते हैं, लोगों मन में काफी भ्रांतियां हैं कि इसको करंट का बोला जाता है तो लोगों को करंट देते हैं, तो ऐसा कुछ करंट वरंट नहीं दिया जाता है। सीटी मशीन के अंडर आप लेटते हैं, उससे तरंगे निकलती है, जो दिखती नहीं है वो तरंगे उसी हिस्से पे जाती है जहां कैंसर है और उतने हिस्से में जाके एब्जॉर्ब होके उसको किल करती है।
0: बहुत बढ़िया।
1: आपको कुछ नहीं होता है उसमें, हम जब लोगों को मिलते हैं, बात करते हैं, बोले डॉक्टर साहब वो बोलते हैं कि रेडिएशन करंट होता है, डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं, करंट हम तार वार नहीं लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया जाता है।
0: जी
1: तो ये काफी भ्रांतियां वाली चीज है जो छोटी छोटी चीजें नटानी पड़ती हैं।
0: बहुत बढ़िया दोस्तों, अगेन इस बात को गौर से सुनिए, समझिए। आज के वक्त में जब एडवांसमेंट बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, इलाज बहुत आसान है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कीमोथेरेपी होती है, जो दवाइयां हमें दी जाती हैं वो आराम से हमारे शरीर में, ब्लड में चलती हैं, और वो जहां जहां पर भी कैंसर है उसे खत्म करती हैं। दूसरा सर्जरी डॉक्टर साहब ने बताया, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि बड़ा ही ढंग से डॉक्टर साहब ने कहा कि वो अदरक की तरह टेढ़ा मेढ़ा होके बढ़ जाता है, तो उसे काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और तीसरा रेडियोथेरेपी, जिसमें कोई करंट वगैरह नहीं है। प्लीज इस कंफ्यूजन को, इस गलतफहमी को, इस भ्रांति को हटाइए कि करंट वरंट होता है। बिल्कुल जहां पर कैंसर है वहां पर फोकस करके एक्सरे की तरह से रेडिएशन दिया जाता है। बहुत बढ़िया। इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल है डॉक्टर साहब, सभी लोगों का फिर से मानना होता है, आपस में बात करते हैं और कुछ भी पका लेते हैं कि साहब ये जो कीमोथेरेपी होती है ये बड़ी जबरदस्त साइड इफेक्ट के साथ आती है, जला देती है शरीर को, फूंक देती है शरीर को, ये बड़ी गलतफहमी बैठी हुई है लोगों के दिमाग में, उसका क्या बारे में बताइए।
1: मैं सर आपको समझाता हूँ क्या होता है। बेसिकली कैंसर कुछ नहीं है, तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाएं, तेजी से बढ़ने वाले सेल है। हमारी बॉडी में ना नॉर्मली भी तेजी से बढ़ने वाली चीजें होती है, आपके बाल, आपके नाखून, आपकी आंत की लाइनिंग वाले सेल्स, आपके रक्त में बहने वाले सेल्स जो ब्लड के सेल्स हैं, ये सब तेजी से बढ़ते हैं, तेजी से मरते हैं
0: जी।
1: तो जब कोई भी चीज, जैसे हम कीमोथेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी बेसिकली हर तेजी से बढ़ने वाली कोशिका को असर करती है, तो वो एबनॉर्मल कैंसर के सेल को असर करते करते नॉर्मल चीजों को भी असर करती है। तो आप देखेंगे भाई, लोगों के बाल भी थोड़े चले जाते हैं, त्वचा थोड़ी काली पड़ जाती है, आपका खाने पीने की जो हैबिट्स रहती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, तो आपका वजन गिरता है थोड़ा सा। और ये सब चीजें होने के कारण लोग कीमो को मतलब बहुत ज्यादा बुरा मानते हैं। कीमो देते समय कुछ नहीं होता है, कीमो लगते समय आपको कुछ नहीं होता है, पर जब इन दवाइयों का असर आता है तो कमजोरी जरूर आती है, क्योंकि आपकी बॉडी में डेली प्रोटीन बनते टूटते रहते हैं, जो आपकी एनर्जी का स्रोत होते हैं, ये उन पे भी असर जाता है, तो कमजोरी थोड़ी मात्रा में जरूर आती है। वो ऐसी रहती है कि आप अपने दिनचर्या के कार्य, अपने बारे में उठना बैठना, नहाना धोना, कोना खाना पीना बड़े आराम से करते हैं, पर जब आप कोई मेहनत वाला कार्य करने जाएंगे तो आपको थकान बहुत ज्यादा मात्रा में महसूस होगी
0: जी,
1: क्योंकि आपकी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है।
0: ओके,
1: तो ये एक मेजर साइड इफेक्ट है जिसको पता नहीं लोग घुमा फिरा के तोड़ के अपने हिसाब से गर्म मसाले का लाल मिर्च बना के पता नहीं क्या बताते हैं।
0: दिस
1: इज हाउ इट हैपेंस।
0: बिल्कुल।
1: एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू, हमारे यहाँ कीमो लेने के लिए वी हैव बिजनेसमैन, वी हैव आईटी प्रोफेशनल्स, वी हैव फार्मर्स, हमारे यहाँ हर प्रकार के लोग आते हैं, कृषि से, बिजनेस से, आईटी सेक्टर से, लेते हैं और काम पे चले जाते हैं, काम करते हैं अपना।
0: भाई वाह, क्या बात है, बहुत खूब।
1: तो आज के जमाने में वैसा नहीं है जैसा पहले था। पहले कीमो डाल के फिर अनअटेंडेड किया जाता था, आजकल हर साइड इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए कीमो दी जाती है
0: जी।
1: और आपको जब कीमो चढ़ाई जाती है तो वो आपके शरीर के अनुपात में चढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं कि एक ब्लैंकेट डोज है वो सबको दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं। लोगों की मान्यता धारणा ऐसी रहती है कि भैया ये कीमो है ये ब्लैंकेट जाती है बिल्कुल एकदम, ऐसा नहीं होता। आपके शरीर के वजन, आपकी हाइट के हिसाब से उसका डोज निर्धारित किया जाता है
0: जी।
1: ये भी बात एक समझने की है, लोग कई बार मन में ऐसी भ्रांतियां पाल के बैठते हैं, अच्छा शरीर में जितने अंग होते हैं, जितने सेल्स होते हैं, 800 प्रकार के कैंसर होते हैं। लोग ये मान के चलते हैं कि साहब हर चीज का इलाज एक ही है।
0: अच्छा।
1: वो भी एक धारणा है जिसे सुधारना जरूरी है। हर कैंसर का इलाज अलग प्रकार से, अलग तरीके से।
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल सीधी सी बात है दोस्तों, इस बात को भी अपने दिमाग में ठीक से बैठाइए, सारे कंफ्यूजन, सारे भ्रांतियां दूर कीजिए। थोड़ी बहुत थकान या थोड़ी बहुत कमजोरी तो देखिए, अगर हम पैरासिटामोल भी ले लेते हैं ना, बुखार की दवाई, उससे भी आ जाती है। और फिर फिजिशियंस हमें बीकासूल कैप्सूल दे देते हैं या मल्टीवाइटामिन दे देते हैं। सेम चीज कैंसर में हो रही है कि आपके शरीर के अनुपात के हिसाब से, आपके वजन के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से ही दवाइयां आपको दी जाती हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग आते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, किसान हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं और अपने काम पे जाते हैं, जैसे सर्दी जुकाम हुआ, कुछ भी नहीं। भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए, हिम्मत बांधिए, वक्त बदल चुका है। बड़ी मजेदार सी बात है डॉक्टर साहब, कुछ दिनों पहले मैं एक डॉक्टर साहब से मिला, वो कार्डियोलॉजिस्ट थे
1: जी।
0: और जबकि अगेन चेकअप वगैरह किसी का हो रहा था और कुछ भी नहीं निकल रहा था उनको, टीएमटी और इको और एवरीथिंग, तो यूं ही थोड़ी सी दोस्ती है उनसे, तो वो कहने लगे गोयल साहब आज की डेट में प्रॉब्लम है कि हर पेशेंट गूगल पेशेंट है, वो पहले से बड़ा पढ़ के आता है। कहते नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ है, और डॉक्टर कहते भाई तुम्हें कुछ नहीं है, कहते नहीं कुछ तो निकाल दो, हम आपको फीस दे रहे हैं। ये बड़ा भारी प्रॉब्लम है दोस्तों, प्लीज। मुझे एक एक सेंटेंस बहुत ही पसंद आता है डॉक्टर साहब, मैं हर समय देता रहता हूं उसको, यू कैन गूगल एवरीथिंग but you cannot google experience.
1: That's very fantastic.
0: आप experience को google नहीं कर सकते, बाकी सब कर लो। तो दोस्तों please experience को google करने की कोशिश ना करें, विशेषज्ञों के पास जाएं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है, बहुत मेहनत की है, उसे समझा है, तो बेहतर है उनको उनका काम करने दें, आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए
1: जी।
0: इतना पूछना चाहूंगा कि किस किस तरह के कैंसर, वैसे आप जवाब दे चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार फिर से नंबर देकर बात कर लेते हैं कि किस किस तरह के कैंसर दवाइयों से ऑलमोस्ट ठीक किए जा सकते हैं?
1: प्रैक्टिकली सारे।
0: वाह क्या बात कही साहब, मजा आ गया सुन के। प्रैक्टिकली सारे,
1: जिनमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, कुछ है जिनमें सिर्फ रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिकली सारे जो है 80% ऑफ देम उनमें दवाई किसी ना किसी फॉर्म में लगती है सर।
0: बहुत बढ़िया, ये बहुत ज्यादा हिम्मत देने वाला स्टेटमेंट है जो डॉक्टर साहब ने दिया है। दोस्तों समझिए इस बात को, करीब करीब हर तरह का कैंसर ठीक किया जा सकता है, सारी टेक्नोलॉजी डॉक्टर साहब के पास है, डॉक्टर साहब को जानकारी है। बहुत बढ़िया, तो चलिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम को, हमने ट्रीटमेंट को देख भी लिया कि क्या होना है, उसकी परेशानियों को भी देख लिया, और ये भी भरोसा ले लिया कि करीब करीब सारे कैंसर ठीक किए जा सकते हैं। अब बात आती है हिम्मत की, मोटिवेशन की।
1: मैं एक लाइन और बोलूंगा,
0: प्लीज डू
1: हम लोगों में, कि अर्ली डायग्नोसिस इज एन अश्योरेंस टू क्योर।
0: वाह क्या बात है जी, बिल्कुल।
1: अगर आपने जल्दी पकड़ लिया तो इट इज समथिंग लाइक अ क्योर।
0: बहुत बढ़िया दोस्तों, एक बार डॉक्टर साहब ने जो बात कही है कि अर्ली डायग्नोसिस एंश्योर्स द कंप्लीट ट्रीटमेंट, यानी कि अगर आपने अर्ली उसे पकड़ लिया तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले भी की थी जब हम ये बात कर रहे थे कि हम कौन कौन से टेस्ट करा लें, अपने आप को तैयार रखें कि खांसी 15 दिन से ऊपर जा रही है, वजन लगातार गिरा जा रहा है, वगैरह वगैरह हमने बात की थी ऊपर, वो इसी चीज का, इसी स्टेटमेंट का एक हिस्सा है कि हम पहले पकड़ लें। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था, हमारी हिंदुस्तानी मेंटालिटी है कि 2-2.5 महीने तक पैरासिटामोल लेते रहो, देखते रहो, फिर देखेंगे। इसको हटाना होगा। हमें अब अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कि नहीं, अपने आप को पहचानिए, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, मेडिकल इंश्योरेंस कराइए साहब, जाइए उनके पास, क्या डर है, डर को तो अब निकालना होगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, तो आगे बढ़ते हुए अब बात आ जाती है कि आपके पास पहुंचा व्यक्ति ने, आपसे बातचीत की, आपसे काउंसलिंग ली, इलाज शुरू हुआ, तब किसी भी व्यक्ति को इलाज के दौरान अपना क्या क्या ख्याल रखना चाहिए? वैसे तो आप उसे काउंसिल करते ही होंगे, किस तरीके का भोजन लेना चाहिए, किस तरीके के वातावरण में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए उसे?
1: देखिए जब हम कीमो देते हैं या रेडिएशन या ऐसा कोई भी विद्या उस पेशेंट को एक्सरसाइज करते हैं तो एक लेवल ऑफ इम्यूनिटी डाउन होता है। तो एक बेसिक हाइजीन आपको रखनी होती है। कोई भी व्यक्ति जिसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार है वो आपसे न मिले, क्योंकि आपको 2-4 गुना ज्यादा सीवियर होगा, क्योंकि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो चुकी है। दूसरा जहां तक खाने का सवाल है, हम एक ही लाइन कहते हैं कि साहब आप मांस मटन मछली ना खाएं क्योंकि वो इन्फेक्शन का सोर्स हो सकते हैं, और आप कच्चा कुछ ना खाएं क्योंकि वो भी इन्फेक्शन का सोर्स बन सकता है, कोई भी कच्चा पका या अधपका।
0: जी
1: घर में बना हुआ पका हुआ खाना सबसे बेहतरीन चीज होती है, आप वो खाइए। आप चूंकि पूरा का पूरा एक साथ नहीं खा पाते हैं, आप थोड़ा थोड़ा हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाइए, सुबह और दोपहर और रात के खाने के हिसाब से मत खाइए, आप हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा एक कटोरी एक छोटी प्लेट में लेके जितना आपसे बने उतना खाइए। ये एक मेजर चेंज होता है, और दूसरा मेजर चेंज इन्फेक्शन से बचना होता है
0: जी।
1: बाकी जितनी चीजें हैं वो सब मैनेजेबल हैं, सब एडजस्टेबल हैं। और मान लीजिए जैसे कुछ लोग हमें कहते हैं कि साहब बाल चले जाते हैं कीमो से, मैंने साहब आ जाते हैं बिल्कुल बढ़िया आते हैं, बेहतरीन आते हैं, सरप्राइज होंगे 6 महीने बाद इतने बेहतरीन बाल आते हैं, उसका कारण नहीं हमारे पास
0: जी।
1: तो ऐसी चीजें हैं। फिर कुछ लोगों में कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण मुंह का टेस्ट चला जाता है, तो बोले साहब हम आम नहीं खा पा रहे। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, अगले गर्मी में आप बहुत अच्छे से खा पाएंगे। रिवर्ट्स विद टाइम।
0: बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया कही डॉक्टर साहब आपने बात। मुझे एक बात बढ़िया याद आ रही है, एक दवाई इजाद हुई ब्लड कैंसर में ही, उसी एरिया में हिमाटोलॉजी में ही, आज से कुछ मेरे ख्याल से 15-20 साल पहले शायद, जिसको
1: इमैटिनिब की बात कर रहे हैं आप
0: शायद, जी जी जी जी, जिसको मैजिक बुलेट कहा गया, इमैटिनिब
1: मैजिक बुलेट तो ठीक है सर, उसका इतना खराब प्रचार किया गया कि साहब सबने बोल दिया ब्लड कैंसर का एकमात्र इलाज,
0: एकमात्र इलाज है,
1: लोगों को समझाना
0: था। जी जी जी जी,
1: कैंसर का
0: वो
1: कैंसर का इलाज
0: है। आपने बिल्कुल सही कहा,
1: चारों पांच चुप नहीं,
0: बिल्कुल सही कहा सर, उसे पता नहीं पूरे ब्लड कैंसर का इलाज मान लिया गया, ऐसा गलत था, ऐसा खैर धीरे धीरे लोगों के अंदर अवेयरनेस आई उस चीज को लेकर। लेकिन एक जैसे आपने कहा ना कि आम नहीं खा पा रहे हैं, हमारा मुंह का टेस्ट चला गया है, बाल नहीं है, लेकिन आपने कहा कि वो बाल जब आएंगे तो बड़े अच्छे आएंगे। इमैटिनिब से एक साइड इफेक्ट देखा गया जो बड़ा ही अमेजिंग था डॉक्टर साहब,
1: अभी गोरे हो जाते हैं
0: जी। जो भी इमैटिनिब खा रहे थे वो चमत्कारी तौर पर गोरे हो गए
1: सर, कुछ गोरे हो रहे थे, कुछ लोगों के गाल पे कालापन भी आ रहा था। इट्स अ मिक्स बैग,
0: इट्स अ मिक्स बैग, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। तो दोस्तों इस तरीके के साइड इफेक्ट्स इन दवाइयों के क्या सभी दवाइयों के होते हैं साहब? आप पैरासिटामोल लेते हैं, डेक्लोफेनाक सोडियम लेते हैं, तो उसके साथ आपको डॉक्टर को एक ओमिप्राजोल देना पड़ता है क्योंकि उससे एसिड इतना बनता है कि आप डकारते ही रहोगे। तो ये तो है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे जो प्राइम मोटो है, जो एकदम प्राथमिकता है हमारी, कि हम अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखें। बहुत खूब डॉक्टर साहब, अब चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हेमेटोलॉजी के, यानी कि अगर ब्लड कैंसर के रक्त बीमारी के कोई मरीज हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कुछ टेक्निकल या कुछ मोटिवेशनल, क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
1: सर एक फिलोसॉफिकल संदेश देना चाहूंगा
0: जी, प्लीज।
1: उम्मीद रखिए बस।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, ये फिलोसॉफिकल थोड़ी हुआ डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल रामबाण हो गया, एक ब्रह्मास्त्र की तरह एक सेंटेंस, बहुत बढ़िया दोस्तों।
1: और कुछ नहीं सर, उम्मीद रखिए बस, सब ठीक होता है।
0: क्या बात है, क्या बात,
1: अगर वो ठीक नहीं है तो वो अंत नहीं है।
0: वाह, हर जगह पर, हर स्क्रिप्चर में, हर रिलीजन में दोस्तों ये लिखा हुआ है, भूला जाता है, पता नहीं क्यों हम भूल जाते हैं, शायद कमजोर पड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब आज इस बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि उम्मीद रखिए, उसे जाने मत दीजिए, क्योंकि उम्मीद ही एक ऐसी किरण है जो हमें पूरे संसार में सबसे स्वस्थ बनाती है, सबसे अच्छा बनाती है। डॉक्टर साहब चलते चलते फिर से आपसे पूछना चाहूंगा कि और अधिक जानकारी के लिए, आपसे संपर्क करने के लिए हम क्या करें?
1: कुछ नहीं सर, आप कभी भी HCG हॉस्पिटल की लैंडलाइन पे कॉल करके बता दें कि आपको मुझसे मिलना है
0: जी,
1: हमारा स्टाफ मुझे अप्रोच कर लेगा एंड वी कैन टॉक।
0: बहुत
1: डायरेक्टली आपको मेरा नंबर मिल जाएगा एंड डायरेक्टली वी कैन टॉक।
0: बहुत बढ़िया,
1: ऐसे ही जैसे आपने, मैं आई एम जस्ट एडिंग टू व्हाट आई टोल्ड, ऐसा कहते हैं उम्मीद रखिएगा, सबसे बढ़िया और सुंदर उदाहरण मुझे एक अंग्रेजी की लाइन में मिलता है
0: जी,
1: जस्ट व्हेन द कैटरपिलर थॉट इट वाज अबाउट टू डाई, इट बिकेम अ बटरफ्लाई।
0: वाओ क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब दोस्तों, आपको समझ में आया, जिस वक्त कैटरपिलर को लग रहा था कि बस वो मरने ही वाला है, तभी वो एक तितली बन गया। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात कही है साहब, मजा आ गया। आप डॉक्टर की जगह अगर राइटर होते या संगीतकार होते, बड़ा मजेदार बात है साहब।
1: लिटरेचर पढ़ने की आदत रही शुरू से।
0: क्या बात है।
1: फादर खुद एक ओरेटर रहे हैं और उनके कारण उनकी लाइब्रेरी होती थी, तो वो भी खुद डॉक्टर हैं, तो पढ़ने के शौकीन हैं।
0: बहुत खूब।
1: तो उनके कारण वो एक नैसर्गिक रूप से हम बच्चों में वो आदत आई कि हम भी पढ़ें। और काफी समय तक स्कूल का डिबेट का, एक्सटेम्पोर का और बाकी कॉलेज के स्टेज कंडक्ट करने का सबका अनुभव रहा, तो वहां उन जगहों पे बिल्कुल एकदम स्पॉन्टेनियस आपको बोलना पड़ता है, तो उसकी भी आदतें आती गई। तो इसलिए पढ़ने की आदत बनी सी रही, जो उसी के चलते शायद हम डॉक्टर बन गए और 2-3 डिग्रियां बड़ी बड़ी कर ली।
0: अच्छा हो गया सर,
1: आपसे इंटरव्यू में बात कर रहे हैं,
0: आप हमारे साथ हैं, तो आज बहुत हिम्मत बंधी है। मेरे सुनने वालों को भी बहुत भरोसा आया होगा। दोस्तों बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आज बहुत अच्छा लगा है कि डॉक्टर सुनीत हमारे साथ हैं, हम सुरक्षित हैं, उनके एक्सपर्ट हाथों में हैं, तो बिल्कुल ना घबराइए, जरूरत लगे तो संपर्क कीजिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच इन फॉर कमिंग इन माय प्रोग्राम। आई एम सीरियसली ऑनर्ड। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपकी बातें सुन के, आपकी आवाज सुन के एक भरोसा आया है। थैंक यू सो मच, हम संपर्क में रहेंगे सर।

तो इतनी जानकारी से भरे हुए प्रोग्राम के बाद आइए थोड़ी हल्की फुल्की बातें करते हैं और कुछ गीत सुनते हैं। मैं आपका दोस्त समीर। दोस्तों, अपने हाथों को कभी कम मत समझिएगा।

इस धरती पर किसी भी दूसरे प्राणी, यहां तक कि हमारे सबसे निकटतम प्राइमेट्स यानी कि चिंपैंजीज या बंदर, उनके हाथ भी हमारे जैसे नहीं है, जो इतनी सटीक पकड़ और हेर फेर करने में सक्षम हो। अब ये बात है कि पहले के समय की तुलना में आज हम अपने हाथों से बहुत कम जटिल काम कर रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हाथों से कम जटिल काम करते रहने का हमारा सोचना और महसूस करने पर क्या असर पड़ता है? वर्जीनिया के एक यूनिवर्सिटी में व्यवहारिक मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर लैम्बर्ट का कहना है कि जब हम किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो चीज हमें मिलती है, तो दोनों के बीच एक संबंध बन जाता है। वो ये भी मानती है कि अपने हाथों से काम करना हमें बहुत संतोष देता है। जानवरों पर किए गए एक शोध से ये पता चला कि जो चूहे भोजन खोदने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें तनाव झेलने की क्षमता दूसरे चूहों से ज्यादा होती है। डॉक्टर लैम्बर्ट इस शोध के निष्कर्षों की तुलना मनुष्यों पर किए गए अध्ययनों से कर रही हैं। उन्होंने पाया कि बुनाई, बागवानी और रंग भरने जैसे काम करने वाले बहुत शांत स्वभाव के और दूसरों से ज्यादा तनाव झेलने की ताकत रखते हैं। अब इससे याददाश्त भी अच्छी होती है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ऑक्यूपेशनल थेरेपी के प्रोफेसर कैथरीन बैकमैन बताती हैं कि कढ़ाई बुनाई जैसे काम करने से दोहराव तो होता ही है, पर बार बार एक ही चीज करने से इसका प्रभाव ध्यान करने जैसा होता है। जैसे आप मेडिटेट कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, उसी तरीके से आप कढ़ाई बार बार करते हैं। नॉर्वे की एक यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर ऑन्ड्रे वॉन डेर मीर के अनुसार हाथ से लिखने के फायदे कंप्यूटर पर टाइप करने से कहीं बहुत ज्यादा हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रस्टी गेज कहती हैं कि हाथ से की गई क्रियाएं मस्तिष्क में नई कोशिकाओं के विकास में सहायक होती हैं। मतलब यह हुआ कि अगर हम हाथ से कुछ भी काम करते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। उनके अनुसार जब आप कोई जटिल काम करते हैं जिसमें कि निर्णय लेना और योजना बनाना शामिल हो, तब यह काफी मायने रखता है कि आप अपने हाथों का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। जैसे जब आप बागवानी, हस्तशिल्प, चित्रकला करते हैं या फिर वाद्य यंत्र बजाते हैं, आपके हाथ और दिमाग एक आदर्श तालमेल बैठाते हैं। वो कहती हैं कि यह दुनिया त्रि आयामी है, मतलब थ्री डायमेंशनल, और ऐसे हाथ और दिमाग के तालमेल वाले रचनात्मक कार्यों की मदद से आप दुनिया से उसी की भाषा में बात करते हैं। तो ये संदेश हम सभी के लिए है दोस्तों, कि हम अपने हाथों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, लिखने में, पढ़ने में, वाद्य बजाने में, बागवानी करने में या इसी तरीके के और काम, जिससे कि हम प्रकृति के साथ तालमेल बैठा सके। कंप्यूटर ज्यादा इस्तेमाल करने वाले दोस्तों से भी मेरा यह संदेश है कि कोशिश तो करें कि अपने हाथों से लिखें न कि टाइप करें। आइए दोस्तों, सुनते हैं ये गीत कन्या दान फिल्म का। इसे गाया है मोहम्मद रफी ने और इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं शंकर जयकिशन। इसे शशि कपूर और आशा पारिक जी पर फिल्माया गया था।

दोस्तों, हम जिंदगी में चलते चलाते सभी के बारे में राय बनाते रहते हैं। कभी कभी ये राय बड़ी खोखली भी हो सकती है। हम गलत सोच सकते हैं किसी के बारे में। आइए इसी से संबंधित आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, आपके बात समझ में आ जाएगी। चलिए मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे थे, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए बस यूं ही खड़े हो जाते हैं। पसीना पहुंचते हैं, रुमाल निकालते हैं, रुमाल से अपने को हवा करने की कोशिश करते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक आदमी से आंखें मिलती हैं। आपकी ऐसी स्थिति देखकर वो आदमी हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। अब आपने फौरन उस आदमी के लिए एक राय बनाई। बड़ा ही सहृदय व्यक्ति है, न जान न पहचान, फिर भी पानी के लिए पूछ रहा है। अब उस व्यक्ति के लिए आपकी ये पहली राय है। क्यों? अब वो आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर लेता है। आप

नीले ने तेज कदमों से उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस आदमी के बारे में आपकी क्या राय है भाई? आप उसे गालियां देने लग जाते हो क्यों? बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है, ढीला है, आलसी है, पता नहीं क्या क्या बोल डालते हो उसको आप। अब ये आपकी दूसरी राय है देखिए। लेकिन थोड़ी सी देर बाद दरवाजा खुलता है और वो आदमी बाहर आता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी, उसे थोड़ी देर हो गई, उसके लिए बहुत बहुत खेद है, लेकिन आपकी हालात देखकर उसने आपको पानी के बजाय नींबू पानी देना जरा ज्यादा अच्छा समझा, इसलिए थोड़ा सा लंबा वक्त लग गया। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब आपकी क्या राय है? कितना अच्छा आदमी है ये, कितना सोचा उसने मेरे बारे में। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि शरबत में चीनी तो है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय बनाना चाहते हैं आप? अरे यार, बड़ा बेवकूफ आदमी है, नालायक है, बेहद कंजूस भी है। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उस समय उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी ले आया, जिससे आप जितनी चाहें उतनी डाल लें। अब उस व्यक्ति के बारे में क्या विचार है आपका? है ना मजेदार? अब आप मनन कीजिए, एक सामान्य स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली हो जाती है और लगातार बदलती जा रही है, तो क्या हम किसी के बारे में भी राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से राय ना बनाएं। पता नहीं कौन किस परिस्थिति या स्थिति में ऐसा काम कर रहा है, अब ये तो वो ही बेहतर जानता होगा ना। हो सकता है अपनी अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और दूसरा भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को बस इतना सा समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। क्यों दोस्तों, बात में दम है ना? सोचिएगा। आइए दोस्तों, आपको सुनवाता हूं आशा भोसले जी का गाया हुआ ये गीत, उम्मीद होगी कोई, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे आर डी बर्मन साहब और इस गीत को लिखा था गुलजार साहब ने।

आइए दोस्तों बताता हूं सभी के दिलों का दर्द। सारी खुदाई एक तरफ और जेब में एंड्रॉइड फोन एक तरफ, घरों में घुसपैठ कर चुके मोबाइल फोन के संदर्भ में ये राय यूं ही नहीं बन गई है दोस्तों, बल्कि पूरा एक शोध हुआ है। यूं तो हमारी श्रीमती जी को अपने स्वास्थ्य की बड़ी चिंता रहती है, जरा सी छींक आई नहीं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर की घंटी गनगना देती हैं। सारा दिन परामर्श और उपचार की भेंट चढ़ जाता है, शायद ही कोई स्पेशलिस्ट चिकित्सक उनकी पहुंच से दूर रहा हो। लगता है कि जैसे रोग विशेषज्ञों की सूची उनके पास बड़ी सेफ है, सुरक्षित है। वैसे भी यदि सही जानकारी ना हो तो गूगल बाबा स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की जानकारी देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, सिर्फ खोज करनी आनी चाहिए। मसला रोग और उसके उपचार तक ही सीमित होता तो भी बड़ी बात ना होती। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना देखिए हरेक आदमी का फर्ज है, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी जैसी काम हो जाते हैं। अब किसी ने कहा भी है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। श्रीमती जी बस इसी बात को हृदय में लेकर बैठी हैं, इसीलिए उसी के अनुसार खुद को स्वस्थ बनाने में लगी रहती हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का उदाहरण यदा कदा ही प्रकाश में आता है। वैसे कुछ स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की राय में अति जागरूकता भी स्वास्थ्य पर उल्टा असर डाल जाती है। रोगों का निदान सामान्य तौर पर किया जाना चाहिए, रोग को दिमाग में घुसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि रोग दिमाग में घुस जाता है ना भैया, तो उपचार में बड़ी कठिनाई आती है, ऐसा अनुभव में आया है। एंड्रॉइड फोन का स्वास्थ्य पर प्रभाव की चर्चा करते हैं। श्रीमती जी भले ही कितनी बीमार रहे हैं, भिन्न भिन्न डॉक्टरों द्वारा सुझाई गई दवाओं का सेवन करें, लेकिन रोग से ध्यान बटाने में एंड्रॉइड फोन की भूमिका को देखिए नकारा नहीं जा सकता। कष्ट कितना ही हो मगर सोशल मीडिया के नाम पर फेसबुक पर परोसे गए खास वीडियो घंटों तक उनका ध्यान बीमारी से हटाए रखते हैं। भैया कितना इंपॉर्टेंट है ना मोबाइल। ये लीजिए दोस्तों, मोबाइल पर ही एक गीत सुनते हैं जिसे गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने, जिसे लिखा है समीर ने, म्यूजिक डायरेक्टर हैं अनु मलिक, फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी।

तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों से और प्यारे प्यारे गीतों के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा इसी तरीके का एक शानदार आपकी सेहत के लिए प्रोग्राम को लेकर। मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त, भूले नहीं ना, समीर।

नमस्कार श्रोताओं, रेडियो की इन मधुर तरंगों पर आप सभी का स्नेह भरा स्वागत है। संगीत जो शब्दों को एहसास देता है और खामोशी को भी आवाज। आज के हमारे कार्यक्रम आज के कलाकार में हम मिलेंगे उन गायकों और संगीतकारों से जो हिंदी गीतों में आज के जमाने की धड़कन भर रहे हैं, कभी मीठे सुरों में तो कभी सच्चे जज्बातों में। आइए शुरू करें सुरों के इस सफर पर चलें, जहां हर गीत कुछ कहता है और हर धुन दिल से बस जुड़ जाती है। स्वागत है आपका।

0: लीजिए दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत सौंधा सौंधा सा आज के कलाकार को लेकर मैं हाजिर हूं। आज जो टैलेंट, आज जो प्रतिभा, आज जो कलाकार, जो गायक हमारे साथ हैं, उनकी बातचीत सुनिए, उनके व्यक्तित्व को जानिए, आपको लुत्फ आ जाएगा साहब, मजा आ जाएगा। मेरे साथ हैं गोविंद राज जी। बाकी मैं गोविंद राज जी से ही पूछूंगा, क्योंकि मैं उनके बारे में बताऊं वो खुशबू नहीं आ पाएगी। गोविंद राज जी अपने बारे में बताएंगे तो हमें कुछ बेहतर समझ में आएगा। गोविंद राज जी, आपका बहुत बहुत आभार। वेलकम टू अवर प्रोग्राम। प्लीज हमारे सुनने वालों को, जो आज आपके फ्रेंड्स फैंस बनने वाले हैं, उनके लिए अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, भला कौन है आप?
1: श्योर। पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि गोविंदराज, हालांकि मेरे पेरेंट्स ने रखा नाम गोविंदराज, पर ऑलमोस्ट मेरी जिंदगी में कॉलेज के टाइम में एक निकनेम जो जुड़ा है मेरे साथ, दैट वो अटका है मेरी जिंदगी में। आई हैव यूज्ड इट इन माय एंटायर कॉर्पोरेट लाइफ एंड इट्स कॉल्ड गोचा, GOCHA,
0: गोचा।
1: गोचा एक ब्रांड भी बन गया मेरे लिए, तो जिधर भी होता। And I was in the IT industry for about 30-35 years. अभी self freelance करके कुछ training consulting करता हूँ।
0: Okay.
1: और so when I speak to my clients abroad, उसके लिए गोविंदराज बोलने में बहुत तकलीफ होता है। Okay. तो गोचा बोले तो बहुत खुश है। गोचा, गोचा।
0: Oh, is that so?
1: Okay. Yeah.
0: Beautiful.
1: So I'm an IT person. I have done my MCA long back in 87. Worked in Tata's, Oracle, Accenture was my last salaried company. Uske baad did some stints as a entrepreneur. Around COVID time, I discovered that there is something hidden talent in me, and uska thoda dekh lenge. Mere dost logon ne bola, encourage kiya. Aise mein play gana shuru. That is my गोचा 2.0 जैसे बोलेंगे।
0: क्या बात है। नाउ दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो वेर आर यू, कौन से सिटी में हो आप?
1: बैंगलोर में। बैंगलोर, मैं आपका बैंगलोरियन, बॉर्न इन बैंगलोर, मेड अप इन, मेड इन बैंगलोर, रिटायर्ड इन बैंगलोर। हालांकि मैं मलयाली हूँ, सो बीइंग इन बैंगलोर यू गेट टू बी मल्टीलिंगुअल, सभी भाषा जानता हूँ।
0: Wow, amazing. That is so beautiful. तो दोस्तों ये लीजिए, हमारे खूबसूरत शहर बैंगलोर से हमारे पास एक और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड सिंगर गायक मौजूद हैं। आज हम उनकी सिंगिंग का मजा लेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को उन्हीं के गाए हुए इस पहले गीत से, और फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत ही प्यारी शुरुआत और अमेजिंगली अमेजिंगली गुड स्टार्ट। चलिए,
1: थैंक यू सर।
0: गोविंदराज जी, जैसे आपने कहा कि अभी कोविड के दौरान आपको ये महसूस हुआ कि गोविंद 2.0 इज आल्सो अवेलेबल एंड अभी तक आपने उसे एक्सप्लोर नहीं किया था एंड देन यू स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट, यू नो। ये चीज दरअसल पर्सनली मेरे को बड़ी इंस्पायरिंग लग रही है सर, क्योंकि

0: ठीक है, बहुत समय से बातचीत कर रहा हूं, वॉइस ओवर कर रहा हूं और आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, बट आप लोगों से इतनी जलन होने लगी है मुझे, क्योंकि आप इतना अच्छा अच्छा गाते हो, तो मेरे को लगता है कि व्हाई नॉट, अभी आपने जो टर्म दिया उसी को यूज कर रहा हूं, व्हाई नॉट समीर 2.0।
1: एब्सोल्युटली।
0: एनीवेज, मजाक अलग सर, आई एम नॉट अ सिंगर, बट आपने जो गायकी की शुरुआत की, आपको जो इंटरेस्ट आया संगीत में, म्यूजिक में, क्या वो कोविड के दौरान से ही आया या उससे पहले से था?
1: पहले अंदर था, बाहर नहीं आया था। आई वॉज नॉट इवन ए बाथरूम सिंगर, पर फिलहाल मैं बहुत बहुत हिंदी फिल्में देखता था, बहुत हिंदी फिल्में इन द कॉलेज स्कूल डेज, ऑलमोस्ट लॉर्ड ऑफ द शमी कपूर एंड दैट एरा का फिल्म्स बहुत देखा था, तो गाना तो अंदर था, तो आई थिंक कोविड वॉज अ कैटलिस्ट ये सब बाहर लाने के लिए।
0: ओके,
1: फिर घर पे यार बिना काम का बैठा ही था तो मौका भी था, एंड देन somebody told me that मेरा गाना करके एक प्लेटफॉर्म में ट्राई कर लो।
0: ओके,
1: ट्राई किया।
0: ओके, एंड देन सडनली यू फाउंड कि अरे वाह, दिस इज वन थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू एंजॉय।
1: यस, और मैं उस दिन से शुरू, दैट वाज अराउंड 2020 राइट, तो सबसे शुरू करके हर दिन मैं गाना ये ऐप में रिकॉर्ड करके यू पब्लिश इट टू ऑल माय फैन फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड वेलविशर्स।
0: ओके,
1: एवरी डे वन, आई यूज्ड टू कॉल इट द ब्रेकफास्ट सॉन्ग, उत्तर बाथरूम सॉन्ग।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: एंड आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 3 इयर्स, आई डिड दैट।
0: ओप्स, अच्छा, देखिए दोस्तों, ये बड़ी खूबसूरत बात गोविंद जी ने बताई है कि सिर्फ 3 सालों की ये म्यूजिकल जर्नी क्या खूबसूरती से हमारे सामने एक टैलेंट को लेकर आई। मतलब ये हुआ कि किसी भी वक्त आप शुरू करें, और पीछे में कुछ इंटरव्यूज में ये भी बात हो रही थी कि गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, तो गाना यानी कि म्यूजिक एक ऐसी मेडिटेशन है, एक ऐसी पूजा है जो हमें एक लेवल ऊपर लेके जाती है।
1: Yes,
0: बहुत बढ़िया, अमेजिंगली ब्यूटिफुल गोचा साहब, तो चलिए
1: थैंक यू,
0: पेश करें आपका ही गाया हुआ एक बेहद खूबसूरत सा नगमा जो हमारे सारे दोस्तों को हिला के रख देगा। लीजिए, पेश करते हैं।
1: जरूर जरूर।

0: ब्यूटिफुल। अब आपको थोड़ा सा और बेहतर जानते हैं गोचा साहब, 3 साल हुए, चलिए मैं मानता हूं 2 साल और पीछे ले लीजिए क्योंकि आपका 2.0 कहीं छुपा हुआ था। ऐसा कौन सा गीत है, ऐसा कौन सा सॉन्ग है, गाना है जो आपके यू नो पूरी पर्सनालिटी को, आपकी चरित्र को, आपकी शख्सियत को डिस्क्राइब करता है? जैसे फॉर एग्जांपल, तो आपको इजी हो जाएगा, पर्सनली मैं अपने बारे में कहूं तो आजाद फिल्म जो धर्मेंद्र के ऊपर फिल्म आई गई थी, उसका जो गाना है राजू चल राजू अपनी मस्ती में तू, मैं उससे बहुत रिलेट करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि दैट सॉन्ग एक्चुअली डिस्क्राइब्स मी। तो आपका कौन सा सॉन्ग है जो आपको डिस्क्राइब करता है?
1: गुड क्वेश्चन। मेरा मकसद जिंदगी पूरा रहा कि मैं भी खुश रहूं, मेरे आजू बाजू में जो भी है उसको भी खुश देखना चाहता हूं, तो एंड एंजॉय लाइफ, वो मेरा फिलॉसफी था। तो सॉन्ग अराउंड जिंदगी इज व्हाट, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, ऐसा गाना, यू नो दैट डिफाइंस मी आई गेस, एंजॉय लाइफ।
0: ओके दैट्स ब्यूटीफुल। सो दोस्तों देखिए, I had been trying to create a know yourself Google form for somebody, और उसमें बड़े सारे सवाल मैंने पूछ डाले और उसके बाद मैं सोचता रहा कि अगर मैं इन questions का जवाब दूं तो क्या निकलेगा, तो मेरे को बड़ी देर तक सोचना पड़ गया because मैंने अपने बारे में कभी ध्यान से सोचा ही नहीं था।
1: सोचा ही नहीं, हम लोग सबका वही प्रॉब्लम
0: है। तो इसीलिए मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने डाल देता हूं कि एक बार आपको सोचने का तो मौका मिल जाए, मजबूरी में ही सही अपने को जान पाए हम, तो वेरी नाइस। संगीत है, गाने हैं, हमसे रिलेट करते हैं। चलिए आप सोचिए, आपका कौन सा सॉन्ग आपके चरित्र को डिफाइन करता है, बताएं या ना बताएं, तब तक एक प्यारा सा गीत पहले सुन लेते हैं गोचा साहब की आवाज में।

0: Amazingly beautiful.
1: Thank you, sir. Thank you. Good that you're liking it.
0: गुजर साहब, मुझे ये बताइए, पहला सॉन्ग कौन सा था जो आपने रिकॉर्ड किया?
1: पहला ये मेरा गाना वाला फेस आई डोंट हैव मच मेमोरी बिकॉज वो एज ट्रायल एंड एरर था. व्हेन आई गॉट ऑन टू स्म्यूल, द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई रिकॉर्डेड वाज मेरे नैना सावन बाग.
0: हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर, की किसी भी, चाहे वो स्टार मेकर हो चाहे स्म्यूल हो, जिधर पे भी आपने रिकॉर्ड किया, तो पहला सॉन्ग था मेरे नैना सावन भादो. वाओ, दैट इज सो ब्यूटीफुल. अगेन, पर्पस यही था सर कि आपने जहां से शुरुआत की, जो पहला स्टेप आपने उठाया था, उसे हमें कभी भूलना नहीं है सर, उसे याद रखना. आई मीन दैट वाज सो ब्यूटीफुल सॉन्ग जिसने आपकी इस जर्नी की शुरुआत कर दी. अमेजिंग. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ें. लीजिए, पेश करता हूं एक और प्यारा सा गीत गोजा साहब की ही आवाज में.

0: अरे गोचा साहब, तो ठीक है, 4-5 साल की जर्नी हो गई या 3 साल की जर्नी हो गई कह लें संगीत में। ओके, आप पहले टॉडलर थे, फिर जल्दी से बड़े हो गए, फिर आप दौड़ने लग गए हैं संगीत में। तो सबसे ज्यादा चैलेंज कहां पर आया जब से आपने शुरू किया से लेकर आज तक में? व्हाट चैलेंज यू फेस्ड इन सिंगिंग?
1: ओके, पहले पहले पहले पहले पहले वाला चैलेंज था कि खुल के गाओ। सब लोग बोलते हैं अरे खुल के गाओ, खोल के गाओ, क्या है वो, एक क्या है खुल के गाओ? Nobody is able to, you know, define it to me. It's not a formula कि ऐसा करो कर। तो मेरा एक दोस्त था, he encouraged me a lot in singing. He said, Gocha, you got a voice to sing, you should sing. I asked him, बस ये खोल के गाना क्या है? He said, just lock yourself in a room. सोचो कि और कोई नहीं आजू बाजू में, और फिर बिंदास गाओ।
0: Okay, ducky.
1: And that's all I did. I mean, if you believe it, you know, that's all I did. And I oh, 4-5 gaana karne ke baad, I got the knack how to do that open singing.
0: Okay.
1: Then I realized, acha, ye hota hai. If I sing, oh, mere naina saavan baad ho, for example, I can say, mere naina saavan baad ho, versus मेरे नैना सावन भादो। तो आई फाउंड दोस डिफरेंसेस एंड आई सेड हाँ हाँ ये है।
0: वाओ,
1: सो दैट इज द फर्स्ट चैलेंज। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव डिफरेंट पड़ाव एज यू गो थ्रू सिंगिंग, यू नो, हाई पिच कैसे पकड़ना है, टाइमिंग कैसे पकड़ना है, ब्रेथ कैसे कंट्रोल करना है, एंड फाइनली व्हेन यू गेट ऑन टू द स्टेज इट्स टोटली अलग सा बॉल गेम है उधर। बिकॉज ऑडियंस में जान पहचान का बहुत लोग होंगे, वो दे आर लुकिंग एट यू, यू कैनॉट फेल, यू नो, सो दैट प्रेशर इज समथिंग एल्स विच आई लव।
0: क्या बात है, क्या बात है। मैं दोबारा से कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरे को देखिए, मैं अपने को इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि आई एम रिप्रेजेंटिंग यू। आप लोगों की बातचीत मैं यहां पर गोचा साहब से कर रहा हूं, तो मुझे तो एक जबरदस्त मैसेज मिला है अभी अभी जो गोचा साहब ने बताया कि खुल के गाइए। इन्होंने अपने दोस्त से पूछा ये खुल के गाना क्या होता है, फिर इन्होंने ट्राई किया, फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, अपने को दबाइए मत, ठीक है ना, दरवाजा बंद कीजिए और चीख चीख कर गाइए कोई भी गाना जो ऐसा हो, तो वो आपकी आत्मा को, आपकी शख्सियत को खोल के रखेगा। आपको मालूम पड़ेगा कि कहां आपको गाना है, क्या आपको गाना है। हा हा हा हा, वेरी वेरी ब्यूटिफुल टिप विच यू हैव गिवन मी फॉर ऑल द न्यू सिंगर्स और जो लोग सोच रहे हैं सिंगिंग शुरू करने के लिए, उनके लिए एक पैरागॉन हो गए आप, उनके लिए आप रोल मॉडल हो गए गोविंद जी। तो आइए दोस्तों, और बहुत सारे सिंगर्स का इंतजार करते हुए आगे बढ़ते हैं, और गोचा साहब ने जो सॉन्ग हमारे लिए रिकॉर्ड किया उसे सुनते हैं।

0: बहुत खूब, आपको और बेहतर समझते हैं, आपकी लाइकिंग, आपकी हॉबी, आपकी पसंद को और समझते हैं, क्योंकि सिंगिंग इज योर लाइकिंग, सिंगिंग इज योर हॉबी कह लीजिए. सो हाउ डू यू चूज अ सॉन्ग? आप कौन सा, किस तरीके का सॉन्ग पसंद करके उसे चूज करते हो कि ओके लेट मी प्रिपेयर दिस, इसको तैयार करता हूं, कैसे, हाउ डू यू चूज?
1: ओके ओके, गुड गुड गुड क्वेश्चन. पहले पहले आई यूज टू हैव ए आई वुड रैंडमली पिक एनी सॉन्ग बिकॉज शुरुआत है, कोई भी गाना गाऊं तो खुश खुश खुश होगा मैं. देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग दैट अरे ये गाना मैं गाया हूँ ऑलरेडी, ये गाना किसी और ने गाया, तो लेट मी पिक समथिंग अलग सा. सो इट हैज बीन माय इंटेंट टू पिक समथिंग डिफरेंट व्हिच पीपल आर नॉट हर्ड. द सेम ओल्ड सॉन्ग्स वी कीप सिंगिंग, पीपल मे गेट बोर्ड. सो इतने सारे गाना, हिंदी गाना है दैट वी कैन पिक अप एंड सिंग, वी शुड बी एबल टू पिक अप एनीथिंग एंड सिंग. सो आई वुड ट्राई टू पिक अप समथिंग पीपल आर नॉट नॉट नेसेसरली कि मुश्किल गाना, बट सुना नहीं गाना ऐसा वाला गाना, आई ट्राई टू पिक अप. एंड आजकल मैं क्या करता हूँ, आई हैव बीन मेंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स ऑन माय फोन व्हिच आई डोंट नोट इट. किधर भी जाऊंगा मैं नोटिस करूंगा, अच्छा इसने ये गाना गाया, आई वुड नोट इट डाउन इमीडिएटली, तो मुझे ये गाना गाना.
0: ओके,
1: सो आई एम मेकिंग दैट लिस्ट, सो दैट्स आई गो विद दैट लिस्ट दिस डे.
0: ऑलराइट ऑलराइट, इजंट दैट ब्यूटीफुल? बहुत खूब दोस्तों. देखिए, यू नो गोचा जी ने दरअसल एक एग्जाम्पल के तौर पर हमें समझाया है कि हम गाने किस तरह से चूज कर सकते हैं. उन्होंने एक तरीका बताया है, आप अपना खुद का तरीका 100% ईजाद कर सकते हैं. एवरीबॉडी इज फ्री. कभी किसी गाने को सुनकर दिल से आवाज आ जाए कि नहीं बस सुन के मजा आ गया, बस यही गाना गाना है साहब, वो भी एक तरीका ठीक है. आप अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से किसी गाने को चूज करें कि आप सैड सॉन्ग्स गाएंगे, हैप्पी सॉन्ग्स गाएंगे, रोमांटिक सॉन्ग्स गाएंगे, गजल्स गाएंगे, तो आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से भी गाना चूज कर सकते हैं, जैसा गोचा साहब सजेस्ट कर रहे हैं. ब्यूटीफुल. मे बी ट्यून पर डिपेंड कर जाए, मे बी लिरिक्स पर. या
1: आई वांट टू ऐड जस्ट वन मोर थिंग,
0: प्लीज डू.
1: एज यू आर सेइंग, मैंने सोचा आप जैसे बोलते रहे हैं, आप ऐसा गाना चूज कर लिए कीजिए विच सूट्स यू, एज यू सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट.
0: करेक्ट.
1: वी डोंट नीड टू ट्राई एंड कवर ऑल द सॉन्ग्स, वी आर नॉट सुपरमैन, सब गाना नहीं गा सकते. आपका जो पर्सनैलिटी के लिए फिट हो, मेलेडी वाला है या एक्शन वाला है, यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज दैट, दैट दैट इज मोर सैटिस्फाइंग.
0: दैट इज वेरी राइट, दैट इज वेरी वेरी वेरी राइट. दोस्तों वही चीज तो गोचा साहब ने हम लोगों को सजेस्ट की, एंड दैट इज सो ब्यूटिफुल. आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने मैनरिज्म को, मे बी आप थोड़े से जोशीले हैं तो जोशीले वाले गाने, ओके वी कैन ऑलवेज डू दैट. एंड जरूरी नहीं है कि
1: सही पकड़ा आपने.
0: या बॉस, जरूरी नहीं है कि वन पर्टिकुलर सॉन्ग ऑफ किशोर कुमार इज मोस्ट मोस्ट फेमस और सभी लोग उस गाने को गा रहे हैं तो मुझे भी गाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है दोस्तों. संगीत, गाने सभी बहुत प्यारे हैं. बहुत खूब, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एक और गीत का मजा उठाते हुए, और बहुत जल्द गाना कंप्लीट हो जाने के बाद वापस आते हैं गोविंद जी के पास.

0: I strictly believe, at least 80% of the people in this world can sing. गा सकते हैं.
1: Oh.
0: बस बाहर नहीं आते, बाथरूम से बाहर नहीं आते, घर के बाहर नहीं आते. बस आई थिंक दैट इज